0: जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या हैं? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़े और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप

मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया न लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी सुबह पीना है। 5 से 6 भीगे हुए बादाम, 1-2 भीगे हुए अखरोट और थोड़ी सी किशमिश, इसको आपको रात में ही भिगो के रख देना है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस डाइट को लेना शुरू कर दिया, यानी कि सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स और या सूखे मेवे को खाना शुरू कर दिया, जीवन भर जब तक आपकी आयु है तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आते हैं नाश्ते की ओर। दलिया, ओट्स, पोहा, मूंग दाल का चिल्ला और साथ में 1 गिलास दूध, दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। दोपहर में 2 से 3 रोटी यानी कि बहुत ही पतली और हल्की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद और 1 कटोरी दही अगर आपको नुकसान नहीं करती है तो। शाम को मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता आदि आप ले सकते हैं। शाम का समय है, 5 और 6 के पहले ही आपको ये ले लेना है। भुने चने या अंकुरित दाल। अब आती है रात की बात, यानी कि रात में हम खाना कैसा लें। रात में हमेशा से हल्का भोजन लेना चाहिए, पतली पतली 2 रोटियां अगर आप खा रहे हैं तो ठीक, वरना 1 रोटी और दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और सोने से आधा घंटा पहले जिन भी लोगों को लगता है कि वो दूध पीते हैं और उन्हें वो हजम हो जाता है तो दूध में चुटकी सी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्या खाएं जिससे हमें और पौष्टिक आहार मिल सके। दूध, दही, पनीर, तिल और अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी यानी कि 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पी जाना है। इन चीजों से आपको बचना है, जैसे जंक फ्रूट हो गया, तला भुना भोजन, अधिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुक कर काम करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वाइकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग और डाइट प्लान।
उम्मीद करती हूँ कि आज के इस डाइट प्लान और योगासन को आप अपनी जिंदगी में, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जरूर इसे अपनाएंगे। और उसके बाद में जब आपने अपनाना शुरू कर दिया तो चैट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान और योग करने से अगर आपको सर्वाइकल है और उसमें फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में
हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं, उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान,
चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं, उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: संजना,
2: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

हाय क्या बात है भाई, मंडे मॉर्निंग और इतना रोमांटिक सॉन्ग, अभी अनु मलिक की आवाज में। न जाने क्यों कुछ दौर महज कुछ गानों से ही वापस आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स जब मॉनसून का सीज़न हो और रात में बारिश हो चुकी हो, सुबह कुछ बदली सा नज़ारा हो, तो ऐसे गाने बिल्कुल फिट बैठते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए इस सॉन्ग को सुन लेने के बाद फिर बताते हैं क्या है आज का मंडे स्पेशल थॉट ओनली ऑन गुड मॉर्निंग गोंडा।

0: मेरे ख्यालों की मलिका। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। सो चलिए बताते हैं क्या है आज का आपका मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आज का थॉट कहता है कि मैं इत्र से महकू ये आरजू नहीं है मेरी, मैं इत्र से महकू ये आरजू नहीं है मेरी, कोशिश है किरदार से मेरे खुशबू आए। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। यहाँ पर इत्र के मायने लोगों के ज़रिए दी गई रेस्पेक्ट, वाहवाही और जो दिखता है लोगों को या किसी के भी सामने उससे है। किरदार, किरदार पहली बात तो ये है कि मोहताज नहीं होते। किरदार हमेशा चलने वाले, और किरदार हमेशा वो होता है जो ये डिफाइन करता है कि कोई शख्स कैसा है। क्या वो खुद अपने जैसा है या वो अपने जैसा ना हो करके किसी और के जैसा है। और यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे, बड़ी ही प्यारी बात कह रहा है। थॉट का कहना है कि भाई मुझे इत्र से महकने का शौक नहीं है कि इत्र लगा के महकूं, कोई ऐसा काम करूं कि लोग कहे अरे वाह कितना अच्छा काम करते हो, मैंने देखा तुम्हें लोगों की हेल्प करते हुए, मैंने देखा तुम्हें। नहीं, किरदार ऐसा है कि वहाँ फर्क नहीं पड़ता कि अगर चार लोग देखने वाले हैं तो भी आप वो काम कर रहे हैं, और कोई भी नहीं है तो भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं।

उनको ऐसा लगता है कि वो खुद को अप्रिशिएट कर रहा है। सो ये है मंडे वाला थॉट। अब जरा सोचिए कितना प्यारा थॉट है, कितनी प्यारी बात कही गई है कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है मेरी, कोशिश है किरदार से मेरे खुशबू आए। तो किरदार ही ऐसा हो, हमारा चरित्र ही ऐसा हो जिससे कि खुशबू आए, जो कि महके ऐसा हो, और उसके लिए किसी के वेरिफिकेशन की, किसी के सर्टिफिकेशन की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर हम लोग कहते भी हैं कि भाई फला बंदा देखने में बड़ा कोशिशें कर रहा था और ये दिख रहा था, लेकिन जब मैंने उसको नज़दीक से देखा या अलग देखा तो कुछ और ही निकला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद ये एक गलत फहमी हम इंसानों में आ जाती है कि अगर वाहवाही हो रही है ऐसे ही काम चलना है, ऐसी ही दुनिया हो गई है, ऐसे बनना है। इस तरह की न जाने कितनी सारी बातें करती है। अरे भाई, इंसान बना ही नहीं है ऐसा। तभी तो हम अंदर खुद से लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का एक और शख्स होता है जो हमें हर उस चीज़ से रोकता है जो कि ट्रेंड में चल रही है और गलत चल रही है, और हमको अंदर से पता होता है कि ये सही नहीं है। बस यही फ़र्क होता है। ग़ुलाम जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, दुनिया जैसे चल रही चलने दो, और जो सच में अपने मन के होते हैं, जिनकी अपनी ओपिनियन होती है, जिनकी अपनी सोच होती है, जो सच में इंसानों वाले लक्षण और क्वालिटी दोनों लेकर चलते हैं, वो अपने मन की करते हैं, क्योंकि उनको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। आई डोंट केयर, मुझे लगता है क्योंकि इसमें सभी का बेहतरी है, इसलिए मुझे ये करना है। तो ये अप्रोच, ये बात एक इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। पैसा कौड़ी हो, कोई बेहतर काम हो, कोई एक्सरसाइज हो, कुछ भी बेहतर करते हो, कोई स्किल्स हो, किस लिए करते हैं? ताकि हम अच्छा फील कर सकें। और अच्छी फीलिंग इन चीज़ों से नहीं आती, अच्छी फीलिंग खुद से, खुद ऐसा कुछ करने से आती है जो हमको अंदर से ही महसूस कराता है कि ये बेहतर है। और इसीलिए ऐसे लोग अपनी ही धुन में रहते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बरबस ही मुस्कुराते हुए, कोई कुछ भी कह रहा है कोई फर्क नहीं, और वो कर रहे हैं, और वो उनके पास देखने में तो कुछ भी लगता है नहीं है, ना ये है ना वो है, और वो मुस्कुरा रहे हैं, वो खुश हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, वो अपने लिए काफ़ी है। बस वही बात है, किरदार अगर महक रहा है तो शख्स खुद से खुश है, और अगर हम दिखावा करेंगे तो अंदर से हमको पता है दुनिया हमें बाहर से बहुत कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनिया के लिए नहीं थे, हम खुद के लिए थे, और हमने यही गलती की कि हम दुनिया के लिए बनते चले गए। तो शायद आज का थॉट ऑफ द डे आपको समझ आ गया हो। अब चूंकि सबकी अपनी समझ है, तो आपको क्या समझ में आया है, आपने इससे क्या मायने इसके निकाले हैं, ये आप ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले खूबसूरत से गाने की तरफ, वापस से आएंगे, आने के बाद देखने वाले हैं कि क्या मैसेजेस आपके आ रहे हैं चैट बॉक्स पर, और क्या कहना चाहते हैं आप, और आज का थॉट ऑफ द डे मंडे स्पेशल वाला आपको कैसा लगा। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और एक ऐसा सॉन्ग जो सीधे दिल तक जाता है।

कहा था ना कि कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कानों में ना जाकर सीधे दिल में जाते हैं। उन्हीं में से था एक मौला मेरे। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग की फ्रेश वाइब के साथ मंडे मॉर्निंग में। यस, सो आपके मॉर्निंग जो आरजे अदनान है मौजूद और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम। साथ ही साथ आप सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से अपनी कार ड्राइव करते हुए, अपने खेत में काम करते हुए, अपने किचन में खाना बनाते हुए और रूम में अभी अंगड़ाइयाँ लेते हुए। साथ ही आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, ऑफकोर्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके सीधे मैसेज करने के साथ साथ। तो आइए, आपका वेलकम करने के साथ साथ अब चलते हैं कुछ मैसेजेस हमारे 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले श्रोता

0: चैट बॉक्स पर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं ये तो हम आपको बताते हैं ना।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

चलते हैं आज के इस शो में सबसे पहले मैसेज की तरफ। प्रीति जी ने लिखा है बहराइच से, सजी सुप्रभातम मंडे वाला, क्या बात है, सुप्रभातम आपको भी मंडे वाला। एंड आशु जी ने लिखा है लखनऊ से, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। इसके बाद जो है धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं सर जी गुड मॉर्निंग विद लव, क्या बात है। देखिए शुरुआत ही जब विद लव हो जाए तो सारा दिन लव में रहता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी विद लव। एंड हमारे गीता श्रीवास्तव जी हैं गोंडा से, लिखा है गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे महेंद्र देपिन राजस्थाना भी आए हुए हैं और आपने लिखा अदनान सर आज का विचार बहुत अच्छा लगा और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे, थैंक यू सो मच महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, आप लोगों ने आज के थॉट को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है, यानी किसको कैसा लगा है आप लोगों ने बताया है। प्रीति जी ने बोला है उनको कि सच में ऐसी ही सदव्यवहार के साथ अच्छा किरदार निभाने की कोशिश करती हूँ सभी के साथ, ना कि दिखावे की। दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। इसके बाद जो है आशु जी बोलती हैं लखनऊ से कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार ही इंसान की असली पूंजी है जो हर दौर में काम आती है और कभी ख़त्म नहीं होती, क्या बात है, वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से लिखते हैं जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, वाह क्या बात है। सो देखिए हम सभी के मन में विचार तो होते हैं, पर मुझे इतना बेहतरीन लगता है कि इस थोड़े से वक्त में जब हम थॉट शेयर करते हैं तो आप उन थॉट्स को लाते हैं जो यूजुअली आप किसी से कहते ही नहीं हैं, इस तरह से आप अपने ही अंदर रखे रहते हैं लेकिन इस बातचीत के ज़रिए वो थॉट बाहर आ जाता है। सो खुद के लिए क्लैप कर दिए भाई, आप काफ़ी बहादुर हैं। गीता श्रीवास्तव जी हमारी लिखती हैं खुद की पर्सनैलिटी को अच्छे से चरित्र और संस्कार से सवारो, ना कि आर्टिफिशियल खूबसूरती से, महक लोगों तक भले ही नहीं पहुंचेगी लेकिन आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। यही तो बस अंतर आ जाता है कि हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे वही वाली बात है कि जिसका एडमिशन होना हो वो सबसे पीछे खड़ा है और पूरा परिवार लगा हुआ है स्टाफ में, पूरे मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा है, सब कुछ चल रहा है और जिसका एडमिशन होना है वो एकदम पीछे, उसका आता पता ही नहीं है वो आया भी है या कि चला गया। अब तो ऐसे ही रहता है कि हमें अपने लिए सब कुछ करना होता है, हमारे से ही होकर हर चीज़ें हमारी गुजरती हैं लेकिन जब हम वाया कर देते हैं तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो हो भी नहीं रहा है और हमको अंदर से मज़ा भी नहीं आ रहा है और हम कर भी बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो जिस दिन हमको हर चीज़ अपने साथ कनेक्टेड फील होती है उस दिन से हमको मज़ा भी आता है, बुरा भी लगता है, हम बोर भी होते हैं, हम बहुत खुश भी होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, क्यों, क्योंकि हम सब कुछ खुद से लेके जाते हैं, कहीं वाया करके अलग नहीं जाते हैं। सो बस इतनी ही सी बात है, इतनी सी बात है हमको समझना ये बात है। सो सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग बोला हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने फ्रॉम आवास विकास गोंडा, चलिए बहुत बढ़िया है भाई। और आज जो है उस मौसम में धूप निकल आई है तो रेडी रहिएगा थोड़ा सा गर्मी के लिए भी, मुझे लगता है कुछ उमस ज़रूर होने वाली है। हालांकि लोकल में अगर बोले तो कोई कुछ अजीब अजीब, कोई कहता है चिपचिपी सी गर्मी है तो कोई कहता है चिलकन सी हो रही है, खैर आप क्या कहते हैं इस गर्मी को, जब बारिश में ज़बरदस्त गर्मी पड़ जाती है क्या कहते हैं लोकल में। Check this out now.

सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट क्या आया था आपके मन में? जरा ईमानदारी से सोचिए और फिर हमसे बताइए कि सुबह उठते ही आपके मन में सबसे पहला विचार आखिर क्या आया था। वैसे इसके बाद जब वापस हम आने वाले हैं तो बताने वाले हैं गोंडा अपडेट यानी सिटी अपडेट की तरफ भी चलने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स। पहले एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को मिल करके, वापस से आते हैं फिर बताते हैं क्या चल रहा है अपन।

0: कोई बात नहीं जी, पप्पू नाच नहीं सकता तो आपन तो सिटी अपडेट बता सकता है ना, आप सुन रहे। तो चलिए जानते हैं अपने गोंडा का हालचाल और कुछ अपडेट्स जो आपके काम की, खास कुछ ऐसी भी बातें जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल अपने सिटी में कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी चल रही है। सो क्या कुछ हो रहा है शहर गोंडा में, आइए आपको बताते हैं सिटी अपडेट में ओनली ऑन गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

0: हाँ जी, तो आपको बता दें कि रोजगार मेला आज लग रहा है और 12 कंपनीज आने वाली हैं। सो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अप्लाई करना है, उन यंगस्टर्स के लिए आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI गोंडा में रोजगार मेला लग रहा है। सो 12 से ज़्यादा कंपनीज हिस्सा लेंगी। कंपनियों की तरफ से 500 से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में लाई जाएंगी। सो जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया है कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए कंपनीज ने रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन किया है और इन कंपनीज की तरफ से 500 से ज़्यादा वैकेंसीज की जानकारी अवेलेबल कराई गई है। सो मेले में अलग अलग शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता वाले जो युवा हैं वो रोजगार पाने का उनको मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि फिलहाल गोंडा में ही म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सो आपको हम बता दें कि साइबर सेल और देहात कोतवाली पुलिस ने मिल करके साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हिसाब से गिरोह में बेरोजगार युवकों को सोलर कंपनी में नौकरी दिलाने और 15,000 रुपये मासिक वेतन का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाया जाता था। बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाले साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो अब तक 20 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट के ज़रिए तकरीबन 21 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। फिलहाल आपको हम बता दें कि किस तरह से क्या होता है म्यूल अकाउंट। सो म्यूल अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी या जालसाज अवैध तरीके से कमाए गए पैसे, जिसमें साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने और इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। दरअसल इसमें खाता किसी और का होता है लेकिन इसका इस्तेमाल कोई दूसरा इंसान कर रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूल अकाउंट। इसके अलावा किस तरह साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा था ये भी हम आपको बता दें। सो पूछताछ में जो आरोपी हैं उन्होंने बताया है कि वो बेरोजगार और ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी का लालच दे करके जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उस पर उद्यम और GST जो है वो पंजीकरण कराते हैं, यानी GST रजिस्टर्ड कराते हैं। इसके बाद करंट अकाउंट खुलवा करके उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करा देते थे और इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस अपने पास में रखते थे। सो देश भर में जो निवेश ठगी, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और जो बाकी साइबर अपराधों से हासिल रकम थी वो इन खातों में ट्रांसफ़र करके इन्हें म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सो इस तरह से ये नेटवर्क चलता था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भाई 43 शिकायतें मिली हैं जिसमें 3,20,00,000 रुपए का होल्ड भी है। सो पुलिस के मुताबिक बरामद दस्तावेज़ में अब तक 20 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिसमें करीब 21 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। सो इन खातों के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 43 शिकायतें दर्ज हैं। इन मामलों में करीब 3,20,00,000 रुपये अलग अलग खातों में होल्ड कराए जा चुके हैं। सो साइबर ठगी का इस टाइम बहुत तेज़ी से ये घटनाएँ घटित हो रही हैं और इसको बताने के पीछे बस वजह इतनी सी है कि हो सकता है आपकी कोई बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा करके अकाउंट खुलवाए और या सोलर कंपनी में जॉब दिलाने का बोले और उसके बाद आपसे एक अकाउंट खुला करके उसकी बैंकिंग डिटेल्स जो है नेटवर्किंग वो इंटरनेट एक्सेस के थ्रू अपने पास रखे और साथ ही साथ इस तरह से नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा हो, क्योंकि ये साइबर ठगी बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है। सो एक और मामला जो है वो आया था कि नौकरी दिलाने का झांसा दे करके साइबर ठगी करने के आरोप में फिलहाल नगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और साइबर हेल्प डेस्क की जांच में संदिग्ध मोबाइल नंबर से जुड़ी 4 साइबर शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज भी मिली है। सो पुलिस के मुताबिक साइबर हेल्प डेस्क के ज़रिए से NCRP पोर्टल पर दिखने वाली संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की जाँच की जा रही थी। उसी दौरान मोबाइल नंबर एक लोकेशन जो है वो गोंडा में मिली। तो जांच करने पर NCRP पोर्टल पर 4 शिकायतें दर्ज पाई गई। जांच में मोबाइल नंबर से जुड़े 2 बैंक खातों में लाखों की रकम जमा हुई। इनमें से एक बड़े HDFC बैंक में और दूसरे एक्सिस बैंक में रुपए जो है वो जमा मिले। सो साइबर सेल से मिली फोटो कैफे यानी ग्राहक पहचान पत्र के आधार पर मोबाइल नंबर धारक जो थे इनको फिलहाल पकड़ा गया सिमरा दमन और थाना कोतवाली नगर गोंडा में पाया गया। सो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ तो फिलहाल जांच शुरू हो गई, लेकिन इस तरह के साइबर गिरोह बहुत सारे निकल रहे हैं जिसके आपको बचना होगा। एंड चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है वो ब्लड बैंक से जुड़ी हुई आ रही है। इसमें भी एक जो है गिरोह पकड़ा गया है और किस तरह से ब्लड बैंक में ये हेरा फेरी कर रहे थे। सो फिलहाल कोतवाली नगर ने खून के जो अवैध कारोबार करने का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके कब्जे से 253 कूट रचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 डिस्पोजेबल सिरिंज और 9 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। सो शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गिरोह जो है हॉस्पिटल्स के बाहर में और आसपास जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है उन मरीज़ों के जो तीमारदार हैं यानी उनकी फैमिली मेम्बर्स को निशाना बना करके ये वसूली करते थे, और गिरोह के जो तार हैं वो बलरामपुर ज़िले तक भी जुड़े हुए हैं। सो फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक की एक टीम बनाई गई है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर चांदमारी पुलिया यानी घोसियाना के पास से साहबगंज और ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सो बदमाशों के जो कब्जे से 253 ब्लड बैंक कार्ड्स, 10 डिस्पोजेबल सिरिंज और मोबाइल नंबर 9 बरामद हुए हैं। सो पुलिस का मानना भी है कि मोबाइल फ़ोन और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जांच से गिरोह के नेटवर्क लेनदेन और बाकी उनके करीबियों की जानकारी मिलने की बात बताई जा रही है। सो इसको भी इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप भी अगर ऐसी किसी गिरोह से सामना होता है तो आप पहले से ही अलर्ट रहें। सो आपको बता दें कि मरीज के परिजन से 12,500 रुपये लेकर के दिया था संदिग्ध रक्त यानी ब्लड दिया था। सो पुलिस के हिसाब से खरगोपुर के एक निवासी को उन्होंने तहरीर देकर बताया कि उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी 4 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर्स ने ब्लड की ज़रूरत बताई, बाहर एक शख्स ने 12,500 रुपए में ब्लड अवेलेबल कराया, 10,000 रुपए ऑनलाइन और 2,500 नकद दिए। जांच में जो ब्लड था वो संदिग्ध और मतलब ऐसा था जिसको इस्तेमाल ना किया जा सके। सो इस पे डॉक्टर ने मना कर दिया। इस मामले में कोतवाली नगर में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। सो पूरा संचालित था ये रैकेट, बाकायदा चल रहा था। सो पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो एक संगठित गिरोह बना करके हॉस्पिटल्स और बाकी जगहों पर ब्लड की ज़रूरत वाले मरीज़ों के जो परिजन थे उनके कॉन्टैक्ट उनसे करते थे, इसके बाद ऊँची कीमत पर जो है वो ब्लड अवेलेबल करा करके अवैध कमाई जो है वो कर रहे थे। सो एक मामला भी आया था कि एक्सपायरी ब्लड से बच्ची की मौत भी हो गई है। कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उसकी 9 साल की बेटी एक्सपायरी यानी ऐसा ब्लड था जो एक्सपायरी था उसको चढ़ाया गया जिससे उसकी मौत भी हो गई। मामले में FIR भी दर्ज हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में गिरोह की जो भूमिका है उसकी जाँच कर रही है। सो फिलहाल ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इसलिए चाहे साइबर ठगी की बात हो, चूँकि हमने बताया कि किस तरह से एक पूरा 5 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, म्यूल अकाउंट का रैकेट चला रहे थे और एक खून का ऐसा ख़राब कारोबार कर रहे थे यानी ब्लड बैंक को लेकर के जिस तरह से ये लोगों को टारगेट करते थे, ज़रूरतमंद को पकड़ रहे थे ताकि उनसे जो है वो पैसे लेकर के इस तरह से ठगी करा जा सके उनके साथ में। इसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ, अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है, चूँकि वो उमस बढ़ी हुई है सो इसलिए बॉडी पर यानी स्किन पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है इधर सीज़न में। सो देखिए फिलहाल बता दें कि ज़िले के सभी 55 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कल जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था और मेले में जो है जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी कमी भी अखरी थी। हालांकि मौसम में बदलाव के चलते वायरल बुखार देखा गया, सर्दी जुकाम और एलर्जी से जो लोग पीड़ित थे उनकी संख्या ज़्यादा देखी गई। सो परसपुर के PHC में भी 12:38 तक RBSK की कई सारे डॉक्टर्स की मौजूदगी रही। उन्होंने बताया भी कि 22 मरीजों का उपचार किया गया था। इसके अलावा प्रॉब्लम जो थी वो आँखों में संक्रमण की प्रॉब्लम काफ़ी देखी गई थी। इसके अलावा सांस लेने की बीमारी कुछ लोगों में नज़र आई, कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन चूंकि बताया गया कि भाई अभी जिस तरह से मॉनसून सीजन है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम बुखार फंगल इन्फेक्शन, ये इसके काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सो बॉडी पर दाने निकल रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। सो इस दौरान आपको भी अपने स्किन का, अपनी बॉडी का ख़ास ख्याल रखना ही होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बलरामपुर की लंबी छलांग हो गई है और गोंडा की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। सो देवी पाटन मंडल के ज़िलों की जो है तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है। सो सीएम डैशबोर्ड की जून की रैंकिंग में देवी पाटन मंडल के ज़िलों की जो तस्वीर है वो थोड़ी सी बदली हुई है। सो मई में 73वें पायदान पर रहा बलरामपुर 14वें स्थान पर छलांग लगा करके 59वें स्थान पर पहुँच गया है। गोंडा भी 2 पायदान चढ़ करके 45वें पर आ गया है और इसके उलट श्रावस्ती 5 स्थान लुढ़क करके 7वें और 12वें और बहराइच 39वें और 40वें स्थान पर जो है वो खिसक गया है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि गोंडा ने विकास कार्यों में मई में 67वीं रैंक पर सुधार करते हुए अपना 59वां स्थान हासिल किया। हालांकि राजस्व रैंकिंग में 26वें से खिसक करके 31वें पर पहुँच गया है। सबसे बड़ी छलांग जो है वो बलरामपुर बताई जा रही है क्योंकि विकास कार्यों में इसने लगाई है। ज़िला 74वें स्थान से सीधे 47वें स्थान पायदान पर पहुंच गया। सो राजस्व रैंकिंग में भी 67वें से सुधार करते 63वें स्थान पर आ गया है। सो इस तरह से ये कुछ बातें थी जिसमें निर्माण था, सामूहिक विवाह था, फैमिली आईडी समेत कई योजनाओं पर जो काम हुए हैं। इसके अलावा श्रावस्ती और बहराइच ज़िलों को थोड़ा सा झटका लगा है, रैंकिंग में ये ज़िले थोड़ा पीछे गए हैं। इसके अलावा आपको जैसा कि हमने बताया कि आज रोज़गार मेला लगाया जा रहा है, ये सुबह 10 बजे से लगाया जा रहा है। तो अगर इसमें जो भी लोगों ने अप्लाई किया है रोज़गार संगम पोर्टल से वो भी जा सकते हैं या आप जा करके ऑफलाइन भी इसमें अप्लाई करके जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सुबह 10 बजे से ITI गोंडा में लगाया जा रहा है। इसके अलावा सुबह 10 बजे से ही नगर पालिका परिषद गोंडा के जो सभागार हैं वहाँ पर भी जन सुनवाई का आयोजन किया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें सुबह 10 बजे ही राजकीय रेशम फार्म गिलौली में अभियान के तहत पौधारोपण किया जाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे शहर के शहीद आज़म सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मानित भी किए जाने की बात सामने आ रही है। सो फिलहाल ये सब जो है आप तक पहुँचा दी गई अपडेट्स एंड आई होप कि ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी और आप भी इसमें से ज़रूर उन बातों से अलर्ट हुए होंगे जो हमने साइबर ठगी और स्पेशली ब्लड बैंक को लेकर के जो लोग एक गिरोह पकड़ा गया उसको लेकर हमने बताया, ताकि क्योंकि हमें भी कभी हो सकता है इमरजेंसी में हमारी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत पड़े और ऐसे कोई ठग हमारे आसपास हमसे मिल जाए या फिर हमको नौकरी दिलाने के नाम पर या हमारा खाता वो खुलवा ले और उसका यूज़ वो करे म्यूल अकाउंट बना करके, तो पूरी इलीगल एक्टिविटी उसमें होती है। इसलिए इन सब से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अपना हम ख्याल रखेंगे और इसी तरह बातचीत करते रहेंगे ताकि हम ऐसी चीज़ों से बचते रहें। फिलहाल गोंडा अपडेट्स में आई होप कि वो आप तक पहुँच गई है।
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

क्यों हुआ है दिल डफर ये तो खैर आप ही जानने वाले हैं और आप ही बताने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बताने को इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो इसलिए बने रहना है और कहीं नहीं जाना है अपने मॉर्निंग वाले शो को छोड़ करके, क्योंकि आप सारा काम कर लेते हैं और चलता रहता है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो। सो सिटी अपडेट के बाद अब आपको ले चलेंगे कुछ आपकी ख़ास जानकारियों की तरफ जो आपके बेहद काम आने वाली हैं। सो फिलहाल हम ऐसी चीज़ों को तो आपसे बहुत ज़्यादा रूबरू कराते हैं, बट फिलहाल उससे पहले ये म्यूज़िकल ट्रैक एंजॉय करने वाले हैं और वापस से जब आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और बहुत सारे बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स भी चलते रहेंगे आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो लेट्स गो।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: एज गार्जियन हमको जाननी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके घर के बच्चे का एडमिशन जो है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक हो, जहाँ पे उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और उसको एक्सपोजर इंडिया आउट ऑफ इंडिया तक का मिल जाए। इस तरह से हम सभी की ख्वाहिशें होती हैं। सो अगर CUET में कम नंबर हैं तो क्या करना होगा? सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में मिल सकता है एडमिशन, किस तरह से आइए बताते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को प्लान कर रहे हैं DU भेजने का, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजने का, और CUET में नंबर्स कम है, तो क्या करना है आपको, ये बताते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो देखिए, अभी फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए CUET में अच्छा स्कोर जो है वो ज़रूरी होता है। ये हम सभी को पता है कि अगर CUET में बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप जिस कॉलेज को पसंद करते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कॉलेज है, वहाँ पर आप कोशिश करते हैं जाने की। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिसके नंबर्स कम हैं तो उसके लिए DU का रास्ता ही बंद हो गया हो। सो हर साल हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CUET में कम स्कोर होने के बाद भी अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि देखिए, एडमिशन के प्रोसेस को समझना होता है, काउंसलिंग के सभी राउंड में हिस्सा लेना होता है, ऐसे कॉलेजेस के बारे में जानकारी कर लेना होता है जहाँ कम स्कोर में एडमिशन मिल सकता है। सो अब हम आपको वही बताने वाले हैं कि कहाँ DU के ऐसे कौन से 5 कॉलेजेस हैं जहाँ कम नंबर्स में भी आपको DU में एडमिशन आपके बच्चे को, आपके छोटे भाई बहन को मिल सकता है। सो जिन स्टूडेंट्स के CUET UG में कम मार्क्स आए हुए हैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मौके हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ कॉलेजेस में अलग अलग CSAS एलोकेशन राउंड के दौरान कुछ कोर्सेज के लिए क्लोजिंग स्कोर कम हो सकते हैं। सो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां पिछले सालों में कम CUET स्कोर वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के मौके मिले हैं, उनके हम नाम आपको बता दें। जैसे पहला नाम है श्यामलाल कॉलेज, दूसरा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तीसरा है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, चौथा है सत्यवती कॉलेज और पाँचवा है शिवाजी कॉलेज। सो इन कॉलेज में फाइनल कट ऑफ और सीट की अवेलेबिलिटी हर साल बदलती रहती है। अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स को लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल और CSAS अपडेट्स को चेक करना ही चाहिए। सो CUET में कम स्कोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में इस एडमिशन के प्रोसेस को हमने बताया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कम CUET स्कोर में भी एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पिछले साल अगर हम 2025 की बात करें तो CUET UG कट ऑफ ट्रेंड्स और DU CSAS सीट एलोकेशन पैटर्न के हिसाब से इन कॉलेजेस का नाम, अनुमानित स्कोर और प्रमुख कोर्स बताए जाते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि अगर हम श्यामलाल कॉलेज की बात करते हैं तो लगभग 550 से 750 ये नंबर हैं अनुमानित कोर्स और कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर है। इसमें क्या है, BCom ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास। दूसरा मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यहाँ लगभग 650 से 800 से ज़्यादा तक की कट ऑफ रहती है। एंड इसमें क्या है, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, इसमें लगभग 550 से 750 प्लस तक जाती है कट ऑफ। इसमें BCom, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। सत्यवती कॉलेज की बात करें तो 600 से 800 प्लस होता है यहाँ पे कट ऑफ, और इसमें BCom, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री, BCom, BA। शिवाजी कॉलेज में लगभग 650 से 850 से ज़्यादा, इसमें क्या है कि BCom, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और साइंस के कोर्सेज हैं। सो CUET स्कोर 1000 के स्केल पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर के तौर पर देखा जाता है, यानी 1000 के स्कोर पर इसको देखा जाता है, और कुछ कोर्सेज में ये ज़्यादा हो सकता है।

कि कम डिमांड वाले कोर्स या बाद में सीएस राउंड में कम स्कोर पर भी सीट मिलने की अवेलेबिलिटी संभावना रहती है। सो स्टूडेंट्स को कट ऑफ और सीट एलोकेशन की जानकारी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सीएस पोर्टल पर ज़रूर देखना चाहिए। यानी आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, जाना चाह रहे हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सीएस पोर्टल पर जा करके देख सकते हैं इन कॉलेजेस के बारे में। क्योंकि हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बताया है जिनका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाया है इस बार CUET में, एंड उनको कॉलेज चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो DUCSAS के पोर्टल पर जा करके आप अपडेट ले सकते हैं। 5 कॉलेजेस का नाम भी हमने बताया जहां कम कट ऑफ में भी काम समटाइम्स चल जाता है, यानी वो मौके की बात है। तो यहां पे भी बस आपको हर काउंसलिंग में बैठना होता है और हर प्रोसेस को पूरा करना होता है, तो उम्मीद होती है कि आपको कहीं सीट मिल जाए। सो फिलहाल आई होप कि ये अपडेट आपके घर में उस बच्चे के लिए, और अगर आप खुद सुन रहे हैं तो आपके काम की है।

0: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
1: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
2: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
3: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब कुछ भी नहीं हो।
0: मैं हूँ चार्जर, आवाज नीचे।
4: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: What?

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545-583-5346।
7: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके मॉर्निंग वाले शो में। और अब देखिए ना, बातचीत करते करते वक्त कितना गुजर गया पता ही नहीं चलता है। स्पेशली जब हम आपसे बातचीत कर रहे होते हैं तो वक्त का अंदाज़ा होता ही नहीं है, कब कहाँ कैसे गुजर जाए कुछ पता चलता ही नहीं है। फिलहाल एक बार वापस से वेलकम करने के साथ ही साथ हमने कहा था कि आपके लिए काफ़ी कुछ है जो आपसे हमें साझा करना है, बताना है। सो ऑफ कोर्स चलिए बताता हूँ कि आज क्या है बताने को और क्या सोचता हूँ क्या है आप तक पहुँचाने को। फिलहाल चूँकि सीज़न है मॉनसून का, तो बारिश से तो हमने बता दिया था कि उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन बारिश में भीगने के बाद जो है उसकी सावधानी आप तक अब पहुंचाने जा रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बता रहे हैं कि बारिश में भीगने के बाद सावधानी बरतनी होती है। किस तरह से? देखिए, हम जब बारिश में भीग जाते हैं तो मज़ा आता है। कई बार समटाइम्स जानबूझ के भीगते हैं, मन करता है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है या ज़्यादातर ऐसा होता है कि भीगना नहीं चाहते हैं बट मजबूरी में भीग जाते हैं, राइट? तो अगर ऐसा है तो इन सारी बातों के बीच में हमें कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि भीगना अच्छा लगता है, अच्छा है भी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर भीगने के बाद हम बीमार हो जाएं, अगर भीगने के बाद हमारी इम्यूनिटी पर असर आए, अगर भीगने के बाद हमारी स्किन में दाने हो जाएं, रैशेज हो जाएं, तो फिर है ना सोचने वाली बात। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका ध्यान कैसे रखना है और क्या करना है, यही हम आपको बता रहे हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो घर पहुंचते ही जो काम करने हैं, सबसे पहले वो ये है कि साफ पानी और साबुन से नहाना है। बचपन से हम लोगों को ऐसे बोला गया था कि अब नहा के आए हो तो चलो नहाओ। हालांकि मुझे लगता था कि मम्मी बिला वजह डांट रही है, ऑलरेडी जब हम नहा के आए तो फिर नहाने का क्या है। बट अब समझ में आता है कि कितना ज़रूरी होता है अपनी स्किन को साफ रखना बारिश के पानी के बाद, यानी बारिश में नहाने के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन से गंदगी और कीटाणुओं को साफ करना होता है, उसके लिए आप एक अच्छे सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तभी आपको एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसके अलावा गीले कपड़े तुरंत बदलना होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इसी से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे क्या होता है कि रैशेज हो जाता है, खुजली हो जाती है। सो अगर गीले कपड़े आपने बहुत वक्त तक पहना है तो इसको पहनने से फंगल इन्फेक्शन या आपके बॉडी पे रैशेज या फिर आपको खुजलाहट होती है। सो सूखे साफ़ और सूती कपड़े ही पहनना होता है भीगने के बाद। जब नहा लें तो उसके बाद सूखा हो कपड़ा, साफ़ हो, सूती हो। इसके अलावा अंडरगारमेंट्स का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसके अलावा पैरों का ख़ास ख्याल रखना होता है। जी हाँ, बारिश का गंदा पानी सबसे पहले पैरों के ही कॉन्टैक्ट में आता है। सो घर आकर पैरों को साबुन से धोना होता है, उंगलियों के बीच जगह अच्छी तरह से सुखानी होती है और जूते मोजे को पूरी तरह से सूखने के बाद ही पहनना होता है। सो डॉक्टर्स को कब दिखाना चाहिए, यानी ऐसे कौन से लक्षण दिखें कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना होगा। सो अगर बारिश में भीगने के बाद लगातार खुजली हो रही है, लाल चकत्ते पड़ गए हैं, कहीं दर्द है या सूजन हो गई है, कोई पस पड़ गया है या घाव हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनारियो में आपको तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सो बारिश का पूरा मज़ा लीजिए लेकिन स्किन की देखभाल करना ना भूलिए। बस इतना ही तो कहना है मेरा। एंड आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं और आप इस बात को मानने को भी तैयार हैं और आप कोशिश भी ये करेंगे कि भाई हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप इन चीज़ों से बचें और कहीं ना कहीं खुद का आप ख़ास ख्याल रख पाए। तो चलिए, ये बड़ी ही अच्छी बात आपने सुन ली और अब फिलहाल इस म्यूज़िकल ब्रेक को एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, बारिश के बाद का ख्याल आप हमेशा ज़रूर रखिएगा। मज़े लीजिए मॉनसून के अपनी सेफ्टी के साथ में।

0: ए झब्बू, तुमने होमवर्क काहे नहीं किया?
1: मास्टर जी, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वैसे ही लाइट चली गई।
0: अरे तो लाइट आने के बाद कर लेते।
1: बाद में मैं इस डर से नहीं पढ़ने बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट ना चली जाए।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
3: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

आइए, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर

0: पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

सारे एथलीट्स का नाम आपने सुना है, बहुत सारे एथलीट्स के बारे में आपने अलग अलग जगह से पता किया है, लेकिन हम एक ऐसे एथलीट के बारे में बताने वाले हैं जो थोड़ा सा बाकी एथलीट्स से ज़्यादा अलग है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है अलग है, पर क्या अलग है, राइट? तो ये ख्याल आना तो लाजिम है, क्या अलग है इसका बताने का मौका तो दीजिए। तो फिर हम बताते हैं कि आखिर अलग क्या है। दरअसल इन एथलीट्स जिनके बारे में हम अब बताने वाले हैं, इनके बारे में अलग है इनकी उम्र। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि 80 साल की

0: एथलीट है। जी हाँ, 80 साल की एथलीट, और आखिर क्या कर दिया है कमाल, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई 80 साल की एथलीट इनके बारे में क्या है, इनके बारे में बता दें कि आंध्र प्रदेश की 80 साल की एथलीट राम सुम्बा, इन्होंने साबित कर दिया है कि सपनों की कोई दिखी उम्र नहीं होती है। उस एज में जिस एज में हम सोच भी नहीं सकते, 80 ईयर्स ओल्ड यार, जिस उम्र में लोग आराम की सोचते हैं, तब राम सुम्बा ने अपने सपनों को दोबारा जीने की हिम्मत दिखाई है। और स्कूल के दिन से ही उन्हें दौड़ना, दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना पसंद था, लेकिन जल्द ही चूंकि इनकी शादी हो गई थी और फिर कंधों पर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के तले ये शौक कहीं पीछे छूट गया था। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई के लिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी खूब मेहनत की और बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। बेटी और बेटा दोनों को अपनी पहचान बनाने के सपने पूरे करने के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। आज इनके दोनों बच्चे स्कूल टीचर हैं। एक बार राम सुम्बा अपने बच्चों से मिलने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तभी उनकी मुलाकात मास्टर एथलेटिक्स फेडरेशन के एक सदस्य से हो गई। उन्हीं की मदद से राम सुम्बा ने 2015 में एथलेटिक्स में वापसी की और शुरुआत चूँकि आसान नहीं थी, शरीर साथ नहीं देता था और अभ्यास कठिन लगता था, लोगों के मन में भी सवाल थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरह से इस बात को मुकम्मल किया कि एक 80 साल की ऐसी महिला एथलीट इतने सारे जो है वो प्राइजेस जीत करके आ चुकी हैं कि आज आप 80 ईयर्स की एज में जब उनको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर ऐसा है, क्योंकि पॉसिबल कहीं से कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि बस करने की देरी होती है, हालांकि बहुत कठिन है। इसी तरह हमें भी जब कोई चीज़ कठिन लगती है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन सोचिए अगर राम सुम्बा जी ने अपनी 70-75 साल की एज में इसको छोड़ दिया होता तो आज 80 साल का ये रिकॉर्ड कैसे कायम होता है ना। तो ये लगातार करते रहने और ख़ुद पर यकीन का ही नाम है। तो हमारी रियल सुपर हीरो में एक नाम आज और जुड़ गया है, आंध्र प्रदेश की राम सुम्बा जी का, यानी 80 साल की हैं और एक बेहतरीन एथलीट हैं। आई होप कि भैया जब हम लोग अभी इस यंग एज में जीना चढ़ने के बाद हांफ जाते हैं तो 80 साल की राम सुम्बा जी दौड़ लगा लेती हैं। बस इतना ही करना है कि हम जो विश्वास खो चुके हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजीली हो सकता है। सो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए, एंड आई होप कि हम इसको अपने लिए ज़रूर मुकम्मल तौर पर करने की कोशिश करने वाले हैं। आइए फ़िलहाल आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ ले चलते हैं, ताकि आप भी एंजॉय करते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो म्यूज़िकल बीट्स के साथ।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: ध्यान किधर है, कंटेंट इधर है।
1: कौन सा कंटेंट
0: भाई? जो आप खुद लिखते हैं, भेजते हैं, हम तक पहुंच जाता है। आज कई सारे कंटेंट्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं हमारे पास और फेसबुक मैसेंजर पर। हमने आपको बताया है कि भाई फेसबुक पर हम आपको मिलते हैं अदनान अहमद के नाम से, और हम इंस्टाग्राम पे मिलते हैं RJ अदनान ADNAAN के नाम से। सो इसी पर आप अपने लिखे हुए जो कंटेंट्स हैं या अपने आसपास के लोगों के लिखे कंटेंट, उनके नाम और स्थान के नाम के साथ आप हम तक पहुँचा देते हैं, और हम बाकी सभी तक वो रिसाइट करके पहुँचा देते हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सबसे पहले प्रीति जी ने भेजा है बहराइच से, आप लिखती हैं इत्र और मित्र, क्या बात है। इत्र महकाए सारा जहां, मित्र सवारे उचित मंजिल अपने मित्रों की। इंसान का व्यवहार और किरदार हो यदि विनम्र, तो उसे याद रखता सारा जहां। लेकिन ये कलयुग है भाई, सही पहचान में ना आते कि कौन है, कौन है असली और कौन है नकली। नकली इत्र जैसे भरमार हैं आजकल अनेकों ठग और दिखावे का झूठा व्यक्तित्व। बहुतायत संख्या में लोग आजकल दिखावे और असली नकली में पहचान ना समझ पाते और दिखावे और वाहवाही के दलदल में फंसते चले जाते। सही इत्र के जैसे सही मित्र मिल जाए यदि सभी को अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी संवर और महक जाए सभी इंसान का इस जहां में। क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने कही, थैंक यू सो मच टू यू। और अच्छे फ्रेंड्स ऑफकोर्स, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारी बबीता शर्मा जी का कंटेंट है, आप लिखती हैं बैठे हो इस कदर क्या सोच रहे हो, बैठे हो इस कदर क्या सोच रहे हो, किस ख्याल में अपनी आंखें भिगो रहे हो, अगर मेरी याद है तो कह भी दो, खामोशियों में यूं क्यों उम्र खो रहे हो। मैं तो यहीं हूं तुम्हारी हर धड़कन के पास, फिर किस फासले का बोझ ढो रहे हो, जो कहना है आज कह डालो, दिल के दरवाजे कब से खोल रहे हो। प्रेम इजहार से छोटा नहीं होता, फिर अपने ही एहसास से क्यों डर रहे हो। आओ इस चुप्पी को शब्दों का सहारा दें, जो अधूरी रह गई थी उसे फिर से हमारा दें। बैठे हो इस कदर क्या सोच रहे हो, या फिर मेरी ही तरह मुझे सोच रहे हो। क्या बात है, वाओ, बहुत प्यारा लिखा है, थैंक यू सो मच बबीता शर्मा जी। इसके बाद यामिनी चौहान जी ने भेजा है, सबसे गहरा रिश्ता साथ रहने से नहीं, एक दूसरे को महसूस करने से बनता है। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास से जिंदा रहते हैं। आप तन्हा जब होते हैं, जब कोई आपके पास तो होता है मगर आपके साथ नहीं होता। भीड़ कभी किसी को अकेला नहीं करती, अकेला तो वो एहसास कर देता है जब आपकी खामोशी को सुनने वाला कोई नहीं होता, आपकी मौजूदगी महसूस करने वाला कोई नहीं होता। इंसान को जगह नहीं अपनापन चाहिए, और जहां अपनापन ना मिले वहां सबसे बड़ी भीड़ भी तन्हाई जैसे लगती है। कितनी सच्ची बात कही आपने, वाह यामिनी चौहान जी, बहुत प्यारी बात कही है, बहुत अच्छे अंदाज में कही है आपने। इसके बाद डॉक्टर साक्षी यादव जी लिखती हैं, वर्षा कुमारी पायल जी का है नेक्स्ट, सबसे बड़ा दुख तो किसी अपने का छोड़ जाना होता है, मगर उससे भी गहरा जख्म तब मिलता है जब वही शख्स लौटकर सामने खड़ा हो और दिल चाहे भी तो फिर उसे अपना बना ना सके। क्या बात है, वक्त ने रिश्तों के दरमियान ऐसी खामोशी लिख दी कि पहचान बाकी रही, अपनापन खो गया, वो लौटे भी तो क्या लौटे, एक बार जो टूट गया तो भरोसा फिर जुड़ ना सका। कितनी प्यारी बात कही वर्षा कुमारी पायल जी ने, थैंक यू सो मच टू यू। डॉक्टर साक्षी यादव लिखती हैं, रास्तों में आंधियां हों तब भी कदम रुकने नहीं चाहिए। अर्ज है कि रास्तों में आंधियां हों तब भी कदम रुकने नहीं चाहिए, अपनों से ठोकरें कितने भी मिले सपने टूटने नहीं चाहिए, और वक्त हर जख्म का हिसाब एक दिन खुद ही कर देगा, क्यों ही फिर सोचना इतना। कि वक्त हर जख्म का हिसाब एक दिन खुद ही कर देगा, क्यों ही फिर सोचना इतना, बस मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद से हारना नहीं चाहिए। क्या बात है, वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। मिस्टर आकाश लिखते हैं नवदीप वेस्ट बंगाल से, जमाने ने इंसानों को तालियों का ऐसा तलबगार बना दिया कि दर्द भी अब तमाशा लगने लगा है। अर्ज है, जमाने ने हम इंसानों को तालियों का ऐसा तलबगार बना दिया कि दर्द भी अब तमाशा लगने लगा है। हकीकत बयां करने वालों को हमने ऐसा तमाचा लगाया कि आईना तक खुद से निगाहें चुराने लगा, और शेर के साथ ग्लैडिएटरों की लड़ाई तो बस लोगों का सच से ध्यान भटकाने का जरिया था। कि शेर के साथ ग्लैडिएटरों की लड़ाई तो बस आवाम का सच से ध्यान भटकाने का जरिया था। चेहरे बदलते रहे सदियों से, मगर हक को कुचलने का खेल एक साथ चलने लगा। वाह क्या बात है, सुपर्ब लिखा है मिस्टर आकाश फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच टू यू।
मिस्टर आकाश, डॉक्टर साक्षी यादव, वर्षा कुमारी पायल जी, पुनीता सिंह जी, यामिनी चौहान जी, बबीता शर्मा जी और प्रीति जी, आप सब लोगों ने लाजवाब लिखा है अलग अलग मौजू पर, अलग अलग बातों को लेकर के। थैंक यू सो मच कि आपने हम तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ आप बाकी लोग जो लिखते हैं या उनके कोई कांटेक्ट में, उनको कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई घर का, तो वो भी हम तक फेसबुक मैसेंजर या हमारे पास में इंस्टाग्राम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल कुछ और भी मैसेजेस आ गए हैं, उसके बाद आइए बताते हैं कौन कौन आया। तमन्ना का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम। लवली सिंह गोंडा से लिखते हैं, अदनान सर गुड मॉर्निंग, गोंडा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच लवली। इंसान को इंसान से दूर करने में पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है, क्या बात है। कमल नैन जी हमारे मौजूद है, आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। प्रीति जी ने कहा है, वर्तमान समय में ऐसे एथलीट से प्रेरणा लेनी चाहिए जो लोग निराश हुए हैं। मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। सुजीत जी आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और सभी की तारीफ सुजीत जी ने, प्रीति जी ने कर दी है, थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत प्यारा लिखा है, एंड सबसे अच्छी बात है कि आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो लिखते हैं, क्या बात है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, वापस से मिलेंगे आपसे ट्यूसडे मॉर्निंग यानी कल के सुबह वाले शो में। तब तक के लिए बैक टू बैक एंजॉय करते रहिए शोज अपने 89.6 FM पर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
12: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM
11: गोंडा शहर की धड़कन।
12: समता दी, आज आप सभी को इमलिया गांव जाने की तैयारी करनी है। हम सभी यानी किरण दीदी, गीता दीदी और आपको मेरे साथ साक्षी की शादी में जो जाना है।
13: पर जया, अभी तो उसकी शादी में काफी समय है। और किरण दीदी, आपकी तो नंद के घर ही शादी है, वो इमलिया गांव वाली, जिनके गांव को जाते समय रास्ते में पावर हाउस भी पड़ता है, जहां से पूरे शहर की बिजली की सप्लाई होती है।
14: हाँ समता और जया, केवल इतना ही नहीं, वहाँ तो पावर हाउस के बगल में ही जिला कारागार भी है। ये वो जगह है जहाँ जिला कारागार में स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी दी गई थी। उन्हें काकोरी कांड से जुड़े होने के कारण 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई है। आज भी इस दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के हर विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस दिन जनता को वो हर जगह घूमने की विशेष अनुमति दी जाती है।
15: अरे तो का, हम सबे हुए तो घूमे जावा जात है। चलो फिर से तैयारी कर लिया जाए, हुए जाए की शादी और सात वचन ना हो ये कैसे हो सकत है।
12: हाँ सही कहा आपने,
14: बिल्कुल सही। और आज का पहला गीत जो हम साक्षी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो है पता क्या, सात वचनों की लाज बचाना। सात वचनों की लाज बचाना ये सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि पति पत्नी का वो भरोसा है जो दो दिलों को जोड़े रखता है।

0: समता दी, ठंड का मौसम चल रहा है, मक्के की रोटी और सरसों का साग तो गांव में खूब बनता है। लगता है इस बार हमें इमलिया गांव में चूल्हे पर बनी मकई की रोटी, सरसों का साग, गाय का शुद्ध मक्खन और सर्दी वाली सजाव दही के साथ आंवले की चटनी, अचार, कई चीजें खाने को मिलेंगी। आहा, सोच के ही मजा आ गया।
1: अरे जया, बस करो ख्याली पुलाव के शेफ। दरअसल बात ये है कि अब वो पहले जैसी खेती नहीं रही और ना ही फसलों में वो बात रही, क्योंकि अब अनाज को ज्यादा उपज के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एक गाना हो जाए।
2: आज

0: हाँ समता, सच में बहुत ही दुखद है ये हमारी धरती और आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे इतना रसायन, उफ़ो, इससे धरती माँ की उर्वरा शक्ति छीण हो जाती है और तो और मिलावटी उपज से बीमारी इतनी फैलती है कि क्या बताऊँ, और हमारी उम्र में भी कमी देखने को मिलती है।
1: अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब ये बताओ कि ये बार कौन खेत घूमे जाए मिली वहाँ जाए पर। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तनिक कौनो ठीक गौ नहीं हुई जाए तो नीक लागे।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब हम सब चलते हैं दिव्यता की ओर, उस पल की ओर जब बेटा दूल्हा बनता है, माँ की आंखों में भीगती खुशी होती है, जैसे माँ कौशल्या रानी के गोद आज राम दुल्हा बने। अरे भाई, आज हर माँ को लगता है कि उसका लाल राम जैसा दूल्हा है, और दामाद को देखते ही ससुराल वाले खुद को दशरथ समझ लेते हैं।

0: जया, पता है इस समय दिसंबर चल रहा है तो रवि की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, मटर, मूली ये सब लगाई जाती है और इसी के दौरान तुरैया और कद्दू जैसी फसलें जो है पक के तैयार भी हो जाती हैं और साथ ही बरसीम भी लगाई जाती है जिसकी इस समय कटाई चल रही है। अच्छा, तो इनके साथ साथ अब की बार साक्षी की शादी भी देखने का मिली। वाह भाई वाह, खूब मजा आई।
1: अरे इतना ही नहीं, खाने को सारे शुद्ध पकवान, दही, दूध, घी और बहुत कुछ होगा।
2: हाँ समता, पर आजकल वो स्वाद कहाँ जो चूल्हे की बनी रोटी साग और रात की बासी सगपहता वाली दाल को चूल्हे पर घी, हींग, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च आदि के तड़के के साथ जब गरम किया जाता था, आहा मजा आ जाता है भाई, मेरे मुंह में तो लार गिर रही है।
3: हाँ दी, अब तो कोई चूल्हा जलाना जानता ही नहीं है। पहले तो पूरा घर और चूल्हा चिकनी मिट्टी का होता था, द्वार पर नीम आम जैसे बड़े पेड़ होते थे। अब तो गांव भी शहर सा बनता जा रहा है, कोई पेड़ लगाना ही नहीं चाहता।
0: हाँ जया, पर हमारी गांव की गूंज की टीम अपने उसी प्राकृतिक परिवेश को पुनः जीवित करने का काम कर रही है। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वो दिन याद दिलाते हैं कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, शुद्ध वातावरण भी होता था और उम्र सबकी लगभग लगभग 80 पार हुआ करती थी, कुछ तो 100 और उससे भी अधिक जीवित रहते थे। अब आजकल देखो 60 पार हो जाए तो जानो तो ये बड़ी बात होगी कि अगर कोई 60 की उम्र पार कर ले।
1: एकदम सही कहा दीदी। अच्छा जरा एक और गीत सीखते हैं। अरे भाई, दुखड़ा लेकर आप कहाँ बैठ गई? आप भूल गई कि हम सब शादी की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर से वही अपने जमाने का वार्तालाप।
2: अरे अरे, अब हल्दी की बातचीत कर लेते हैं। देखो भाई, ढोलक बजेगा, सखियाँ उस दिन गाएंगी और क्या गाएंगी, लागी लागी रे बन्नी को हल्दी आज, अरे शुभ होवे, ऐसे ही कुछ गाएंगी। और पता है हल्दी की चमक और बन्नी की जो निखार, फिर गांव के लड़के लाइन लगाते दिखते हैं, काकी हमको भी थोड़ी हल्दी लगा दो, शायद लाइफ चमक जाए।

0: वाह दीदी, तो शादी हल्दी की तैयारी पूरी हो गई।
1: हाँ, तो इस बार इमलिया गांव में खूब धूम मचेगी। जिधर आसपास की गोंडा मेडिकल कॉलेज, सर्किट हाउस और बादशाह बाग भी पड़ता है।
2: अरे आजकल गांव गांव कहाँ रह गया है। जहाँ परिवहन के साधन हो तो गांव और शहर की दूरियां ना के बराबर हो जाया करती हैं।
1: जाते जाते एक और गीत हो जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, अब आते हैं शादी के सबसे हंसी मजाक वाले रस्म की ओर, सुहाग रात के किस्सों पर। अंजोरिया की रात पिया काहे डराएगो, आओ ये गाना सुनते हैं किरण की आवाज में।
1: अरे पिया डराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। भाभियां कमरे के बाहर खड़ी हैं, दोस्त फोन पर लाइव अपडेट मांग रहे हैं, और इधर दुल्हन भी सोच रही है, और ये तो ऐसे ही चुपचाप है जैसे इंटरव्यू देने आए हों।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा।

0: कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: हो कैसे खेलन जइबो सावन माँ कजेरिया, बदरिया घेरिया इलना नदी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हां जी हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी, नमस्कार आदाब, स्वागत करते हैं आपके अपने वाला शो में। इसका नाम है ज्ञान असली लाइव, आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM। यह गोला शहर की धड़कन पर आपकी आरजुनती मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के वन ऑफ योर फेवरेट आफ्टरनून वाला शो, जिसमें बहुत सारी किस्से कहानियाँ, बहुत सारी बातें प्लस होती हैं ढेरों जानकारियाँ। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में ऑफकोर्स मैं अकेले नहीं हूँ, कोई और भी है इसीलिए मैंने ऐसा बोला। और मेरे साथ मौजूद है कौन कौन, लेट मी सी कौन है आज मेरे साथ।
2: हेलो मैम,
1: और ये आवाज़ हमने पहले भी कभी सुनी हुई है ऐसा हमको लग रहा है। अब जैसे सोच रहे होंगे बीच में पर्दा पड़ा है क्या जो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल लिसनर्स के बीच में, फिलहाल हमें लिसनर्स को दिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा दिल से दिल का रिश्ता है और हम आवाजों से ही जुड़ जाते हैं।
2: हेलो लिसनर, मैं हूँ संध्या और हम लोग और पहली बार मिल चुके हैं यहाँ पे स्टूडियो में।
1: आप स्टूडियो में मिल चुकी हैं, सुहानी जी मिल चुकी हैं और एक और जो है हमारे साथ मोहतरमा सृष्टि, वो भी हमसे मिल चुकी हैं। यूँ तो आप सभी आते रहते हो और मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स देती हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको टॉपिक ही ना दूँ तो?
3: तो हम कुछ करेंगे।
1: What do you mean by कुछ करेंगे?
2: हम अपने लिसनर के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तो करेंगे अगर आप टॉपिक ना देंगे।
1: फिलहाल के लिए लिसनर्स हम बता दें, यानी कि मैं बता दूँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना वो थ्योरीज जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अब ये मत कहिएगा आपके पास तो ऐसे थ्योरीज की भंडार भरे पड़े हैं और आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसा उठाकर ले आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं हमारे पास जिसको साइंस ने एक्सप्लेन नहीं किया आज तक, साइंस कभी बता नहीं पाई क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो क्या है, किसने दिया, कब दिया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या ये कोई ग्लिच है, क्या ये कोई यूनिवर्सल कॉन्टैक्ट है, ये क्या कुछ है भैया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभार लगता है ना कि हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं बट महसूस होता है पहले भी देखा गया है। इवन टीवीज में तो फ्लैशबैक में दिखा देते हैं कि ये तो पुराने जमाने का कुछ चल रहा है, हमारे पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ था और हमको अभी महसूस हो रहा है और उसको याद भी आ जाता है कि पिछले जन्म में मेरा रिश्ता तुमसे ये था, फलाना ढिमकाना था और इस जन्म में तो मेरा दुश्मन पैदा हो चुके हो। बट ऐसा हमारे साथ रियल में भी होता है, कुछ जगह पर जाने के बाद लगता है यहाँ मैं पहले भी आया हूँ। अब इससे पुनर्जन्म, आने वाला जन्म, पिछला जन्म मत जोड़िएगा क्योंकि एक साइंस है और साइंस में इसको एक नाम भी दिया गया है।
2: क्या मैम?
1: अभी क्यों बताओ?
3: मैम ऐसा होता तो जरूर है, जाने वाली बात नहीं, कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमको लगता है नहीं ये काम मैंने पहले कभी किया है।
1: और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी रूम में हम जा रहे हो, चार्जर लेना हो, रूम का दरवाजा जैसे ही क्रॉस करते हैं भूल जाते लेने के आए थे भैया।
2: यस मैम, ये सब मेरे साथ होता है, बिल्कुल सही कही हैं आप।
1: एक्चुअली ये सभी के साथ होता है और जब वो पूरा रूम देख डालेगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या लेने आए थे और जैसे ही रूम से बाहर आते वैसे ही याद आ जाता है कि अरे चार्जर लेने गए थे।
2: हाँ
1: होता है ना।
3: yes, ma'am.
1: क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या उस कमरे के बीच में कोई ऐसी दीवार बनी हुई है कि पोर्टल है जो हमने क्रॉस कर लिया और हम भूल गए कि हम क्या लेने आए थे, क्या दूसरा यूनिवर्स हमसे जुड़ रहा है। और ऐसा क्यों है कि हमारे दिमाग को सारी गलत जानकारियाँ भी सही लगती हैं। जैसे कि आपने याद होगा आपको कि आपके जो इमोजी वाला कीबोर्ड था उसमें कुछ इमोजीज थे जिसमें से एक चाय की इमोजी थी, बोबा टी की इमोजी थी, जिसमें एक चोर की इमोजी थी, पैसों की इमोजी थी, और सडन वो कहाँ गायब हो गई। और अगर आप उसे सर्च करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। प्लस इससे बड़ी बात आप गूगल पे जाके पूछोगे ना कि हो सकता है क्रिएटर ने हटा दिया, गूगल कहता है ये चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था वो हमारे दिमाग में क्यों है, सोचो सोचो। जैसे कि टेस्ला के बारे में कहा गया था कि भैया उनकी डेथ जेल में हो गई थी, बट उनकी डेथ तो जेल में नहीं हुई थी लेकिन दुनिया को यही पता है कि उनकी मौत जेल के अंदर हुई थी। क्यों?
3: क्योंकि झूठा मिथ फैलाया गया होगा।
1: नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, एक बात और पूछ लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के बाद अपने लिसनर को सोचने का मौका देंगे। शहनशाह का डायलॉग याद है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह।
2: यस मैम, आपने मुझसे ये डायलॉग किसी से बुलवाया भी था क्लास में।
1: है सभी को ये याद है?
2: हाँ।
1: सुहानी आपको याद है?
3: हाँ, वो अकबर बीरबल वाला।
1: रहने दो। शहनशाह वाला। लेकिन ये डायलॉग गलत है। असल डायलॉग है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और हम बोलते क्या है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। और ये बात अमिताभ बच्चन, जिन्होंने खुद इस डायलॉग को बोला है, वो भी नहीं जानते हैं कि जो डायलॉग वो आजकल बोलते हैं वो गलत है। वहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ होते था। लेकिन ये जानकारियाँ हमारे दिमाग में गलत कैसे आ जाती है और हमें क्यों वो सही लगने लग जाती है? जो चीज़ हमारे आसपास कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है वो ऑल सडन एग्जिस्ट कैसे कर लेती है? हमारे दिमाग को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब हमने पहले कहीं ना कहीं महसूस किया है? क्यों हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को देखना भूल जाता है? सामने रखी हुई चीज़ हमें अचानक से नहीं दिखती है और मम्मी आकर दिखाती है कि ये सामने ही तो रखी थी, और आप कहते मैंने पूरा किचन देखा था तो मुझे नहीं दिखा था।
3: ये कैसे होता है? मुझे
1: ऐसा क्यों होता है? और इसी बात का जवाब अगर चैट बॉक्स में किसी के पास है तो मुझे आगे दीजिए। और ऐसी ही कुछ थ्योरीज, कुछ चीज़ें जो अभी तक मिस्ट्री हैं, रहस्य हैं, उनको जानने वाले हैं कि साइंस में उनको क्या क्या नाम दिया गया है और क्यों क्यों आज तक वो सॉल्व नहीं हुई है। मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए आई थिंक अब आपका दिमाग लग गया होगा कहीं ना कहीं, और आप भी सोच में पड़ चुके होंगे कि आपके साथ भी तो ऐसा होता है, कमरे में घुसते तो कुछ है लेने के लिए लेकिन याद नहीं आता कि लेना क्या था, है कि नहीं। जैसे सजा जी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरी मम्मी के साथ भी होता है, और ये 90% लोगों के साथ होता है, लेकिन क्यों होता है इसका जवाब कौन देने वाला है? आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को जो हमने बीच में रोक दिया था, एक दिन तेरी राहों में बाहों में आऊंगा खो जाऊंगा। सुनते रहिए, मुस्कुराती रहिए, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आर्जुनती और मेरी कोहोस्ट सुहानी संध्या के साथ।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी अर्जुनती और आप सुन रही हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन। अगर आप ये सोच रहे हैं बारिश की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बारिश हो नहीं रही है, बस हमने बारिश का माहौल बना रखा है क्योंकि भाई हमारा मन कर रहा था बारिश को दोबारा देखने का। फिलहाल आज हम बात कर रहे थे उन चीज़ों की जो हमारी डेली लाइफ में होती ज़रूर है लेकिन हमारे दिमाग के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। और पहली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको कई लोग पुनर्जन्म से जोड़ दिया करते हैं और साइंस उसको कहती है डेजावू। डेजावू मतलब देना नहीं है कुछ भी, बस नाम है डेजावू। ये एक ऐसा नाम है जो शायद आपने सुना होगा, मे बी ना भी सुना हो, कुछ भी हो सकता है, बट इसको एक्सपीरियंस आपने ज़रूर किया होगा। अगर आपने कभी नोटिस किया है कुछ ऐसा कि किसी जगह पर जाने के बाद लगा है यार पहले भी आए हैं, किसी से बात करने के बाद लगा ये लाइन पहले भी सुनी है, आपने कुछ बोला है और लगा है कि यार सेम टू सेम तो पहले भी हुआ है, और आपको ये भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद सामने वाले का जवाब क्या आएगा, आप पहले से सब कुछ जान रहे हो और आपको अंदर से महसूस हो रहा है ये पहले हो चुका है, कहीं तो ये हो चुका है, एक बार ज़रूर हुआ है, कहाँ हुआ है इसका कोई जवाब नहीं होता। मेरे साथ ऐसे किस्से हुए हैं, पता नहीं क्यों लेकिन किसी जगह पर जाने के बाद लगा कि इस जगह को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? इवन कुछ जगह ऐसी भी मेरे ख्वाबों में आई हैं जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। क्यों? इसका जवाब मैं भी ढूंढ रही थी और इसके बाद समझ में आया कि ये जो फिनोमिना हो रहा है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मिस्टीरियस है। एक ऐसा फिनोमिना जो आपके दिमाग के साथ होता तो है बट इसका कोई जवाब नहीं होता। आपको लग सकता है कि हाँ ये हुआ हो बट ये होता नहीं है, आप जाते पहली बार ही हो, बस वो एक एहसास है, कुछ जुड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि शायद ये जो मल्टीवर्स होता है यानी कि हमारे पास जितने भी यूनिवर्स होते हैं इसमें कई डायमेंशंस होती हैं और उस डायमेंशन में हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे साथ ऐसा हुआ हो और हम उसको महसूस कर रहे हो। फिलहाल ये बस एक थ्योरी है, इस पर साइंस ने कभी भी कोई दावा नहीं किया है, बट जब लोग मानने बैठते हैं तो वो कुछ भी मानते हैं। वो मानते हैं कि हो सकता है ये आपका पुनर्जन्म हो यानी कि आप पहले भी एक बार जन्म ले चुके हैं और इसके बाद कहीं जाकर आपको चीज़ें महसूस हो रही हैं। जैसे करण अर्जुन फिल्म में आपने देखा होगा कि करण अर्जुन को वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो उनके पहले जन्म में होता है क्योंकि उन्हें फ्लैशबैक आ रहे होते हैं उस चीज़ के, बट आपको फ्लैशबैक नहीं आता है, आप बस महसूस करते हो। और इसको कई लोग दावा कर देते हैं कि नहीं नहीं ये पहले भी हुआ है। वहीं पर कुछ लोग जो पुनर्जन्म पे यकीन नहीं करते हैं लेकिन मल्टीवर्स को मानते हैं यानी कि डायमेंशंस को मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ और भी तो मल्टीवर्स चल रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी एक के साथ ऐसा कुछ हुआ हो और तब हमें महसूस हो रहा हो। अगेन ये भी एक थ्योरी ही है। तो भाई आप इनमें से किस थ्योरी पर बिलीव करती हैं संध्या जी?
2: मैम कौन से थ्योरी पे, पर कौन से थ्योरी पे मैं अभी खुद नहीं समझ पा रही हूँ चीज़ों को ढंग से।
1: कुछ चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लेती है। मल्टीवर्स वाला सुहानी जी, आप समझती हैं कि ये मल्टीवर्स जैसी कोई चीज़ होती है?
2: तो मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन है
1: जी।
2: मैं बचपन से लेके और इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे सपनों में अक्सर ज़्यादा पानी से समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और फिर वहाँ पे मेरे साथ में कुछ ऐसा हादसा होता है जो मैं बचपन से लेके इतनी बड़ी हूँ तब भी मुझे वैसे ही सपने क्यों आते हैं, मुझे पानी से डर क्यों लगता है, जबकि अभी मेरे जान में तो मेरे साथ में कोई हादसा हुआ नहीं है लेकिन बचपन से अभी तक सिर्फ पानी पानी वाला सपना देख रहे, इसका क्या मतलब?
1: आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कुछ गेम खेल रहा है।
2: अच्छा
1: हाँ, आपको मैं बता दूँ जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो एक्चुअल में कुछ सेकंड के होते हैं और हमें लगता है वो पूरी रात चलते हैं। वो होते हैं मुश्किल से 3 से 7 सेकंड के हैं, हमें महसूस होता है कि ये पूरे 7 घंटे चल रहे थे, जितनी देर हमने सोए हैं उतनी देर वो चल रहे, बट ऐसा नहीं होता, वो एक छोटा सा ग्लिम्प होता है जो आपको दिखता है। और ड्रीम क्यों आते हैं इस बात का जवाब भी साइंस के पास अभी तक नहीं है। साइंस कहते हैं कि भैया हो सकता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका कॉन्शियस माइंड जो चीज़ें देखता है जो जानता है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत सारी चीज़ों को आपके थॉट्स को आपकी मैनिफेस्टेशन को इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और उसके भी पीछे होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड जो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा सोते सोते झटके लग जाते हैं, है ना, हम सो रहे होते रहता है, हम गिर रहे हैं ऊपर से और एकदम से झटके से उठ जाते हैं,
2: अचानक से पूरी बॉडी हिल जाती है, डीपली नींद में हो तब भी जैसे कि गिर गए हो।
3: हाँ, मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारी माइंड को लगता है जब बहुत अच्छे से सो जाते हैं तो उसको लगता है ये इंसान मर गया है।
1: एक्चुअल में एक ये फिनोमेना है बॉडी हमारे खुद को वेक करने के लिए कि उसको लगता है कि सिस्टम डाउन ना पड़े, इसलिए वो झटके देती है। और कुछ लोग ये भी थ्योरी देते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कभी पेड़ पे सोया करते थे और उनकी बॉडी उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, तो ये जो फीलिंग थी ये वहाँ डेवलप हुई थी। जैसे ही लगता था शरीर को कि ये बॉडी नीचे गिर जाएगी बैलेंस ना बना पाने की वजह से, वैसे ही उनको ये थोड़ा सा शॉक लगता था और वो झटके से उठ बैठते थे। अब इसमें से कौन सी थ्योरी सच है, हू नोस।
2: आपकी बात तो सही है मैम।
1: तभी तो मैं कह रही हूँ आपके अनकॉन्शियस माइंड में है वो दिमाग जो बहुत पीछे है, जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, जो आपके उन थॉट्स को कैरी कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपके फादर, आपकी मदर, उनकी मदर और उनकी मदर के अंदर होंगे। वो उन चीजों को कैरी करता आ रहा है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कैरी करता आ रहा है। फिलहाल हमारा दिमाग जितना छोटा दिखता है ना, इसको समझना उतना ही मुश्किल है। हम अंतरिक्ष में तो बहुत सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने अंदर और अपने ही पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों की तलाश अभी तक नहीं कर पाए। समुद्र के अंदर क्या है, हमारे छोटे से दिमाग में इतनी पावर कहाँ से है कि ये बल्ब भी जला दे। ये सारी चीजें सोचने लायक होती हैं और सोचा भी जाता है, साइंटिस्ट इसमें काम भी करते हैं, बट वही है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता तब तक सिर्फ ये थ्योरी बनकर रह जाती है।
2: यस मैम।
3: मैम कुछ साइंटिस्ट इसको गेस कर पाए हैं कि क्या है, हालांकि वो बता नहीं रहे, वो बात अलग
1: थी। एक्चुअली काम तो चलता रहता है, क्यों कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जिसको मेरी ही तरह उस लेवल की क्यूरियोसिटी होगी, उसे जानना है ये सपने क्यों आते हैं और कुछ सपने सिंबॉलिक क्यों होते हैं, वो एक ही तरह की चीजें क्यों बताया करते हैं, क्या मकसद है।
2: हाँ मैम, जैसे आपने सिंबॉलिक बोला तो मेरा सपना बिल्कुल वैसे होता
1: है ना। अब देखो अगर आप थोड़ा सा अलग हट के बात करो, जिसमें सपनों की दुनिया जोड़ी जाती है, जो लोग ड्रीम्स पे ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअली चीजें मानते हैं और वो ये कहते हैं कि सपने आपको अच्छे या बुरा होने की बातें बताते हैं, अगर आपने सपने में कुछ देखा है तो वो कहीं ना कहीं साइन होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बेचारे क्या क्या बातें अर्थ निकाल लेते हैं। बट साइंस इससे थोड़ा अपोजिट मानती, वो इसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बोलती है, जहां पर आप सपनों में जब वो चीजें देखते हो जो शायद आपने जिंदगी में ना देखी हो, या कुछ ऐसे चेहरे देखते हो जो आपने कभी ना देखे हो, तो जो आपके सपनों को रीड करने वाली कैटेगरी है वो कहती है कि ये सारे तो ईविल स्पिरिट्स हैं। हो सकता है आपके पास कोई स्पिरिट हो, क्योंकि आपके दिमाग उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता जो उसने कभी ना देखे हों। बट साइंस कहता है कि आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड रहते हैं। हो सकता है आपने देखा हो, ध्यान ना दिया हो और आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो चेहरा सामने आया हो, उसने क्रिएट किया हो।
2: यस मैम।
1: तो भाई दो अलग अलग लोग दो अलग अलग थ्योरीज पेश करते हैं। फिलहाल ये तो मेरे लिसनर बताएंगे क्यों याद आती है, और क्या आपने कभी देजा वो महसूस किया है, वो चीज जो लगा हो कि पहले कभी हो चुका है बट कभी हुआ नहीं था, बताइए बताइए। चैटबॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपने जवाब चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। सुनते रहिए ज्ञान असली लाइफ। आज थोड़ी सी दिमाग और दिल की बातें हो रही हैं, वो बातें जिन्हें हम अक्सर कहने से डरते हैं, ये सोचकर कि क्या कहेंगे लोग, कहीं हमें ही अजीब बताकर पागल खाने में भर्ती तो नहीं कराएंगे, ऐसा होता है। तो सुनते रहिए अपनी होस्ट एंड दोस्त सुनती के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके इस दिमाग लगाने वाले कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्ञानसली लाइव। मैं हूं आपकी अपनी आरजू नती और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन। और मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस गाने में खोने से पहले, मेरे का ख्याल है कि हमने सपनों की बात कर ली, देजा वू की बात कर ली, और अब बात कर लेते हैं उस मेमोरी की जो आपने शायद शायद हमेशा से गलत याद कर रखी है, जो शायद कभी हुआ ही नहीं और आपको याद बहुत अच्छे से है। कभी ऐसा हुआ है कि बचपन की कोई कहानी, कोई किस्सा आपको याद हो और आप अपनी मम्मी से कहो, मम्मी ऐसा हुआ, तो मम्मी कहती हैं तुमको बहुत पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
3: हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें जो मम्मी झूठ बोलती रहती कि नहीं ये सब ऐसा नहीं होता है, तो पता नहीं क्या बक रही है।
2: एक्चुअली हम लोगों को अपनी मेमोरीज तो याद रहती हैं, हमें लगता है कि बचपन से हमें हर एक बात याद है। हो सकता है कि 3 से 4 साल के बाद आपको दुनिया की हर एक बात याद हो, आपको याद हो किस तरह से आपने पापा के साथ बाहर जाते थे, मेला घूमने गए, आपने कौन कौन से फूल उठाए, लेकिन उससे पहले का क्या, यानी कि उससे पहले जब आप कुछ भी नहीं बोल पाते थे, आप कुछ नहीं कर पाते, क्या उस वक्त कोई मेमोरी नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। याद नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि 2 साल तक मुझे सारी बातें याद है, यानी कि सेकेंड ईयर में जो कुछ भी हुआ था वो मुझे याद है, और इस तरह की वो अपनी मेमोरी हमेशा लेकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें आकर कोई ये नहीं बताता कि जो तुम अभी तक सोच रहे हो वो गलत है।
3: मतलब
2: कि 3 साल के पहले आपको जो कुछ भी याद है हो सकता है वो कभी हुआ ही ना हो, बस वो आपके दिमाग का बनाया गया एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा माया जाल है जिससे बाहर आप कभी निकले ही नहीं हो।
4: जैसे मैम वो मेरा सपना।
2: बिल्कुल, सपने में मत जाइए क्योंकि सपना मेरा भी बहुत डेंजरस है और सपने की वजह से मुझे पानी से डर लगने लगा है, स्पेशली जिसकी सतह नहीं दिखती है।
4: देखो मैम, मेरा भी सपना पानी वाला है, आपका भी है, क्या ही है, पानी पानी है सब।
2: नहीं, पानी पानी नहीं है। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे एक ऐसी मेमोरी की जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं फॉल्स मेमोरी। वैसे तो मेरे पास आज ऐसी 5 मिस्टीरियस बातें थी आपसे कहने के लिए, लेकिन वक्त हमेशा धोखा देता है और इसीलिए हम बात करेंगे फॉल्स मेमोरी की, यानी कि आपके दिमाग के अंदर कुछ झूठी यादें होती हैं जो कभी सच नहीं होती, बस हमें वो याद रह जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो कभी हुआ था, ऐसा लगता है कि वो रियल थी, लेकिन वो अक्सर हमारी इमेजिनेशन ही होती है, वो हमारी सिर्फ कल्पना होती है, भ्रम होते हैं, भ्रामक जानकारियाँ होती हैं, झूठी यादें होती हैं, उनका ना कोई प्रूफ होता है ना कोई हकीकत से वास्ता होता है, बस हमें याद होता है। और ऐसा क्यों होता है ये आज भी एक मिस्ट्री है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि निकोला टेस्ला का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, सुना है जी, आपने नाम सुना है, बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे, और उनकी बात की जाए तो लोग जानते हैं इतना कि निकोला टेस्ला की जो डेथ थी वो जेल में हुई थी जब वो एक कैदी के रूप में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1943, वो भी एक अच्छे खासे रिसॉर्ट में, यानी कि एक होटल के कमरे में, होटल का नाम था होटल न्यू यॉर्कर, उस कमरे के नंबर 3327 यानी कि 3327 में, बेहद कंगाली और अकेलेपन में हुई थी, ना कि जेल के अंदर, बट लोगों को याद है कि निकोला टेस्ला की जो डेथ हुई थी वो जेल में हुई थी, बल्कि उसके 40 साल बाद उनकी डेथ हुई है। कैन इमेजिन, हमें जो यादें पता हैं वो एक्चुअल में कभी थी ही नहीं, बस हमें याद हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सच हैं। ऐसे ही आपके कीबोर्ड की इमोजी भी है, एक चोर या डाकू वाली इमोजी आपको याद होगी जिसको इंग्लिश

0: द रॉबर इमोजी कहते हैं। लोगों को याद है कि उसने टी शर्ट पहनी है जो कि जेब्रा की तरह है, यानी कि स्ट्रिप पड़ी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसकी आंखों पर काला मास्क है, हाथों में पैसों की भरी बोरी है। लेकिन ये इमोजी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ये एग्जिस्ट कभी नहीं कर रही थी। इवन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे द रॉबर इमोजी, आपको ये इमोजी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई इमोजी कभी बनी ही नहीं थी। बट हमारे पास इसका सबूत है, हमें लगता है कि ये इमोजी थी। और अगर आप अपने कीबोर्ड उठाकर अभी भी सर्च करने बैठ जाओगे कि वो इमोजी मैंने तो देखी थी कहाँ गई, वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो थी ही नहीं। तो हमारे दिमाग को ये बात क्यों याद है, क्यों उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं? एनी गेस?
1: मैम अभी आपने बताया कि वो कभी एक्चुअल में होता नहीं है, बस दिमाग ऐसे याद रखता है।
2: तो मैम क्या हम अपनी पुरानी चैट खोल के ऐसा वो वाला इमोजी ढूंढ नहीं सकते वापस?
0: अब कोशिश करके देख लो,
2: अगर थी तो हमने किसी को भेजी तो जरूर होगी, और जो भेजी है तो वहाँ पे तो सेव होगा ना।
0: कोशिश करके देख सकते हो।
2: ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ शायद मिल जाए मुझे।
0: कुछ टेक्निकल ग्लिच के लिए आपसे माफी चाहेंगे, एंड बात करते हैं वापस से हम उसी टॉपिक पर, यानी कि हमारी फॉल्स मेमोरी, वो यादें जो हमें कभी याद ही नहीं है, मतलब याद तो है लेकिन वो सच नहीं है। और ऐसा कई बार होता है, इवन हो सकता है कि अभी तक आप अपने बचपन के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, याद कर रहे हो, वो भी एक फॉल्स मेमोरी ही हो, वो भी सच ना हो, हु नोस।
2: ऐसा हो सकता है।
0: काफ़ी डरावनी बात है ना कि हमें जो याद है वो कभी हुआ ही नहीं है।
1: हाँ मैम, मैं भी सोचती हूँ ये कैसे पॉसिबल है कि जो कभी हुआ नहीं वो याद है।
0: अब हो तो कुछ भी सकता है। फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आऊँगी ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस कहानी, मिस्टीरियस बातें लेकर के, जो असल दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और शायद जिनको समझना अभी भी पड़ा है बाकी। अभी भी साइंस उस बात को समझ नहीं पाया, अभी भी उस चीज़ों को वो जान नहीं पाए हैं कि कैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो एक रहस्य से भरी हैं। क्यों आज तक हम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए? क्यों आज भी हम समंदर के नीचे नहीं जाते हैं? क्यों कुछ लोग यूं ही गायब हो जाते हैं और हमें उनकी खबर भी पता नहीं चलती? क्यों? इस क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हमारे साथ तमन्ना आरजू जी जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। राही हमारे साथ जुड़ी हैं नवाबों के शहर लखनऊ से, आप दोनों का स्वागत करते हैं ज्ञान असली लाइफ में। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं, और इसी गाने के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए पेश करते हैं अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में हाफ गर्लफ्रेंड से, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका अगला कार्यक्रम सेहतिया सिंह सुनना मत भूलेगा।
1: बाय बाय लिसनर्स।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से जानते हैं और ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही बात करेंगे आशा और ANM जैसे स्वास्थ्य कर्मी की कि इसमें क्या भूमिका होती है, अस्पतालों में क्या सहूलियतें मिलती हैं और मरीजों को किस तरह की फॉलो अप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हम सभी की अपनी प्यारी टीकन भाभी।
1: धन्यवाद आरजी, आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी यही कुछ 72-73 साल। कुछ समय पहले तक तो वो खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। कुछ महीनों से उनके सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहां से आएगा। एक दिन हालत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और एक भी रुपया नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए, आयुष्मान PMJAY में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखकर शामिल किया जाता है या फिर बगैर शर्त इलाज होता है?
1: देखिए, आयुष्मान PMJAY में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना भी लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई है तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है?
1: आरजे भैया, आयुष्मान PMJAY में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे गंभीर रोगों का भी इलाज होता है, वो भी मुफ्त में। प्रोस्टेट का कैंसर हो, घुटना बदलवाना हो, कूल्हा रिप्लेस करवाना हो या फिर न्यूरो की कोई बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: भाभी, एक खास सवाल तो पूछना भूल ही गया था, छोटे बच्चों का आयुष्मान PMJAY में इलाज कैसे होता है? क्या उनके लिए अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं भैया, छोटे बच्चों का जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं। यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती, बस माता या पिता का आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
0: तो भाभी, अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल है? क्या सिर्फ दवाइयाँ मिलती है या टेस्ट, खाना और बेड वगैरह भी इसमें आता है?
1: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। अब भर्ती होने से 3 दिन पहले तक डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाएं, ये सब भी योजना के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जांच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शंस हो, अब आयुष्मान पीएम जेएवाई में शामिल है। अस्पताल का बेड, आईसीयू या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खाना सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि PMJAY योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: अरे वाह, तो भाभी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान PMJAY में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या छोटी जांच, यानी इलाज के बाद की चिंता भी नहीं करनी पड़ती।
0: भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तो क्या वहाँ पर भी उसका इलाज हो पाएगा?
1: हाँ अर्जी भैया, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करा सकता है।
0: तो टीकन भाभी, सेहत की रक्षा से ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो क्या आयुष्मान PMJAY में इनका कोई और भी काम होता है? यानी क्या क्या करती हैं ये?
1: देखिए भैया, आशा और ANM की आयुष्मान PMJAY में खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती है जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है, उसमें परिवार का नाम, उसके आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJAY योजना को समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इससे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में लोगों को बताती है। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियाँ 1 हफ्ते के अंदर मरीज से मिलने जरूर जाती हैं। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं, विजिट की जो तारीख बताई है, सब चेक करती हैं और मरीज को ठीक से समझाती हैं। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात का समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम भी कर देती हैं। इनका काम यही खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिख कर रखती हैं, ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो।
0: तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई भाभी आपने। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल से हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
1: हाँ आरजी भैया, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बन गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 है। किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी वेबसाइट www.pmjay.gov.in है। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम सूची में है या नहीं और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैटबॉट भी है जिसमें आप बस अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर है, कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
0: भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान पीएमजेएवाई का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका बताइए कि वो आसान तरीका क्या हो सकता है?
1: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप सबसे बढ़िया है। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुनें। अब चाहे तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुनें। जैसे ही अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन करें और मैप आपको सीधे आयुष्मान पीएमजेएवाई वाले अस्पताल तक पहुंचा देगा। आयुष्मान साथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
0: तो भाभी, आयुष्मान पीएमजेएवाई योजना जो है वो काफी अच्छी है। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ है, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं।
1: इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां हल कर दी है। पहले जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की भी सोच नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक के बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करा रहे हैं।
0: सही बात है भाभी, गांव में तो कई लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे।
1: हाँ अर्जी भैया, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर हो या हड्डी का। बहुत से बुजुर्ग जिनका इलाज सालों से अटका था अब अच्छे डॉक्टर से आराम से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान पीएमजेएवाई ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी की सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। सो दोस्तों, आयुष्मान पीएमजेएवाई योजना ने वाकई लाखों गरीब परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे दिए बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर सर्जरी करवा रहे हैं। श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि
2: हम अपने
0: और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
4: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आ गया आप सभी का पसंदीदा शो सुन सहेली। बिल्कुल सुन सहेली। और आज है हमारा लजीज लजीज लजीज वाला मंडे। और मंडे में कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ आपकी किचन से और कुछ हमारे किचन से। लेकिन उस सभी से पहले कैसे हैं आप सब, फटाफट से अपना हालचाल बता दीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भाई, सुन सहेली है और सुन सहेली में सहेलियां नहीं है, तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है और क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले जो सुन सहेली का दस्तूर है कि आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। और आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी यानी कि मेरी और आपकी प्यारी आज संता जी जो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, दोनों की तरफ से शुभ दोपहरिया। बहुत ही शुभ हो आपकी दोपहरिया और तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। तो भाई अब बता देते हैं कि सहेलियां जो हैं वो आज आपकी प्यारी प्यारी आर्य समता जी जो हैं वो हैं छुट्टी पे। और छुट्टी पे क्यों हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ये सब वो आपको और छुट्टी पे क्यों हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ये सब वो आपको आकर के ज़रूर बताएंगी कि वो कहाँ थी और उन्होंने क्या किया, तो सब हम जानेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले पहले पहले भाई आज का दिन है जो हमें आपके साथ इंजॉय करना, यानी कि मैं हूँ और आप हैं और हम मिलकर के आज के दिन को इंजॉय करेंगे। और जब मैम आएंगी तो उन्हें बताएंगे कि हमने कितना सारा इंजॉय किया। तो आज आप रेसिपीज़ के साथ इंजॉय करेंगे, तो फटाफट से आ जाइए। और सबसे पहले सेगमेंट को हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि भाई मौसम है बहुत ही प्यारा, मतलब मौसम का तो हम क्या ही कहें। और इस मौसम में सभी को कहीं ना कहीं मन करता है ना कि प्यारा सा मौसम हो, उसमें आपके हाथ में अमरूद हो या फिर गरम गरम भुट्टे हो, या फिर बहुत ही इस मौसम में जो चीज़ खाई जाती है वो तो आम। आम तो भाई सभी घरों में आते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं, तो फटाफट से मन में यही होता है ना कि अच्छे अच्छे आम मिल जाएं। अब आप सोच रहे होंगे आज इतनी खाने की बातें, खाने की बातें, भाई खाना खजाना है और खाने की बातें नहीं होंगी तो माहौल कैसे बनेगा। तो माहौल तो हमने कर दिया है सेट। चलिए अब चलते हैं, आपको एक प्यारी सी पोइट्री सुनाते हैं और ये भी आपको कुछ खाने के स्वाद की तरफ ही ले जाती है, क्योंकि आज पूरे शो में सिर्फ और सिर्फ स्वाद की ही बातें होंगी, स्वाद की बातें होंगी, सेहत की बातें होंगी। क्योंकि हमारा जो खाना होता है, यानी कि हम जो खाते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ से भी जुड़ा होता है, इसलिए आज आपके लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड बातें भी हैं। और रेसिपीज़ तो भाई होंगी ही होंगी, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी, कुछ रेसिपीज़ आपको बताएंगी हमारी मास्टर शेफ। तो चलिए चलते हैं लिसनर्स और फटाफट से आपको पोइट्री सुनाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो तो अभी अभी बस शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआत एक अच्छी सी होनी चाहिए। तो चलिए पोइट्री सुनाते हैं और आप सभी सुनिए और बताइए कि आप सभी को ये पोइट्री कैसी लगी। तो सुनते हैं। जिंदगी का असली मज़ा तो बस खाने में है, जिंदगी का असली मज़ा तो बस खाने में है, क्या रखा है इस दुनिया के ताने बाने में, पेट भरे या ना भरे, पेट भरे या ना भरे पर मन नहीं भरता, सच्ची जन्नत तो बस स्वाद के ठिकानों में है। सुबह की चाय हो और समोसे से होती है शुरुआत, सुबह की चाय की समोसे से होती है शुरुआत, दोपहर की भूख

0: ली देखकर खुश होती है। डाइट वाइट की बातें तो बस कहने की हैं। शौकीनों की नज़र तो बस मीठे की टोली पर होती है। गोलगप्पे का पानी हो या तीखी सी चटनी जायके के आगे कोई भी बात नहीं कटती। वजन बढ़ने की फिक्र वो कल पर छोड़ देते हैं। आज तो बस पेट पूजा है, कोई कसर नहीं रखनी। या सिर्फ भूख नहीं, खाने से गहरा नाता है। इनका तो दिल भी पेट से होकर जाता है। जो खाने के शौकीन हैं, वो खुल कर जीते हैं। हरने वाले में उन्हें खुदा नजर आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हरने वाले में हमें वाकई खुदा नजर आता है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने आपको वो निवाला, वो खाना दिया है। और इस बात के लिए हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और एक अच्छी आदत आई थिंक सभी में होनी चाहिए कि जब आप खाना खाने बैठें तो हाथ जोड़कर प्रभु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि दो वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता, और अगर हमें मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। तो लिसनर्स, ये थी प्यारी सी पोइट्री हमारे खाना खजाना वाले दिन पे। तो आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। भाई, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज क्या है ये जानने के लिए आई नो कि आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए बता देते हैं, और आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है ये कहता है कि हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को चोट ना पहुंचे। लेकिन जब किसी की वजह से आपको चोट पहुंचने लगे तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। हर बार चुप रहना ही समस्या का हल नहीं है। कई बार जवाब देना, बातों को कहना और सामने वाले को ये समझाना कि उससे गलती हो गई है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार किसी का व्यवहार हमारे साथ गलत होता है, उसका बिहेवियर हमें सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम चुप हो जाते हैं। हम कहते हैं, अरे चलो छोड़ो, हटाओ, रहने दो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप हो जाते हैं तो उससे सामने वाले को ये लगता है कि उसने कोई गलती ही नहीं की, उसे लगता है कि उसने जो किया, जो कहा, सब सही था। बट ऐसा होता तो नहीं है ना। इसलिए हमेशा जब भी कोई गलत है तो उस पर आवाज़ उठाएं, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके कि उसने गलत किया, और ये भी आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आप सही हैं। याद रखिए कि अगर आपकी कुछ शब्दों की वजह से, कई बार हम कहते हैं ना कि अगर कई बार मौन से बड़ी ढाल नहीं होती तो फिर आवाज़ से बड़ा अस्त्र भी नहीं होता, शब्दों से बड़ा। कहने का मतलब ये है कि आपके शब्द ही होते हैं जो किसी को गलत है अगर तो उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं, और अगर कुछ सही है तो उसे और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों पर फोकस करिए, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि सामने अगर वाला सुने तो उसे लगे कि हाँ, ये मेरी गलती थी और ये मेरी गलती पर बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आवाज़ उठाएं तो सही के लिए उठाएं, सही बातें बोलें, सही शब्दों का प्रयोग करें, और हमेशा सही की तरफ ही जाएं, क्योंकि गलत की तरफ तो कभी जाना ही नहीं है। इसलिए हमेशा सही चुनें, सही करें और सही की तरफ जाएं। इसी रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ में चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ चलेंगे, और बस यू गए और यू माय लिसनर्स, और वापस आते हैं एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी और टेस्टी वाली रेसिपी के साथ आएंगे इस सॉन्ग के उस पार, और आपको बताएंगे कि आज हमारी रसोई में क्या पकने वाला है या क्या बन चुका है जो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, बस यूं गए यूं आए स्टूडियो।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, और सुन सहेली में आज बात हो रही है कुछ खाने से रिलेटेड। खाने से रिलेटेड है, और आज पहली डिश जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी टेस्टी

भी होने वाली है और कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है भाई। मौसम है बहुत ही प्यारा और अमरूद जो हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं इस समय। और अगर इस प्यारे से मौसम में या बारिश के मौसम में सोचिए और इमेजिन करिए कि आप बैठे हों अपनी बालकनी में और बढ़िया सी बारिश हो रही है और उस बारिश के साथ में आलू टिक्की खाने को मिल जाए, तो मतलब गर्मा गर्म आलू टिक्की और आलू टिक्की के साथ में अमरूद की चटनी। बिल्कुल सही सुना आपने, आलू टिक्की के साथ अमरूद की तीखी खट्टी मीठी अगर चटनी मिल जाए, ओ माय गॉड, तो फिर क्या ही चाहिए। और बारिश को देखते हुए और बढ़िया से इंजॉय करते हुए हम आलू टिक्की खाएं, तो मौसम है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस ज़बरदस्त मौसम में चलिए चाट खिलाते हैं आपको। आज हम चाट बनाएंगे, आलू टिक्की बनाएंगे और उसके साथ अमरूद की चटनी आपको भी, आप भी अपने घर पे बनाइए और हम भी ज़रूर से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले चमन जी आ गए हैं जो कि लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड एवरीवन। गुड आफ्टरनून चमन जी, कैसे हैं आप? तो चलिए चलते हैं लिसनर्स हम हमारी आलू टिक्की की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दे रही हूँ कि आपको आलू ले लेने हैं, 4 से 5 आलू ले लीजिए। उसे अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आप धो करके साफ कर लीजिए पानी में और उसके बाद इसे उबलने के लिए चढ़ा दीजिए। आपको सिर्फ एक विसल देनी है क्योंकि ये एक विसल में आराम से वो बॉयल हो जाएगा। जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आलू को हो जाने के बाद में आपको इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएंगे ना तो टिक्की बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। अब आपको इसके अलावा चाहिए अरारोट। अरारोट 3 से 4 बड़े चम्मच आपको चाहिए इसकी बाइंडिंग करने के लिए। इसके बाद आपको चाहिए बारीक कटी हुई हरी धनिया 2 बड़े चम्मच और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद में आपको चाहिए चाट मसाला जो कि हमें पुरल चाहिए 1 बड़े चम्मच। उसके बाद में नमक और नमक के बाद में तेल या घी जिसमें भी आप आलू टिक्की को आपको फ्राई करना हो। अब आते हैं कि इसे बनाना कैसे है। उबले आलू जो आपने रखे थे वो ठंडे हो गए होंगे। ठंडे होने के बाद उन्हें एक बर्तन में निकाल करके अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, या अगर आप कद्दूकस नहीं करेंगे तो आप हाथों से मैश कर लीजिए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हाथों से मैश करने में कहीं ना कहीं गांठें रह जाती हैं, लम्स रह जाते हैं, आलू अच्छे से मैश नहीं होता है। इसलिए अगर आप कद्दूकस कर लेंगे ना तो वो उसमें गांठें नहीं रहेंगी। अब आपको क्या करना है कि आपको, आपने आलू ले लिए, अब आपको उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपको इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, चाट मसाला और नमक को डाल देना है। सभी को अच्छी तरीके से आपको हाथों से उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको अगर ये हल्का सा, जैसे कभी भी होता है ना, हमें लगता है कि ज़्यादा गीला हो गया आलू, अगर आपको भी ऐसे लगता है तो आप उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है कि हाँ सही से बना हुआ है, तो फिर कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाना है और आलू को लेकर के उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और बॉल्स बनाने के बाद ऐसे उनको हाथों से दबा दीजिए। चपटी चपटी जो है वो टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें किनारे पे दरारें नहीं होनी चाहिए, यानी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको नॉनस्टिक तवा ले लीजिए या पैन ले लीजिए और 2 से 3 बड़े चम्मच तेल या घी गरम करिए और धीमी आंच पे, बिल्कुल सिम पे टिक्कियों को अच्छे से रख करके क्रिस्पी और गोल्डन होने तक आपको इन्हें सेंक लेना है नीचे ऊपर दोनों तरफ से अच्छे से। जब वो गोल्डन ब्राउन होके क्रिस्पी हो जाए, सिक जाए, तो हल्का हल्का दबाते हुए आपको इन्हें सेंकना है। चम्मच की सहायता से हल्का हल्का आप उनको वो कर लीजिए, सेंक लीजिए। बढ़िया सी क्रिस्पी आपकी टिक्की बन करके जो कि है तैयार। अब बातें हैं कि अमरूद की चटनी हमें बनानी है, तो अमरूद की चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी टिक्की तो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बारी आती है अमरूद की चटनी की। अमरूद की चटनी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि पका हुआ अमरूद आपको ले लेना है, 1 ले लीजिए। और उसमें क्या करना है आपको कि उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और काट करके जो भी उसमें बीज होंगे ना वो बीज आपको निकाल देने। इसके बाद में आपको हरा धनिया लेना है 1 कप। 1 कप बारीक कटी हुई हरी धनिया लेनी है। 10 से 15 पुदीने के पत्ते आप ले लीजिए। हरी मिर्च ले लीजिए 1 या 2। अदरक ले लीजिए, अदरक का आधा टुकड़ा भी बहुत होगा। उसके बाद में आपको नींबू का रस लेना है 1 चम्मच। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी सफ़ेद नमक,
ले लेना है आपको, और 2 से 3 चम्मच आपको इसमें, सॉरी 2 से 3 चम्मच नहीं, 1 छोटा चम्मच आपको इसमें जीरा डाल देना है। अब इसके बाद क्या करना है ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो भी आपके पास चीज़ें थी वो सभी आपको क्या करना है कि अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और उसमें से आपको बीज सारे निकाल देने हैं। और उसके बाद जो भी मसाला है आपके पास, जो भी मैंने मसाले बताए, पुदीना वगैरह सब, और अमरूद भी, उसमें आपको उसको क्या करना है कि मिक्सी के जार में आपको डाल देना है, और 2 से 3 बार आपको मिक्सी चला देनी है। अच्छी सी आपकी चटनी फाइन पेस्ट में बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कभी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये गाढ़ी ही बहुत ही अच्छी लगती है। पानी का ध्यान रखिएगा कि बस पीसते वक्त जब आप उसमें मिक्सी में डालेंगे ना, तो उस वक्त आपको 2 से 3 चम्मच पानी से ज़्यादा उसमें नहीं डालना है। आपकी बढ़िया तीखी खट्टी मीठी क्रिस्पी चटनी बन के तैयार है, और टिक्की तो आपकी तैयार है। लेकिन टिक्की के लिए अभी आपको थोड़ा सा कुछ और भी करना है। करना ये है कि अच्छे से मटर बना लीजिए, जो हम चाहते हैं ना जब टिक्की बाहर खाने के लिए तो उसमें मटर वगैरह डाल के देते हैं, वो वाले मटर बना लीजिए। अच्छे से आलू की टिक्की रखिए, उसके ऊपर मटर रखिए, उसके ऊपर बढ़िया सी अमरूद वाली चटनी डालिए, और उस पर डालिए सेव वाली नमकीन जो आती है, महीन वाली आती है ना, पतली वाली, वो नमकीन डालिए। अगर आप दही खाते हैं तो दही डालिए, और अच्छी सी बढ़िया सी चाट क्रिस्पी वाली टेस्टी वाली तीखी वाली अपने घर की इंजॉय करें। क्योंकि भाई इस मौसम में वैसे तो हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं कि हमें टिक्की खानी है तो चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन अब रेस्टोरेंट वाली टिक्की आपको घर में ही मिल सकती है। तो खाएं, इंजॉय करें, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाला जो मज़ा होता है ना, ये जब घर में मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खुद भी खाइए, बनाइए, और अपनी फैमिली को तो ज़रूर से खिलाइए, और उनसे कहिए कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने कहीं से भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं किया है, मैंने इसे बनाया है, और इसे आप टेस्ट करो और बताओ कि ये कैसा बना है। तो आई एम श्योर कि वो जब टेस्ट करेंगे ना तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी, और बच्चे तो बिल्कुल ये नहीं जान पाएंगे कि ये टिक्की आपने घर पे बनाई है। तो हेल्दी है, सेफ भी है, टेस्टी भी है, और मौसम के अकॉर्डिंग भी है। तो भाई देर किस बात की है, सीधे किचन में जाना है, फटाफट बनाना है, खाना है, और अपने घर वालों को भी खिलाना है। तो आप सभी ट्राई करिए। चलिए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। बस यूं गए और यूं आए, और ब्रेक के उस पार आएंगे हमारी मास्टर शेफ, क्योंकि भाई हमने तो आपको एक रेसिपी बता दी, लेकिन अभी हमारी मास्टर शेफ के खजाने से रेसिपी बाकी है। तो चलिए उनके खजाने को खोलेंगे और उनसे जानेंगे कि हमारी मास्टर शेफ के पास आज हमारे लिए क्या है। आई एम श्योर कुछ अच्छा, कुछ ज़बरदस्त, कुछ बढ़िया सा ही होगा उनके पास, क्योंकि वो हमेशा ही हमें सरल तरीकों से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से अच्छा कैसे बनता है ना, ये हमारी मास्टर शेफ हमें बखूबी बताती हैं। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल इस सॉन्ग को सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, आप भी सुनिए और इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारी स्टूडियो में आ चुकी है हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी मास्टर शेफ के पास। सबसे पहले हम उनका वेलकम कर लेते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं आप?
4: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद।
3: तो आज क्या खिलाने वाली है मैम?
4: देखिए, यूं तो गट्टे की सब्जी सभी घर बनती है।
3: जी जी,
4: लेकिन ये बहुत समय से बनती आई थी, सभी लोग बनाते आए, तो उसमें हमने कुछ थोड़ा सा चेंज करके बनाया।
3: ओ, वाह।
4: तो सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी
3: जी मैम,
4: मैंने खुद बनाई है। तो आप लोग जो है उसको सामान लिख लीजिए
3: जी,
4: और एक बार जरूर बनाइएगा।
3: बिल्कुल मैम।
4: तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 200 ग्राम आप पनीर ले लेंगी
3: जी,
4: और उसको खूब अच्छे से मैश कर लेंगी। अब मैश करने के लिए चाहे आप हाथ से फोड़ लीजिए, चाहे कद्दूकस कर ले, खूब चिकना चिकना, और उसमें हल्का सा नमक मिला के गोले बना के रख लीजिए
3: जी मैम।
4: साइज बहुत बड़ा मत रखिएगा, छोटा ही रखिएगा, मीडियम से भी छोटा
3: जी,
4: उसको रख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगी, एक कप बेसन ले लेंगी, उस बेसन में अंदाज से नमक डालेंगी, और सभी बेसन बेसिक मसाले जैसे थोड़ा सा हल्दी है, धनिया है, सब्जी मसाला है, चाट मसाला है, ये सब चीज़ आप उसमें डाल देंगी, पिसा मिर्चा डाल देंगी, और थोड़ा सा तेल 1 टेबल स्पून आप उसमें बेसन में डाल देंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप एक अच्छा सा डो बना लेंगी। डो मतलब जैसे आप आटा सान के एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, उसको हम डो कहते हैं, उसको आप एक जगह सान करके और रख लेंगी
3: जी मैम।
4: अब आप क्या करेंगी कि उसकी 10 मिनट आप रेस्ट करने देंगी। कोई भी चीज आप बनाइए तो आप 10 से 15 मिनट रेस्ट करने दें, ताकि वो होता है उसमें मसाले अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो अगर फूलना उलना है उसको आटे को, वो फूल जाएगा
3: जी।
4: अब आप उसको 10 मिनट बाद आप छोटी छोटी जैसे पानी के बताशे की लोई होती वैसे आप तोड़ेंगी, वैसे छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, मतलब बताशे से थोड़ी बड़ी रखेंगी
3: जी मैम।
4: अब आप वो लोई तोड़ के छोटी छोटी पूड़ियां बना लीजिएगा। अब उस जो तैयार आपने पूड़ी बनाई है उसके अंदर आप क्या करेंगी, ये जो आपने पनीर के गोले बनाए हैं उसमें बंद कर देंगी, थोड़ा हाथ में पानी और तेल लेकर के उसको चिकना करेंगी, कहीं से चिटका ना रहे
3: जी मैम।
4: अब सबको क्या करेंगी, आप जब सब बन जाए तब एक पैन में पानी लेंगी, और जब पानी खौलने लग जाए तब आप उसमें ये जो तैयार आपके बॉल है इसको डाल करके आप 5 मिनट उबाल लेंगी
3: जी मैम।
4: उबालने के बाद इसको आप निकाल करके अलग रख लेंगी
3: जी।
4: अब आप इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगी, क्योंकि गट्टे की सब्जी अगर मसालेदार नहीं है
3: जी
4: तो उसमें स्वाद नहीं आता।
3: हाँ, ग्रेवी वाली होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है।
4: अच्छी लगती है
3: जी।
4: तब आप क्या करेंगी, अब एक कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून तेल डालेंगी। तेल आपकी इच्छा अनुसार है, रिफाइंड डालें, सरसों का डालें, जिसका भी जानिए, ज्यादा नहीं डालिए, कम ही डालिए
3: जी मैम।
4: अब उसमें क्या करेंगी आप जो है थोड़ा सा जीरा डाल देंगी, एक मध्यम आकार का प्याज डाल देंगी काट करके, जैसे साधारण टुकड़ों में हम लोग काटते हैं वैसे ही काट के डाल देंगे, एक टुकड़ा अदरक का डाल देंगी, लहसुन की 8-10 कलियां डाल देंगी, खड़ा लाल मिर्च, लाल मिर्च आपके स्वाद के अनुसार है 2 या 3 या 5 जो भी आप चाहे वो डाल देंगी, 2 टमाटर अच्छे लेंगी बीच के साइज के लेंगी, छोटे छोटे नहीं लेंगी मध्यम आकार के लेंगी, उसको आप काट देंगी और क्या करेंगी उसमें नमक डाल देंगी और उसको ढक के कम से कम 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकाएंगी। उससे क्या होगा आपका टमाटर भी गल जाएगा, प्याज लहसुन भी गल जाएगा। आप उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इधर एक किनारे रख देंगी। अब इस जो आपने ये प्याज लहसुन का पेड़ वो बनाया है मसाला, इसको आप मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डाल के आप 2 आइस क्यूब इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम अलग से हाँ बिल्कुल, उससे क्या होता है कि उतना ही पानी लगता है जितनी हमें जरूरत है और हाँ बहुत अच्छा, और मसाले का कलर भी बहुत
3: ये तो अच्छी ट्रिक बताई आपने मैम।
4: हाँ 2 आइस क्यूब आप डाल देंगी और मिक्सी को आप चला,
3: वरना पानी कई बार मसाले में ज्यादा
4: हो जाता है, फिर सुखाने में बहुत समय लगता है। इसमें आप बस जरा सा कर देंगी, उसके बाद आप चर्न करके धीरे से चलाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर धीरा चलाइए फिर बंद कर दीजिए, ऐसे करके आप महीन पीस लेंगी। अब इसको अलग निकाल लेंगी, आइस क्यूब पूरा घुलता नहीं है, बाकी बचा आप फेंक देंगी
3: जी मैम।
4: अब आप क्या कढ़ाई में फिर से जो है वो गैस पे चढ़ा देंगी, चढ़ा डालेंगे। अब आप बिल्कुल नाम मात्र को 1 टीस्पून टेबल स्पून नहीं 1 टीस्पून तेल डालेंगी, फिर से जीरा डालेंगी, हींग डालेंगी। अब आप उसमें क्या करेंगी कि वो जो मसाला आपने पकाया है जो अभी पीसा है पका हुआ उसको डाल देंगी और उसको आंच धीमी करके छोड़ देंगी पकने के लिए। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब आप कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के उसमें डाल देंगी। आप उसमें जो है फिर सब्जी मसाला या मीट मसाला ये जो भी अगर आपके पास है तो वो आप डाल देंगी, नहीं है आप तो मैगी मसाला डाल दीजिएगा
3: जी।
4: और अंदाज से पानी डालिएगा, बहुत पानी मत डालिएगा, और उसको उबलने चढ़ा दीजिएगा। जब पानी खौलने लग जाए और आपके मेहमान आ जाए, उसमें नमक जरूर डाल दीजिएगा
3: जी मैम,
4: तब आप इसको आप बाउल में निकालेंगी, जो भी सर्विस बाउल में
3: जी।
4: अब आप क्या करेंगी जो गोले आपने बनाए हैं उसके 1 के 2 पीस कर देंगी, तो सफेद सफेद ऊपर रहेगा और वो पीला पीला रहेगा बीच में किनारे की तरह। अब आप उसको ग्रेवी में ये आपके तैयार बॉल डाल दिए जाएंगे जिसको हम गट्टे की सब्जी कहते हैं, और आप एक एक जैसे भी आपको सर्व करना है हरी धनिया डाल करके उसको आप सर्व करें। ये कोफ्ते भी कहलाते हैं, ये गट्टे की सब्जी भी कहलाते हैं, ये आजकल के जो है फैंसी जो सब्जी है बेसन की वो भी कहलाती है। ये अब आपका नाम है, आप जैसा चाहे वैसा दें, हमने तो इसको गट्टे की आधुनिक सब्जी खा है, आप भी कहिए।
3: बिल्कुल मैम वैसा ही है, और मतलब गट्टे की सब्जी तो मैंने खाई है लेकिन हाँ। ये आपने बिल्कुल नया हाँ। एक तरीका बताया और बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसे ट्राई भी करूंगी।
4: बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है सजा हुआ सर्विस बाउल में
3: जी,
4: आप डालिए, जो भी खाएगा उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा।
3: बिल्कुल, तो चलिए लिसनर्स चलते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। चलिए सीधे चलते हैं हमारी मास्टर शेफ की तरफ और जानते हैं कि अगली कौन सी रेसिपी है जो मैम हमें खिलाने वाली है।
7: भाई देखो, आजकल आलू बहुत आ रहा है, ठीक है ना, और सस्ता भी है।
6: हाँ।
7: और अच्छा भी लगता है इस समय आलू खाने में।
6: जी जी।
7: तो हम आलू और इसकी मूंग की दाल की इडली सिखा रहे हैं।
6: ओ, वाओ, आलू और मूंग की दाल की इडली।
7: इडली सिखा रहे हैं, तो चलिए सामान नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप 1 कप मूंग की दाल ले लेंगी, बीन ले लेंगी, धो लेंगी और उसके बाद भिगो कर रख देंगी 3-4 घंटा। उसके बाद आप महीन पीस लेंगी। ये आपकी पहले की तैयारी है। अगर आप सुबह नाश्ता बना रही हो तो रात में भिगो दीजिए, शाम को खिलाना है तो दोपहर में भिगो दीजिए और खूब अच्छे से पीस के अलग रख लें। अब आप क्या करेंगी, आलू मध्यम आकार के 2 या 3 लेंगी, उसको आप उबाल लेंगी, उबाल करके छील लेंगी, छील करके आप बड़े टुकड़ों में काट लेंगी।
6: जी मैम।
7: अब आप क्या करेंगी, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगी, जीरा डालेंगी, चाट मसाला डालेंगी, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगी, पिसा लाल मिर्च डालेंगी और इसमें जो आपने आलू बनाया है वो उसमें डाल देंगी।
6: जी।
7: पैन में। उसके बाद आप इसको खूब अच्छे से भूनते हुए और मैश कर देंगी। कलछुल से आप फोड़िएगा, वो मैश हो जाएगा। खूब अच्छे से मैश कर, ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अच्छा चिकना भरता बना रहे।
6: मैम,
7: अच्छे से
6: पैन में ही उसे मैश करेंगे।
7: पैन में ही, क्योंकि वो भुनता जाएगा, बनछुटापन खत्म हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि पैन में मध्यम आंच रखते हो, एकदम धीमी, उसी में आप मैश करती जाइए तो खूब खूब मसाला भी भुनता जाएगा। मसाले वाले अच्छे से लाल आलू आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दीजिए। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अभी हमने कहा मैगी का मसाला डाल दीजिए, पैरी पैरी मसाला है वो डाल दी। कोई मसाला अलग डालने से उसका स्वाद अलग हो जाता है, ये जान लीजिए आप लोग। हम लोग पहले मैगी का नहीं मसाला डालते थे, लेकिन अब चना ना बनाओ, जरा सा डाल दो तो
6: अलग थोड़ा टेस्ट आ जाता है, तो अच्छा लगता है। जी।
7: अब आप क्या करेंगी कि अप्पम वाला पात्र ले लेंगी या इडली स्टैंड ले लेंगी, उसमें हल्का सा तेल लगाएंगी, तेल लगा करके उसको हल्का गरम होने देंगी। अब जो तैयार आलू है इसमें नमक वमक आपने सब डाल ही लिया है, नमक आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, क्योंकि आलू की टिकिया बन रही है तो इसमें नमक तो पड़ना ही पड़ना है।
6: बिल्कुल।
7: तो आप छोटी छोटी टिकिया बना लीजिए, इतना अप्पम के साइज या इडली के साइज के हिसाब से आप बना लीजिए। उसके बाद आपने तेल लगा दिया है, छोटी छोटी आपने टिकिया बना ली है, उन टिकियों को आप अप्पम पात में या इडली स्टैंड में रख देंगी।
6: जी।
7: अब आप उसको रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगी, अब आधी कटोरी भर के एक सूजी लेंगी आप। सूजी आपके पास होगी, वो चाहे महीन हो चाहे मोटी, से आप मिक्सी उसको जरूर चला लेंगी। मिक्सी चला करके आप उस जो सूजी है उसको दाल में मिला देंगी। दाल में मिला के खूब फेंट देंगी। दाल में भी आप हल्का नमक और काली मिर्च डाल देंगी।
6: जी मैम।
7: अब आप क्या करेंगी, आपने जहाँ पे आलू की टिकिया रखी है इसमें क्या करेंगी, आप थोड़ा एक पैकेट इनो का भी डाल दीजिए। इनो डालने से ये होता है कि वो फर्मेंटेशन उसका बढ़ जाता है और खूब अच्छी फोकी फोकी सी बनती है, उसमें गठन नहीं पड़ती है। तो अब आप क्या करेंगी, उसमें एक पैकेट जनरल लेमन इनो जो होता है वही आप डाल लीजिए एक पैकेट
6: जी,
7: उसको डाल दीजिए और खूब चला दीजिए। चलाने के बाद आपने जो टिकिया रखी है उसके ऊपर वो दाल पिसी हुई आप डाल देंगी
6: जी मैम।
7: और दाल में डालने के बाद आप उसको होने देंगी। उसके बाद जो है इसको फिर 10 मिनट बाद धीमी आंच में आप उसको पलट देंगी। पलट करके आप फिर से दाल डाल देंगी। तो अब आलू की टिकिया आपकी दाल में छिप जाएगी, दिखेगी नहीं। अब दोनों तरफ से आपको दाल दिख रही है
6: जी।
7: तो ये जान लीजिए दाल बहुत ना पतली हो और ना बहुत गाढ़ी हो,
6: मीडियम हो,
7: इतनी हो कि वो आलू के और टिकिया को छिपा ले
6: जी।
7: अब आप दोनों तरफ से फिर से तेल थोड़ा थोड़ा डालिए चम्मच से और दोनों तरफ से खूब गुलाबी गुलाबी सेक लीजिए। अब ऊपर से आप हरी धनिया डाल दीजिए, हरी चटनी ले लीजिए, लाल चटनी ले लीजिए, टमाटर की ले लीजिए, चाहे सॉस ले लीजिए, चाहे इमली की ले लीजिए। अब जैसा हो उसको डाल करके अब आप प्लेट में क्या करेंगी, इन जो सिकी हुई इडलियाँ इसके ऊपर फिर से आप चाट मसाला डाल देंगी। चाट मसाला डाल के आप गरम गरम किसी को भी सर्व करिए। देखिए ये बहुत अच्छी नाश्ता है, सुंदर भी लगता है और पेट भर जाता है। जहाँ आपने दो टिकिया खाई दाल वाली तहाँ आपका पूरा फीलिंग हो जाएगी। आप खा के देखिए और बना के देखिए। सरल तो बहुत ही जाता है, आलू की टिकिया और आलू का भरता तो सभी घर बनता
6: जी। बिल्कुल मैम
7: जी,
6: वाह, मतलब बहुत ही अच्छी ऐसी दाल वाली इडली तो ना मैंने पहली बार सुनी है, और वो भी इतने आसान तरीके से बनने वाली। तो थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए अब चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस हम यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
9: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली। और भाई बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के बाद और हमारी मास्टर शेफ की प्यारी प्यारी ये दो रेसिपीज अभी आपने सुनी और आई होप कि बहुत सारा एंजॉय भी किया होगा आपने। तो चलिए सीधा चलते हैं चैट बॉक्स में और मैं देख रही हूँ कि राही जी भी आ गए हैं और तमन्ना जी भी आ गई हैं। तो कैसी हैं तमन्ना जी आप और राही जी, आप भी बताएं कि कैसे हैं आप और आप सभी को वही डिशेस कैसी लग रही हैं। मुझे तो दोनों ही डिशेस जो अभी हमारी मास्टर शेफ ने बताई वो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही टेस्टी भी लगी, क्योंकि भाई चटपटी चीज़ें जो हैं वो इन मौसम में खाने का जो मज़ा होता है ना, और वो भी अगर आपके पास आपकी थाली में गट्टे की सब्जी हो तो फिर क्या ही कहना, तो बहुत ही टेस्टी थी। चलिए अब चलते हैं और आपको कुछ मीठा खिलाते हैं, क्योंकि मीठे का जो दस्तूर है ना वो भाई हमारे मतलब इंडिया में हम कह लें कि बहुत ही अच्छा सा एक जेस्चर है कि कुछ भी आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब तक मीठा ना होना तब तक खाना जो है वो अधूरा माना जाता है। तो खाना तो हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खिला दी है, अब बारी आती है मीठे की। तो आज मीठे में मेरे पास है एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी वाली फ्रूट डिज़र्ट। यस, आज आपके लिए क्रीमी फ्रूट डिज़र्ट है मेरे पास, जिसमें कि फ्रूट्स के साथ ये बनेगा बहुत क्रीमी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए अब बनाते हैं और सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये क्रीमी वाला फ्रूट डिज़र्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम का आप पूरा एक बड़ा पैकेट ले लीजिएगा जो कि 250 ग्राम का आता है, और उसके बाद आपको चाहिए पिसी हुई चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच, उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और फिर हमें चाहिए कुछ आम, आम चाहिए। इसमें आपको कई सारे फल चाहिए, मतलब ये पूरा मिक्स फ्रूट है तो इसमें आपको कई सारे फल चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए आम, फिर चाहिए केला और फिर चाहिए सेब। अब आता है कि हमें कितने कितने चाहिए। हेलो प्रीति जी, कैसी हैं आप और बड़ी देर से आई हैं। चलिए कोई बात नहीं, शुभ दोपहरिया। सुनिए कि हम मीठे में आज क्या खिलाने वाले हैं आपको। तो मैं बता रही थी कि आम लेना है, केला लेना है और सेब लेना है। तो दो केले, दो आम और दो सेब आप ले लीजिएगा। अंगूर ले लीजिएगा हरे वाले। हरे वाले आप 5 से 6 से 10 अंगूर मान लीजिए, 10 अंगूर ले लीजिएगा। और अनार के दाने आपको ले लेने हैं आधा कप, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आम को पहले अच्छे से उसके छिलके निकाल लेने हैं, केले को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है और सेब के साथ भी यही करना है कि छिलका हटाकर उसे छोटे छोटे क्यूब्स में आपको काट लेना है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हो, बादाम, काजू, किशमिश, वो सारे आपको ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। अब हमें बनाना कैसे, तो सबसे पहले जो क्रीम है उसको आपको लेना है और क्रीम के पैकेट को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब आपको एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेना है, उसमें क्रीम को निकाल लेना है और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद में आप देखेंगे कि वो थोड़ी गाढ़ी और मखमली हो जाएगी। जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें चीनी डाल देनी है, पिसी हुई चीनी जो थी ना आपके पास वो डाल देनी है, वेनिला एसेंस डाल देना है और अच्छी तरीके से इसे फिर से एक बार चला करके आपको मिला लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्रीम डालने के बाद अब आपको इस क्रीम में सेब, केला, आम, अंगूर और थोड़े से अनार के दाने जो आपने कट करके रखे हुए थे वो सारे ही डाल देने हैं और साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स भी डाल देने हैं, जो कि आपके पास है बादाम, काजू, किशमिश, वो सारे ही आपको इसमें डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लेना है चम्मच की मदद से। अब आपको क्या करना है कि जब आपका बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है, अब आपको इसे आती है बारी प्लेटिंग करने की। तो प्लेटिंग करने के लिए आपको अच्छा सा सर्विंग बोल लेना है, उसमें इसे निकालना है और ऊपर से थोड़े से अनार के दाने, थोड़े से कटे हुए फल, थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर लेनी है। और कम से कम इसे बनाने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, क्योंकि आपका ये क्रीमी फ्रूट डिज़र्ट जब तक पूरी तरह चिल्ड नहीं होगा, यानी कि ठंडा नहीं होगा ना, तब तक खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ही हेल्दी और एक फ्रूट डिज़र्ट ऐसा है कि जो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो खाइए, फटाफट से खाइए और इन्जॉय करिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है। भाई गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हम सोचते ना आइसक्रीम मिल जाए, लेकिन आइसक्रीम की जगह आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करिए और ज़रूर बनाइए और आप सभी खाइए और इन्जॉय करिए। और हम चलते हैं, चलिए एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए, वापस आएंगे आज के टिप ऑफ द डे के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: फिर से आ गई हूँ वापस, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त जो कि अंशिका जी, बिल्कुल। और बस वापस आ गई हूँ आपसे बाय बाय बोलने के लिए। तो चलिए बैकलाइन से शुरू करते हैं। और प्रीति जी थी, सबलू सावन जी लिख रहे हैं, शुभ दोपहरिया RJ अंशिका, शुभ दोपहरिया आपको भी। और हमारा टाइम जो है वो हो गया है। चलिए टिप ऑफ द डे बता देती हूँ। तो आज का टिप ऑफ द डे हमारा जो है वो ये है कि खाना खाने के बाद, तुरंत बाद, कभी भी आपको जाके बिस्तर पे लेटना नहीं चाहिए। खाने के बाद आप थोड़ा सा चल लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए और उसके बाद ही आप जाके सोने के लिए जाइए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद अगर हम लेट जाते हैं या सोने के लिए सीधे चले जाते हैं तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टिप ऑफ द डे और इसी के साथ टाइम भी हो गया है लिस्टर्स। तो मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, कल मिलूंगी आपसे आपके अपने वाले पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में। और कल है हमारा ट्यूसडे यानी कि बच्चों का दिन, तो बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा वो करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातों के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जाएंगे, क्योंकि अगर आज जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे। और नेक्स्ट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा आपकी अपनी RJ आकांक्षा के साथ। इंजॉय करिए, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।

0: पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी रफ्तार मेल आ चुकी है अपने समय पर। जी हाँ, 3:04 हो चुके हैं बाय स्टूडियो क्लॉक और ये वक्त है आपके फोन इन फरमाइश कार्यक्रम यानी कि कॉल ट्यून गोंडा का। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दिन है आज सोमवार और मौसम है जबरदस्त। इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों से, विगत दिनों से बारिश लगातार होती रही है, रिमझिम। भले ही आप सो जाते हैं उसके बाद बौछारा आपके घरों की छत पर, आपके घर के आंगन में और आगे पीछे कहीं भी, मतलब सड़कों पर और मैदानों में गिर पड़ रही है और इसी के कारणवश कहीं ना कहीं आजकल का मौसम बड़ा सुहाना है। और अगर आपने AC का अपने तापमान अधिक करके रखा हुआ है जनाब, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगी सर्दी। तो थोड़ा सा हाँ, अपने बिजली बिल को भी बचाएं, मतलब कि AC को एक लिमिट पे लाएं और उसके बाद अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। वैसे एक काम और भी आप कर सकते हैं, हाँ करना वही है, आपको अपने फेवरेट वाले स्टूडियो वाले नंबर पे कॉल करना है। नंबर वही है 6393316429। मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया, चलिए आराम से बता देते हैं 6393316429। तो ये जादुई नंबर घुमाइए ना अपने फोनों में और नंबर मिलाइए और फरमाइश अपनी हम तक पहुंचाइए किसी डेडिकेशन में, अपने फेवरेट सॉन्ग के लिए, अपने मूड को इनहेंस करने के लिए। फिलहाल आज की जो पहली वाली डिमांड है वो हम आपको बताएंगे। आज डिमांड हमारी देवी जी ने बड़ी अच्छी कर डाली है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और आप सभी ने बड़ी प्यारी प्यारी डिमांड हम तक पहुंचाई है, लेकिन आपकी डिमांड से पहले हमारी प्लेलिस्ट से ये गाना एंजॉय करिए। जस्ट यू गई यू आई 3-4 के सफर में, मैं आपके होस्ट हूं दोस्त RJ आकांक्षा। एंजॉय द ट्रैक।

0: वाला पैराग्राफ मुझे बेहद पसंद है, एंजॉय करिए। और अगर आप किसी को डेडिकेशन में देना चाहते हैं समवन स्पेशल को, स्पेशली जरूर दीजिएगा हमारी ओर से, मतलब बताइएगा नहीं, अपनी ओर ही से बताइएगा, पर दीजिएगा जरूर। देखिएगा उसके बाद क्या प्यारी सी स्माइल आती है, और यकीन मानिए अगर थोड़ी और गहराई में आपका प्यार ना उतरा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा।
1: मैं हूँ तेरा शहजादा,
0: बेशक।

है कुमार साहब एमपी रीवा से जो हमें सुनते हैं, कहते भैया एक के जन्म में ऐसी की तैसी कर रखी है, सात जन्म ना झेल पाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर एक जन्म आपने अच्छे से झेल लिया तो सात जन्म कम पड़ जाने वाले हैं। वैसे झेलना नहीं कहते इसे, प्यार में नोकझोंक और तकरार कहते हैं। जैसे प्यार की रफ्तार में और धार आती है और प्यार और निखरता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि आज की हमारी पहली डिमांड है, और ये डिमांड है हमारे देवी प्रसाद जी की। गाना बहुत ही बढ़िया है और ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से ढूंढ के लाया गया गाना है भाई। आज हमें खुश कर दिया देवी जी आपने, क्या डिमांड है। थैंक यू सो मच।

हाँ जी, और बिल्कुल सही कहना है कि अप्सरा कोई आए तो बहकू नहीं, कोई बहकाए हंस के तो भी बहकू नहीं। और मुझे पता है हमारे कुमार साहब ऐसे ही हैं, और बाकी कुछ और आप जैसे प्यारे प्यारे हमारे लिसनर हैं वो भी ऐसे ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपने जीवन पर्यंत ऐसे ही बने रहिएगा, 7 जन्म हम फिक्स करा देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई है सुनील कुशवाहा जी की MP से। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। नेक्स्ट डिमांड थोड़ा सा आपको हाँ जी हिलाई डुलाएगा, हिल डुल लीजिएगा और क्या। फिलहाल ये गाना जाग रही है।

भी हमारे एक लिसनर हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, महेंद्र दीपन जी हैं जो हमें राजस्थान से सुनते हैं। सर प्लीज कॉल करिए क्योंकि आपका फोन ही फरमाइशी कार्यक्रम है, एक दफा केवल कॉल करना है और आपका गाना आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और मुझे आप सभी से कहनी है कि हमारे सबलू जी ने भाई जो लिंक भेजी वो AI मेड है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती 2.2 वर्जन, तो इसलिए मैं आपको ओरिजिनल सॉन्ग सुनाऊंगी। सबलू जी अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है यानी हमारे सावनी बलम जी, तो प्लीज हामी भर दीजिए, बस इतना ही आपसे अनुरोध करती है आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा। फिलहाल एंजॉय करते रहिए हमारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पे ये प्यारा सा नगमा 90s हिट से लाया हुआ आप सभी की खिदमत में। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं, आपका अपना फोन ही फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा।

तो श्वास आपने तो भाई आज पहली बार दिल की बात की है, लेकिन हम हर दफा दिल की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहली बार ही कर रहे हैं। कितना बड़ा वाला बदलाव है आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे हर दफा ऐसा ही लगता है जब भी मैं किसी से अपने दिल की बात कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं पहली बार तो ये बात नहीं की है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ गए हमारे एक प्यारे से लिसनर, और बाप रे इतने सारे मैसेजेस। हाँ जी, और इनका शुभ नाम आप सभी को अच्छे से पता है, चलिए हम बता देते हैं। अरविंद मौर्य जी जुड़ गए हैं मनकापुर से, और इसके अलावा रीना जी जुड़ गई हमारे साथ में रुड़की उत्तराखंड से। और अब बारी हमारे पंडित जी के डिमांड की, पंडित जी को सुनना है क्या, सुनते हैं और थोड़ा सा ठुमकते हैं। भाई ठुमकने का वक्त आ गया है, चलिए वक्त को तैयार कर देती हैं, आप तक पहुंचाती हैं ये प्यारा वाला गाना। हाँ जी, 98 से निकाला हुआ सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी की आवाज में, थोड़ा ठुमकिएगा जरूर। हम ठुमके लगाएंगे बैठ के किस पे, चीयर पे, चीयर।

को भी इश्क ने मारा बिल्कुल, कहीं ना कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। और सबलू जी आपसे माफी चाहेंगे जो मैं सांता क्रूज से सुन रहे हैं, आपने AI वर्जन भेजा था लेकिन मैं वो प्ले नहीं करने वाली, मैं पढ़ भी नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए, बीच में कॉल्स भी आ रही थी तो मैं आपके मैसेज तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैं ओरिजिनल वाला ट्रैक ही बजाना पसंद करूंगी। तो एंजॉय करिए हमारे साथ, आप भी हमको भी एंजॉय करने दीजिए, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं 304 के सफर में। प्यारा सा गाना भैया सुन लेते हैं।

अथॉरिटी हमारे सबलू सावंत जी के पास आ गई, हमें तो पता ही नहीं था, वरना हम तो दो चार अस्पताल, 6-7 शॉपिंग मॉल और ऐसे ही कुछ और दो चार चीजें जनता की जनहित में जारी वाली जरूर खुलवा देते। बताइएगा जरूर सबलू जी, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या सच में यूपी बिहार आता है? वैसे बिल्कुल आता है, हमारा जो प्रांत है वो हमारा ही है और देश उससे भी ऊपर।

जी हाँ श्रोताओं, गाना बहुत ही प्यारा था, बेहतरीन था, क्योंकि ऐसे गाने बहुत कम प्ले किए जाते हैं, लेकिन हमने कर दिया है। और हमारे इस कुमार साहब ने कहा है, भैया लोन में ले लो, चक्रवृद्धि ब्याज में। भैया ले तो लेंगे, उसके बाद चुकता कौन करेगा, ये बताइए, कौन देगा? दिल्ली कौन देगा, पंजाब कौन देगा, असम, बिहार और अपना उत्तर प्रदेश, कौन नहीं, मतलब कोई नहीं देने वाला है। इसलिए भैया आज ही कैंसिल कर दीजिए इस प्लानिंग को, और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड है किसी और की नहीं, ये है हमारे महेंद्र जी की। भाई आज इन्होंने पहली दफ़ा ये डिमांड की है, तो चलिए इनकी डिमांड को कंप्लीट करते हैं। राजस्थान नागौर से ये हमें सुनते हैं। महेंद्र दीपन जी, आपकी फरमाइश आप तक पहुँचाती है, आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा, और देन हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के कुमार टेलर साहब की गौरा चौकी से। गौरा चौकी से अलबा हमारे पास एक प्यारा सा नीमन सा सॉन्ग, लेकिन उससे पहले ये सॉन्ग। थैंक यू सो मच सब्लू सेवन जी।

0: टंगू जी आप तो आ गई, मंगू जी को भी बुलाइए। गाना है भाई आपके लिए आया हुआ है, तो वो हम आप तक तब पहुंचाएंगे जब आप दोनों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं। गाना बेहद खूबसूरत है वाकई महेंद्र जी, बहुत ही शानदार।
1: चेहरे पे ताजगी ये बात उसमें कहां,
0: भाई मेरे भी चांद का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता है।

हाय हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कलाकारों जैसे। हाँ जी, हमारे प्यारे वाले लिसनर्स, आपसे हम कहना चाहेंगे कि जिसने जब कॉल किया है, बारी आने पे ही गाना प्ले होगा। आप रोएंगे, धोएंगे, गाएंगे या हमसे विनती विनम्र निवेदन करेंगे, हम बजाएगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए आप सभी बराबर हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और अगर घड़ी की सुइयों ने हमसे कहा कि ये डिमांड हमें ट्यून कर देना चाहिए, तो हम ट्यून जरूर करेंगे अरविंद जी, स्पेशली आपके लिए। जब आपकी बारी आएगी, आपका गाना आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। माफ करिएगा, खेद है, थोड़ी समय लग सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड किसी और के नहीं है, हमारे प्यारे कुमार डेला साहब के, गौरा चौकी से, गौरा चौकी वाले सभी लिसनर्स का प्रणाम। एंजॉय करिए प्यारा सा सॉन्ग। आए हाय, सैड सॉन्ग भी इतना प्यारा हो सकता है, सुनते हैं।

और इस शानदार सी डिमांड के बाद में हम चलेंगे चंगू मंगू जी को डेडिकेशन वाला सॉन्ग सुनाएंगे और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के समीहा जी की। समीहा जी के बाद होंगी हमारी तरन्नुम, नहीं यार तमन्ना भाटिया जी, हम कैसे बोल सकते हैं, तरन्नुम क्यों बोलती मैं, प्रमुख जी आपने मेरी जुबान गड़बड़वा दी है। हाँ जी, और तमन्ना भाटिया जी के साथ में चलेंगे, तमन्ना आरजू जी के बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, वो होगा आरजे अमन जी आपका।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि गड्डी का जो टायर है वो पंक्चर नहीं हुआ है भाई, स्टेशन पे है, उसमें टायर होता ही नहीं है, काहे इतना सोचते हैं। 3:28 हो गया, यानी कि आधे समय की समाप्ति लगभग हो चुकी है। अब बढ़ेंगे हम उस गाने की ओर जो कि है डिमांड किसकी, ये तो हम बताएंगे इस गाने के बाद। पहले आप सुनिए और एंजॉय करिए। डिमांड डेडिकेशन में आई हुई हमारी प्यारी नीना जी और हसीना जी, रवीना जी, करीना जी, सुरीना जी, आहा कितनी सारी बहनें आप, 8 से 9 देवियों को प्रणाम है हमारा। एंजॉय करिए इस ट्रैक को। जी हाँ, ये खूबसूरत सी डिमांड है आपकी अपनी कायनाथ जी की ओर से। एंजॉय करिए इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेकर के सबीहा जी की। गाना बहुत बढ़िया है, हम भी गुनगुनाएंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। 3 से 4 के सफर में लगातार आप सब बने हुए हैं, मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं, पैगामात की ओर बढ़ेंगे लेकिन उसी एग्जैक्ट वक्त जब हम जाते हैं, यानी कि 3:40 पर। फिलहाल बहुत ही प्यारी सी आवाज़ की मलिका यानी कि श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में ये गाना सुनिए।

हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। और मेरी तो किस्मत इतनी प्यारी है, मैं जिस भी गाने को सुनना चाहती हूँ पता नहीं कैसे हमारे लिसनर्स में से किसी ना किसी की वो डिमांड होती है। ये मेरे समवन स्पेशल के लिए स्पेशली डेडिकेशन में सॉन्ग आया हुआ है भाई, आया हुआ है सबीहा जी की ओर से, लेकिन ये हमारे समवन स्पेशल के लिए। तो एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के। तरन्नुम आरजू जी, नहीं तमन्ना भाटिया जी, नहीं तमन्ना आरजू जी, आपकी डिमांड। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कितना भी वक्त बिताया जाए कम ही लगता है, और ऐसा लगता है कि अभी ये पहली ही तो मुलाकात थी, अभी हम मिले ही कब थे, अभी हमने बातें ही शुरू कहाँ की थी, उफ। और ये समय समाप्ति की घोषणा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, थम जाए थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर।

0: करता नहीं,
1: बिल्कुल नहीं,
0: रचती नहीं,
1: उफ,
0: दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाऊं,
1: ये सच है।

और जब मोहब्बत की गहराई की बात आती है ना, आप कितने भी गहराई में उतर जाइए कम ही लगता है। बेशक बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी, आपने मेरा दिल जीत लिया और आज दो लोगों ने मेरा दिल जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी प्यारी डिमांड। डिमांड तो सभी की बहुत प्यारी है, पर कुछ खास डिमांड जिससे मैं थोड़ा सा जुड़ाव फील करती तो इसलिए मैं बोल देती कि कुछ खास है। सबीहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी डिमांड हमेशा से मुझे पसंद आती है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी प्यारी तमन्ना भाटिया जी की। हाँ जी, तमन्ना भाटिया, तमन्ना आरजू जी की, तमन्ना आरजू जी, हाँ जी आप ही की है बस और किसी की नहीं। एंजॉय करिए।

0: जगह।
1: जी हाँ, और ये डिमांड थी हमारे तमन्ना भाटिया जी की, और एकदम उन्हीं की तरह बहुत ही प्यारी सी। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी की पैगामात की ओर। लेकिन एक और बात भाई, एक सवाल आया हुआ है अरविंद मौर्या जी की ओर से, और वो कहते हैं मैम जी ये बताइए कि ये दिलकश होता क्या है, प्लीज टेल मी, और सभी से पूछिए। तो भाई आप सभी से ये सवाल रखा गया है कि ये दिलकश होता क्या है। मेरे हिसाब से तो दिल में जिसको कस दिया जाए नट बोल्ट ले करके, रिंची विंची ले करके, उसी को कहते हैं दिलकश। निकल ही ना पाए जो दिल में एक बार घुसने के बाद, उसी को कहते हैं दिलकश। ये मेरा वाला था, आप अपना वाला बता सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं चैट बॉक्स की ओर और देखते हैं पैगामात में क्या क्या आया हुआ है। आपने आज के लिफाफे में हमारे नाम के कौन से मैसेज किस रूप में भेजे हैं, चलिए चलते हैं उस ओर और देखते हैं कि सबसे पहला वाला मैसेज हमारे पास में किसकी ओर से आया हुआ है। तो ये पहला मैसेज है किसका? जी हाँ, तो सबसे पहला मैसेज हमारे पास में हमें नीला लिंक मिला हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम खाते पीते रहेंगे। ओहो हो, ऐसा कहना तरन्नुम, नहीं नहीं, तमन्ना भाटिया जी का भैया तरन्नुम जी, हमें माफ़ करिए, हमारी ओर से आपका नाम तरन्नुम ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तमन्ना आरजू जी जो हमें मलिहाबाद से सुनती हैं, और इसके बाद में मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, भाई इन्होंने भी अपनी नीली वाली लिंक भेज दी हम तक। महेंद्र दीपन जी हैं जो हमें राजस्थान से सुनते हैं, मुस्तफ़ा जी ओके गुड आफ्टरनून आपको भी। राही जी हैं भैया नवाबों के शहर से, और नवाबों के शहर में रहकर आप राही बन गए हैं, आपको तो वहाँ पे राज करना चाहिए। आहा, कितनी नवाबियत होगी आपकी, है ना, माफ़ करिएगा हम थोड़े से मजाक किए हैं। और एड्स कुमार साहब, आपका लिंक तो भाई हमको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कभी प्ले ही नहीं होता है। वाह क्या बात है, आप जैसे होशियार अगर दो चार और हो जाए हमारे लिसनर तो हमें तो गाने बजाने ही नहीं पड़ेंगे, और हम हमसे कभी कोई लड़ेगा ही नहीं, आप जैसे समझदार होनहार, और क्या ही बोले। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से मजाक के लिए। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में हैं प्रमो कुमार जी फ्रॉम लुधियाना, लुधियाने वाले बाबू आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ढेर सारा आशीर्वाद आकांक्षा दीदी आपको अपने याद किया, थैंक यू सो मच। दमदार दोपहर, दमदार दमादम दम दम करते हुए डीडी नेशनल नंबर वन बोला गया, थैंक यू सो मच। और उसके बाद में कुमार टेलर साहब हैं गौरा चौकी से, जय माता दी लेट्स रॉक आपको भी, और आरजे अमन जी आ गए रेडियो हॉटस्टार से, और ये हमारे बिहारी बाबू यानी कि बिहार के आरजे, हमारे प्यारे सितारों में से एक। और इन्होंने बहुत ही बड़ा वाला मैसेज लिखा है, चलिए पढ़ देते हैं। लिखा है थोड़ी सी तारीफ हम अपनी कम करेंगे, थोड़ा कट्टू कट्टू करके, हाँ जी कट एंड पेस्ट मार के जो हमको उचित लगेगा वही उतना पढ़ रहे हैं। आरजे आकांक्षा जी राधे राधे राधे राधे आपको भी, राउर हालचाल बतावा जाए, और उसके बाद में लिखते हैं आपकी मुस्कान और आपकी आवाज़ से आज का शो और भी खूबसूरत हो जाए, दिल से आपका स्वागत है, आपका हर पल यादगार रहे, आपका भी हर पल यादगार रहे, और हंसते मुस्कुराते खेलते खाते रहें, खेलते खाते ज़रूर रहें। और इसी के बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमारे चमन जी आ गए, भाई वेलकम, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चमन जी आपकी डीपी बड़ी ही प्यारी है, वो आपकी नहीं आपके किसी नन्हे मुन्ने कलाकार की है, उम्मीद है कि वो आगे चल के हमारी तरह कलाकार हो, कुछ और बनना चाहे तो वो भी हो, और मैं हूँ लिसनर का क्या बात है, बहुत मुराही आती है हमारे प्यारे लिसनर्स को। प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी आ गए हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, श्री राधे राधे राधे राधे आपको भी पंडित जी, और हम ओके आज सो जाओ, लेकिन सोए तो नहीं आप। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में है सबलू सावन जी सांता क्रूज से, आज काफ़ी हमें लग रहा है मशरूफियत में है, यानी कि व्यस्ता में है, बिजी हैं, और इन्होंने खाली लिंक छोड़ करके फिर ये गायब हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि सुन जरूर रहे होंगे। और इसके बाद में आप लोगों ने गानों को काफ़ी इन्जॉय किया है, थैंक यू सो मच। और फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और कमल नैन जी हमें देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे नैनों के साथ में, गुड आफ्टरनून आपको। और नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो प्रेम हर रूप में सुंदर है, बस उसमें छल ना हो, इसलिए कहा गया है कि तू लाख खूबसूरत सही, वफादार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह वाह, बहुत ही सही बात कही है, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी ये दो चीज़ तो भैया नेसेसरी है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में है आज पहली बार कॉल में बात की है, ओहो पहली बार कॉल में बात की है, नहीं ऐसा गाना था, ऐसा कहा नहीं है किसी ने। दिल की बात कहने से मन हल्का हो जाता है, दिल में छुपाना गड़बड़ का कारण बन जाता है। ओहो अच्छा, मतलब दिल के जितने भी बीमार लोग होते हैं, मतलब जितने भी हार्ट अटैक जितने भी लोगों को पड़ते हैं वो इसी कारण से हैं। ओह माय गॉड, इतनी गहराई से आप लाते कहां से बातें। जी हां, हमारे सबलू सावन जी हैं। और नेक्स्ट है कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का, नाम सुनते ही धड़कन बढ़ जाए तो समझो मोहब्बत है। बेशक नाम सुनते ही क्या हम तो कहेंगे आहट भी मिल जाए तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में राही जी लिखते हैं लफ्ज़ों में जिसके गोंडा की नज़ाकत, ओहो अवधि इतनी प्यारी लगी हमारी, थैंक यू। लफ्जों में जिसके गोंडा की नजाकत और आवाज में जादू की रवानी है, वो आरजी आकांक्षा मैम जी ही हैं, जिसकी सादगी की दुनिया दीवानी है। आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और बस शुक्रिया ही कहेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। आप बहुत खुश रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर। और हाँ, बोला था भाई हमारे सबलू सावंत जी ने, थैंक यू सो मच भाई, हमारी हामी में आपकी हामी, आपकी हामी में हमारी हामी, यही तो बनाती है सुनामी। सुनामी है, नहीं नहीं अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। वापस आते हैं दूसरी वाले मैसेज की ओर। मोहम्मद चांद जी हैं हथियागढ़ से, हथियागढ़ से हमें सुनते हैं हमारे दीपक जी भी। फिलहाल आज है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सुनने होंगे तो मुझे उम्मीद है मैसेज अभी जरूर आएगा। चांद बाबू एंड राजू मास्टर हथियागढ़ गोंडा, ओके। इनका उपनाम है चांद बाबू और इनका असली नाम है राजू मास्टर जी, पर नाम आपको। और इसके बाद में आप लोगों ने गानों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और देखते हैं नेक्स्ट मैसेज में। हाँ, ओह हो क्या बात है, इंजीनियर साहब भी आ गए हैं, अक्षय सिंह जी भाई बनारस की गलियों से। इनका एक ही मैसेज लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, आपका एक मैसेज आया, आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, और 90s नॉस्टैल्जिया इन्होंने बताया, इनको कोई गाना बहुत ज़्यादा भाग गया है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वाले मैसेज की बात करी तो हमारी नीना जी, हसीना जी, रवीना जी, करीना जी और उनकी प्यारी बहन नेहा जी, आप दोनों का यानी चंगू मंगू जोड़ी का भी स्वागत करते हैं। और फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेजेस की ओर। तो इसमें हमें दिख रहे हैं आप ही सभी के ढेर सारे पैगाम, और बीच में हमें दिख गया हमारे आसिफ खान जी मुंबई से, गुड आफ्टरनून आपको भी। और आसिफ खान जी, आप अपना हालचाल जरूर बताइएगा कैसे हैं। और इसके अलावा आसिफ खान जी के अलावा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राहुल तिवारी जी, आपके युवा पत्रकार सिंचाई विभाग गोंडा से। और राहुल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज अगर मैं बात करूं तो आप सभी के हैं भाई बहुत सारी बातें हैं, और मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब भी आया होगा, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगी क्योंकि वक्त हो गया अब एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर। नहीं भैया, आप लोग के म्यूजिक की ओर चलते हैं। और भाई प्रीति शुक्ला जी बहराई से, आज आपकी चरण हमारे शो में कैसे आए, मुझे लग रहा है आज आपने निनिया को कह दिया बाय बाय और आप आ गए यहाँ पे हाय हाय करते हुए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गाने की ओर। गाना है हमारे प्यारे आरजे अमन जी का, चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने अमित कुमार जी की।

राहुल जी बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इस गाने के बाद में हमारे अमित जी की डिमांड है, अमित जी के बाद में हमारे रमेश कुमार जी की डिमांड है और उसके बाद में हम आपकी डिमांड को ट्यून करेंगे। थोड़ा वेट करिए क्योंकि हम बारी से ही गानों को ट्यून कर सकते हैं, हम ना इंसाफी नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी।

भाई आपको कैसे पता है कि हम इतना सब कुछ खाते हैं। थैंक यू सो मच अमन जी, बहुत ही प्यारी सी डिमांड रही आपकी, थैंक यू सो मच, मीन्स लॉट। और आगे बढ़ते हैं अमित जी की डिमांड के साथ में, और इस डिमांड के बाद आएंगे हम अपने प्रबल जी के सिग्नेचर सॉन्ग के साथ, जो कि डिमांड की गई है रमेश जी की ओर से। भाई ये हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, और देन राहुल तिवारी जी आपका गाना तैयार है, इंतजार करिए अपनी अपनी बारी का। और 10 से 11 मिनट मेरे पास में शेष है, डिमांड बहुत सारी है, जिन जिन की डिमांड रह जाएगी कल आप डिमांड करिएगा, कोशिश करूंगी कि आप सभी की डिमांड जिनकी आज रह गई है कल उनकी डिमांड में पहले लूं। फिलहाल ये गाना

जी हाँ, आप चलते हैं रमेश जी की डिमांड की ओर, जो कि हमें सुनते हैं कहाँ से, महाराष्ट्र से। और देन आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के राहुल जी, आपकी अपनी बारी का इंतजार करिए। गाने बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए हैं, बहुत ढेर सारी डिमांड है और आज सभी के गाने बहुत ही उम्दा वाले हैं, जिनके सॉन्ग्स रह जाएंगे कल आप जरूर डिमांड करिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी डिमांड को मैं पहले लूँ। फिलहाल ये सिग्नेचर सॉन्ग हमारे प्यारे पंडित जी का।

सारे गानों का और पंचमेल खिचड़ी आप लोग को परोस दूं। कैसा लगेगा आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बस बारी का इंतजार करिए। और अगर आज गाना नहीं बजता है तो कल जरूर डिमांड करिएगा, मैं कल आपको प्रायोरिटी पे रखूंगी जिन जिनकी आज डिमांड रह जाएगी। आई विल चेक विथ ग्लास ऑफ ह्यूज ह्यूज ह्यूज पावर।

कर लिया भाई। और नीना जी का कहना है आपको डेडिकेट है, थैंक यू सो मच। सब लोग जी आप भी मुराही करते हैं, ओके। और मैम आकांक्षा जी, मैं बात एक ही मुझसे जी हाँ, ओल्ड वर्जन वाला ही मैं आपको सुनाऊंगी, बिल्कुल आप परेशान होइए, मेरा भी वो फेवरेट सॉन्ग है। तो इसलिए राहुल जी आपका गाना आप तक पहुंचेगा, थोड़ा और इंतजार करिए, बस दो पल का और।

बिना कहे कर लिया जी, अब और कितनी दोस्ती करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराष्ट्र से हम तक डिमांड पहुंचाने के लिए। और ये डिमांड है हमारे प्यारे राहुल तिवारी जी की, जो हमारे युवा पत्रकार महोदय हैं सिंचाई विभाग गोंडा से।

क्या सॉन्ग थी, मतलब बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी और मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। वैसे मैं सैड सॉन्ग पसंद नहीं करती, पर कुछ गाने हैं जो बहुत खास हैं। और अब बारी हो गई है भाई आप लोग से विदा बोलने की, क्योंकि शेष मेरे पास 3 से 4 मिनट है। मैं उसमें कोशिश करती 2 और गानों को प्ले करने की, और जिन जिन की डिमांड आज रह गई है उनको मैं कल प्रायोरिटी दूंगी, इसलिए अपनी डिमांड लेकर के ज़रूर आइएगा। और जिन जिन की डिमांड रह जाने वाली है, समरीन जी, निशा जी, चांद बाबू जी, आप सभी के गाने बहुत प्यारे थे, चांद बाबू जी, निब्बर जी, राजू टेलर जी, अरमान जी, आपका भी गाना बहुत प्यारा था, पर मैं क्या करूं, मैंने प्लेलिस्ट कर रखा लेकिन वक्त मेरे हाथ से जा चुका है, मैं बजा नहीं सकती, इसलिए माफ करिएगा। और समरीन जी, निशा जी, चांद बाबू जी, रईस साहब, निब्बर जी, अरमान जी, राजू टेलर जी, और इसके अलावा है हमारे राकेश वर्मा जी, और इसके अलावा हमारे बीच में जिनका सॉन्ग छूटेगा उनका नाम है मुमताज अंसारी साहब आपका, आई एम सो सॉरी आप सभी से, और मुस्तफ़ा जी आपका भी सॉन्ग, तो मुझे माफ करिएगा भाई, एक ही घंटे में, एक ही वक्त में मैं कितने ही डिमांड्स ले सकती, लेकिन कल आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, कल चाहे जिसका भी कॉल आए लेकिन आप लोग के गाने ज़रूर बजेंगे। फिलहाल आज लेते हैं अब हम नेक्स्ट डिमांड को, और ये डिमांड है हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की, आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, और उसके बाद लास्ट डिमांड अरविंद मौर्या जी आपकी, एंजॉय करिए।

जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मोहन भारती जी, और आपके अल्फाज हम तक पहुंच गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं अरविंद मौर्य जी आपकी, और इसी के साथ आपकी आरजे कांक्षा लेती आप लोग से अलविदा। मिलते हैं कल के शो में, और जिन जिन की डिमांड आज रह गई है याद से भेजिएगा जरूर, और वही डिमांड, क्योंकि बहुत ही प्यारी डिमांड थी और मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूंगी। बाय बाय, टेक केयर, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, आदाब, दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गोधूली में। रोजाना हम किसी खास मेहमान से आपको मिलाते हैं और ढेर सारी इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं। तो आज ना हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जो स्पेशल गेस्ट हैं, वो बहुत बहुत स्पेशल हैं, और वो हैं डॉक्टर पद्मनाथ पांडे, संस्कृत लेक्चरर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो आइए उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और ढेर सारी जानकारियां हासिल करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो सर, हम आपके बारे में, आप ही से जानना चाहेंगे एक संक्षिप्त सा विवरण आपके बारे में। आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी, अपने माता पिता के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
1: धन्यवाद। मैं पहले दो पंक्ति आपके एफएम के लिए कह दूं।
0: जी प्लीज।
1: जब यहाँ से मुझे कॉल गया तो मैंने दो पंक्ति लिखी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जोग लगन गृह बार तिथि सकल आज अनुकूल, लखते पद्म प्रपत्त से एफएम स्थली बहुफूल। ये बहुत फूलों का गुलदस्ता है आपके ये एफएम चैनल, इसलिए यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। मैं गोंडा यानी गोंडर्थ की पावन भूमि पर पैदा हुआ हूँ, जो पराशर और पतंजलि की भूमि है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एपी इंटर कॉलेज मनकापुर में प्राप्त की, और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू वाराणसी चला गया और वहाँ पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने बीएड भी किया और यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इस समय मैं बेलसर में हूँ और एक अतिनैतिक मैनेजर के अंडर में काम करता हूँ, श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं वो, और वहाँ पर मैं संस्कृत प्रवक्ता पद पर हूँ। और मेरा एक YouTube चैनल भी है जो ज्योतिष से संबंधित है और अन्य विषयों से भी संबंधित है, वो मेरे संबंधित है डॉक्टर पद्मनाथ पांडे से।
0: जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल्ड वे में आपने बताया। सर, अब हम जानना चाहेंगे आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई इसके बारे में, और साथ ही साथ आपकी अभिरुचियों के बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे पिताजी प्राइमरी अध्यापक थे
0: जी।
1: और मेरी माता हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी, और हम लोगों का देखभाल करती थी। बचपन शायद ग्रहों का असर रहा होगा कि उस समय सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी हमारी जो दिनचर्या थी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, वो निश्चित रूप से ग्रहों का फिर रहा होगा, मैं तो यही मानता हूँ। फिर भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उतना मन नहीं लगता था जितना लगना चाहिए था, ये तो सत्य है। बाद में जब आगे बढ़ा, इंटर में पहुंचा, उसके बाद मैं अपने क्लास में नंबर वन रहने लगा, लेकिन उसके पहले पढ़ने लिखने मन नहीं करता था, ये सही है। गांव में मैं गाय भैंस चराने का भी काम करता था, और ये मैं इंटर तक किया हूँ, और उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, खेल कूद करने को मिला, और उस समय की यादें जो है हमें लगता है जीवन की गोल्डन लाइफ कह सकते हैं आप। उतना अच्छा मज़ा इस जीवन में बाद में नहीं मिला, जबकि शिक्षा भी अच्छी मिली मुझे और मुझे नौकरी भी अच्छी मिली, मेरे प्रबंधक और प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, और आभा ऐसी है कि मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर लोग मुझे समझते हैं, खास बात यही।
0: बहुत ही अच्छी बात कही, बेशक आपकी आभा उतनी ही अच्छी है। और मैं ये जानना चाहूँगी अब कि आपने बताया आप संस्कृत के लेक्चरर हैं, तो ये संस्कृत के प्रति झुकाव कैसे हुआ आपका? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स इन सब के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि इनके पीछे कहीं ना कहीं रूट लेवल पे संस्कृत जुड़ी हुई है। तो इस संस्कृत से झुकाव किस तरह से हुआ ये हम जानना चाहेंगे। कब आपने सोचा कि आपको संस्कृत ही आगे पढ़ना है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये मेरी जो चाहत संस्कृत के विषय में है वो चाहत नहीं थी। मेरे भाई साहब उस समय बीएचयू में पढ़ रहे थे और संस्कृत से आईएएस हो चुके थे, संस्कृत विषय से बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, उनको 336 नंबर मिले थे जबकि हर विषय में लोगों को 250 के आसपास मिलते हैं। तो ये चालाकी क्या लिए आप कह सकते हैं कि मुझे ये पढ़ाया गया कि आप संस्कृत पढ़ें और कंपटीशन में आएंगे तो ये मैथ जैसा नंबर देता है और सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कमोबेश मेरे ऊपर रहा भी, मैं कई जगह इंटरव्यू भी दिया और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते थे, लेकिन अंततः जो है शायद ग्रहों की चाल ऐसी रही होगी कि उसमें सफलता नहीं मिली और अंततः जो है मुझे अध्यापन क्षेत्र में आना पड़ा। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उच्च विचार रखने वाला है और मर्यादित करता है आदमी को, दशा और दिशा अच्छी कर देता है आदमी। यह है कालो न यातो वयो में आता, समय नहीं बीतता हम ही बीत रहे होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा, तृष्णाएं हमारी नहीं पिटती, हम ही मिटते चले जा रहे हैं। तो ये संस्कृत जैसा विषय ही दे सकता है, लेकिन इसमें जो गंभीरता है वो तो आने के बाद पता चला। जब मैंने प्रारंभ किया तो एक जानिए कि वो चालाकी के लिए हमने किया था कि मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
0: मैडम, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये चालाकी किस हद तक आगे बढ़ी जो कि आपका इंटरेस्ट इसमें जाग गया? कैसे आपका इंटरेस्ट इसमें जागा, मैं बेसिकली यही जानना चाहती हूँ कि चालाकी के तौर पे आपने लिया था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आगे आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो कैसे ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट इसमें जग गया और आपने पीएचडी भी इसी में कर डाला?
1: देखिए, काशी जो है विद्वानों की नगरी है और अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाए ना तो क्या क्या नहीं हो सकता। कहा गया है महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, हर मल को नष्ट करने में सक्षम है गुरु का प्रभाव। और ऐसे गुरु मुझे मिले जो उन्होंने ऐसी राह दिखाई कि हम निर्मल से निर्मल होते गए और जब उसमें घुसते गए तो लगा कि यही जीवन ज़्यादा अच्छा है और वो हमें जो हम चाहते से उससे बेहतर देता गया।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात कही और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी संस्कृत लेक्चर से नहीं बल्कि सच में किसी देवगुरु से बात कर रही हूँ। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी है आप में। तो सर, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे संस्कृत को कहा गया है कि देव भाषा है, प्राचीन भाषा है हमारी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति के बारे में सब कुछ बताती है संस्कृत, ये कहा गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के जमाने में संस्कृत का स्कोप जो है वो धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं, हालांकि हमें इसकी अहमियत बखूबी पता है कि ये कितनी अहम है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ को किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम संस्कृत को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं आजकल की भाषा में, आजकल की बोलचाल की भाषा में या लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के तौर पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम, ये तो समय है, समय का चक्र है और कभी ये बोलचाल की भाषा थी, समय नहीं है, लेकिन ये भाषा बहुत संपन्न है, वैभव संपन्न है और इसमें शब्द निर्माण की असीम क्षमता है और ऐसा साहित्य है जितना अभी तक किसी भी विषय में लिखा नहीं गया, किसी भी साहित्य में नहीं लिखा गया। लेकिन हमारा जो टैलेंट है वो आईटी और नीट में चला जाता है, इधर काम करने वाले कम मिलते हैं या कहिए द्वयम दर्जे के लोग ही संस्कृत पढ़ रहे होते हैं। तो उस गंभीरता से जो भाषा की ज़रूरत है वो उनमें आ नहीं पाता है और इसलिए जिस लेवल का काम होना चाहिए हो नहीं पाता। जबकि बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, आप वर्णों की उत्पत्ति को लेके देखें तो कहा जाता है ये देव भाषा है। संस्कृत जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो 14 सूत्रों से निकले हैं। कहते हैं कि शंकर भगवान ने जब नाचते समय अपना डमरू बजाया, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, जब अपना डमरू 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया तो शिव सूत्र जाल की उत्पत्ति हुई। और वही भाषा के प्रारंभिक अल्फाबेट्स हैं, वही वर्ण हैं। और वो आपको मैं बता दूं है क्या, कोई जल्दी बताता नहीं और लोग पढ़ते नहीं इसलिए पता नहीं चलता। वो है पहला है आ ई उण, रिल रिक, ए ओं, आई औच, हाय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड दस, जब गड दस, खफ छठत चटतो कपय शशर हल। खास बात है इसमें पहले स्वर आता है
0: जी,
1: और इस स्वर में देखिए दीर्घ का उच्चारण हमने नहीं किया है, तो इसमें जैसे हमने आ कहा तो इसमें ह्रस्व आ भी है, दीर्घ भी है और एक प्लुत आ भी है
0: जी, जी।
1: आपने देखा होगा जब ओम लिखते हैं तो वो तीन टाइप का लिख देते हैं बीच में
0: जी,
1: देखा होगा
0: बिल्कुल,
1: वो प्लुत का निशानी है।
0: अच्छा।
1: जो वैदिक साहित्य में रहा, जैसे हम कहते हैं ओम तो वो तीन मात्रे का हम प्रयोग कर देते हैं, स्वर को बढ़ा देते हैं। जैसे हम जोर से चिल्लाते हैं ए रिक्शा, जोर से बोलते हैं तो प्लुत का उच्चारण होता है, लेकिन लौकिक साइंस साहित्य से वो दूर हो गया है इस समय, तो उसका प्रयोग लौकिक में नहीं है लेकिन वैदिक में है, अब भी है, तो ये वैज्ञानिकता है उसकी। आप देखिए तीन शा है आपके पास, उच्चारण इतना स्पष्ट है, एक दंत वाला सा होता है
0: जी,
1: जिसको अपने अवधि में तो कहते हैं छोटा सा सरोता वाला सा, एक है तालबी सा जिसको बड़ा सा भी बोलते हैं गांव में, और शलजम वाला सा भी बोलते हैं
0: जी,
1: और एक सा है पेट तिरवा सा बोलते हैं गांव में, खटकोण वाला सा बोलते हैं लेकिन मूर्धनि सा वो जानते नहीं
0: जी,
1: जबकि सब उच्चारण में आना चाहिए। हम जब अवधि में अब देखिए कि जो तालव्य शाह है उसका उच्चारण कहा ही नहीं आता, इसलिए पूरे अवध प्रांत का ये समस्या है। जब तुलसीदास रामचंद्र मानस में लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो
0: जी,
1: वो दंत शाह का प्रयोग करते हैं,
0: हाँ, शाह नहीं आता,
1: तालव्य शाह का प्रयोग नहीं करते
0: जी।
1: तो ये अपने अवधि, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर वाले को पता चल जाता है कि इसके बोलने में कुछ त्रुटि है, और जो बोल नहीं सकता अपनी बात को क्या रख पाएगा
0: जी।
1: तो हम दोयम दर्जे के हो जाते हैं। तो मैं पहले अपने क्लास में यही सही कराता हूँ, ती लिखता हूँ और जो रा वाला सा है उसको कहता हूँ जहाँ से ता बोलते हैं, ता था वहीं से बोलिए सा, तो ये लड़के सब बोल पाते हैं क्योंकि ये रोज बोलते रहते हैं
0: जी।
1: हम कहते हैं आप शंकर जी की पूजा करते हैं और कहते हैं शंकर, अब शंकर कहेंगे तो उसका मतलब हुआ क्रॉस्ड हाइब्रिड,
0: एक्चुअली
1: जब शंकर को आप कहेंगे हाइब्रिड तो वो तो क्योंकि देव है कृपालु है इसलिए आपको त्रिशूल नहीं मार देते, ये तो उनको तो आपको तो मारने के देवता है ना भाई, उनका तो मारना ही काम है
0: बिल्कुल।
1: तीनों जो भगवान है आपके तथाकथित जो हम मानते ही होंगे, तो उसमें एक कर्ता है, एक भरता है और एक हरता है, तो अपने जो शिव जी है उनके हाथ में हरण करने का ही है, इसलिए मृत्युंजय जाप हम लोग करते हैं कि वो उससे हमें निजात दे दे और हमें जब हम पक जाए तभी हमें ले जाए, जाना तो सबको है लेकिन कच्चे फल की तरह ना जाए, पक कर जाए, अपने आप छूट जाए, रोग से ना छूटे, एक्सीडेंट से ना छूटे, ऐसा हो। तो शिव जी हैं, हम उनको अगर गलत उच्चारण करेंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे
0: जी।
1: और जो आप बड़ा सा कहते हैं सलजम वाला सा, वो उच्चारण वहां से होता है जिस चा छा जा होता है, देखिए हम बोलते हैं थोड़ा ऊपर से चा, वो तालव्य है, तो इससे बोलना है शा, चा शा, चा शा, तो लड़के बोल लेते हैं। फिर जो शा है आपको जो खटकोड वाला कहते हैं उसको हम टा से बोलते हैं, वो मूर्धन्य है, टा ठ ड, वहीं से बोलते हैं शा शा शा, टाशा टाशा, वर्षा वर्षा, तो जब सही उच्चारण करते हैं तो भाषा अपना अर्थ दे जाती है
0: जी।
1: और अगर हम सही उच्चारण नहीं करते तो भाषा अपने आप में रोती है, बिलखती है, परेशान होती है। तो हम बच्चों के सिखाते हैं कि आप बड़े भाग से मनुष्य हो गए हैं, 84 करोड़ योनियां हैं जो जीव पैदा होते हैं, आप मनुष्य पैदा गए। उनको एक हिंदी की किताब है जो इंटर में चलती है, उसमें एक चैप्टर आता है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छा है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है, नहीं सही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है
0: जी।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती
0: जी, जी।
1: उसमें एक पंक्ति आती है जो वास्तव में भागवत का ही है, उसका हिंदी में बता रहा हूँ कि बड़े भाग हम मनुष्य हो गए
0: जी।
1: दूसरा भगवान की कृपा हो गई जो हमें समूल पैदा किया, हाथ दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, आंतरिक ऑर्गन्स भी दिए, लीवर दिया, किडनी दिया, हार्ट दिया, पनक्रियास दिया, लंग्स दिया, कुछ गायब नहीं किया। तो इतना ही तो सब्जियों के लिए वो करता है, और तो ज्यादा वो करता ही नहीं। तीसरा आपको गुरु का सानिध्य मिल गया, यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब पढ़ने का आपको अवसर, इंडिया में 40 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको पढ़ने का ही अवसर नहीं मिलता
0: जी।
1: तो ये तीन चीजें होने पर भी अगर आप अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं तो आप आत्महत्यारा हैं, खुद हत्या करने वाले हैं अपनी, इसके लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। ये लड़कों को मैं भली बात समझाता हूँ और वो समझ जाते हैं, फिर उनको मैं बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला दो चार पीरियड जब मैं जाता हूँ सत्र के पहले में तो उपदेशात्मक ही रहता है
0: जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आप किस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही। और एक बात आपने और भी अच्छी कही कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और जहाँ तक है हम सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सर आपसे और भी ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल से ब्रेक का। तो लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
5: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
6: जी सर।
5: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
6: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे, और क्या।
0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत है आपके अपने प्रोग्राम गोधूली में, एंड दिस इज योर फेवरेट RJ मोनिका। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। तो आज हम अपने स्पेशल गेस्ट से खूब सारी बात करने वाले हैं, जो कि हैं डॉक्टर पद्मनाथ पांडे, संस्कृत लेक्चरर एंड एस्ट्रोलॉजर। सर हमने आपसे बहुत सारी बात की और अब हम जानना चाहेंगे, कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा है और इसमें 1 लाख से ऊपर शब्द है, यानी इसका शब्दकोश बहुत बड़ा है। तो इसकी गहनता पर बात करते हुए हम इसकी प्रामाणिकता जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज बताएं।
1: हाँ मैडम, ठीक आप कह रही है। आप जब प्रमाण लेती है तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम इतिहास को 3 क्रम में देखते हैं। एक वो प्रमाण होते हैं जो पूरा ऐतिहासिक काल के कहलाते हैं, जिसमें हमें कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं मिलता, उसको हम पूरा ऐतिहासिक काल कह देते हैं
0: जी।
1: एक है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें प्रमाण तो मिलते हैं, और कुछ लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन वो अपठनीय होते हैं, वो पढ़े नहीं जा सकते। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को ले सकते हैं, जो मिले तो 400 चिन्ह मिलते हैं लगभग, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके आज तक। कुछ लोगों ने बताया भी है कि पढ़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है, तो आद ऐतिहासिक काल का कहा जाता है
0: जी।
1: एक है ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो जो साहित्यिक साक्ष्य है वो ऋग्वेद है, और पूरे मानव जाति का वो पहला साहित्य है जो हमें मिलता है, उपलब्ध होता है, तो उसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। लगभग 1500-1600 ईस्वी पूर्व में हम जाएं तो एशिया माइनर में एक बोगास गोई है, वहाँ पर एक शिलालेख मिलता है जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं
0: जी।
1: तो ये लगता है कि ये प्राचीनता की ओर है, और जो भाषाएं हैं उसके बात निकली हुई है। तो ये अपनी फिर जो वेद है वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया है, वो अपौरुषीय माना जाता है। वो माना जाता है कि वो प्रकट किया जाता है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, और जो ऋषि होते हैं उसको देख लेते हैं। कहा गया ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्रों को देखते हैं, लिखते नहीं है वो। तो वो विजन होना चाहिए, जैसे हमें देखिए पृथ्वी स्थिर दिखती है, लेकिन देखने वालों ने देखा पृथ्वी घूम रही होती है। लोग कहते हैं सूर्य स्थिर है, लेकिन हमें वो चलता हुआ दिखता
0: जी।
1: है। तो अगर मेरे पास आर्यभट्ट की दृष्टि हो, कापरनिकस की दृष्टि हो, तो चीजें यथार्थ में आ जाएंगी। लेकिन खुली आंखों से सामान्य जन से तो यही लगता है कि जो हम देखते हैं वही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जो संस्कृत का साहित्य है बड़ा रिच है, बहुत सारे इतने ग्रंथ है ना कि आप गिनते जाएं उसका और छोर नहीं है। वैदिक काल में देखिए चार तो वेद ही है, फिर उनके चार वेद कौन से आप जानते हैं, ऋग्वेद है
0: जी जी,
1: और वो मंत्र में है
0: हाँ।
1: और उसी का दूसरा संस्करण कह सकते हैं आप जो साम वेद है, उन्हीं मंत्रों का गेय रूप है, वो गाने में बंधा हुआ है, सुर ताल में है, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वेदों में साम वेद हूँ। उन्होंने ऋग वेद नहीं कहा
0: हाँ।
1: साम वेद कहा, क्योंकि वो मंत्र तो है ही, वो बहुत सुंदर भी है, गेय भी है
0: अच्छा।
1: जो मानव मन को आह्लादित भी कर देते हैं, इसलिए उसका महत्व तो ज्यादा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ और वेदों में साम वेद हूँ, तो बड़ी चीज है। फिर यजुर्वेद आता है जिसमें यज्ञों की प्रधानता है, यज्ञ के माध्यम से ही हम प्रकृति से जोड़ते थे, या आप जिसको अध्यात्म कह सकते हैं। जब वेद लिखा गया तो जिस रूप में हम भगवान की आज स्तुति करते हैं
0: जी,
1: उनकी सत्ता उस रूप में नहीं थी। उस समय जो सबसे प्रबल देवता थे वो इंद्र देवता थे। ऋग्वेद में जो विभाजन है ना वो सूक्तों में है, सूक्त मतलब सुंदर उक्तियां जो
0: अच्छा।
1: हमने देवताओं के लिए की, कुल 1028 सूक्तियां हैं
0: अच्छा।
1: सूक्त मतलब सुंदर, जिसमें 9 से 16-15 मंत्र तक रहते हैं एक में
0: अच्छा।
1: और उसमें सबसे ज्यादा 250 सूक्त तो केवल इंद्र देवता के लिए, आप सोचिए 1/4 ऋग्वेद तो इंद्र देवता के लिए लिखा गया
0: जी।
1: आप ये भी कहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का नाश है ना, उसमें आर्यों का हाथ रहा होगा, घोड़ों से आए, चढ़ के बड़ा तेजी से आए, इसलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है
0: जी जी,
1: पुरों को तोड़ने वाला कहा जाता है। तो ये कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं बहुत सारे कारण से हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ होगा, लेकिन एक कारण ये भी माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से मानते। तो ये जो वेद है ना, फिर दूसरा देवता जो है अग्नि देवता है, जिसके लिए 200 सूक्त। तो देखिए आधा वेद तो दो ही देवताओं पे है, उसके बाद बहुत सारे देवता हैं
0: जी।
1: और जो आपका ये गायत्री मंत्र है ना, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है
0: अच्छा,
1: जिसके द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र जी। और वो मंत्र आप पढ़ते हैं ना तो ज्यादातर जो पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं जानते
0: हाँ,
1: और अर्थ नहीं जानते ना तो विद्या कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। बिना अर्थ जाने जिसका भी वाचन आप करते हो वो कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि आप जानते नहीं कि आप ईश्वर से क्या मांग रहे हो या क्या निवेदन कर रहे हो
0: जी।
1: तो आप जब ओम भूर्वः श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए सविता देव से आप क्या कह रहे हैं। आप कुछ नहीं मांगते, आप कहते हैं मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर दे। अब बुद्धि जब सद्मार्ग की ओर चलेगी ना तो सकल पदार्थ आपके पास अपने आप
7: बिल्कुल, बिल्कुल
1: सब अच्छी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, क्योंकि सही प्रेरणा से सारे काम होते हैं और जो आप सोचते हैं वही होता है, क्योंकि विचार ही वस्तु बन जाते हैं। वस्तु तो सिद्धांत ही है। जी मैडम
7: जी, अभी आपने बताया कि संस्कृत में जो लिटरेचर है, संस्कृत की जो संस्कृत का साहित्य है वो बहुत रिच है, चाहे हम वेदों की बात करें, वेदांगों की बात करें या महाकाव्यों की बात करें। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो संस्कृत है, ये इसमें जो वेद हैं, वो संसार को किस तरह से रूट लेवल पे जो है डायरेक्शन देते हैं या किस तरह से उनको काम करने में हेल्प करते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। इस पर जरा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, जो पूरा वेद है ना वो श्रुति कहलाता, सुनकर आया हुआ है
7: जी,
1: शिष्य परंपरा से। और वो वेद का मतलब है विद ज्ञाने, विद धातु से बना है जो का अर्थ है ज्ञान। तो वेद प्रकृष्ट ज्ञान को उपलब्ध कराता है, हर विषय के ज्ञान उसमें समाहित है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं जा रहा है। जितने भी ज्ञान विज्ञान है आपके पास, आज देखिए आप मोबाइल से बात कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे देखिए फेस टू फेस बात करते हैं, ये तो आपको देखिए पौराणिक काल में, महाभारत काल में देखिए संजय ने तो ऐसा ही काम किया
7: जी,
1: आपको दिख जाएगा
7: जी, जी।
1: तो ऐसा नहीं है, सारी विद्याएं हैं और वो सूक्ष्म रूप में है, उनके विस्तार की जरूरत है, उनके निर्वचन की जरूरत है, उनकी व्याख्या की जरूरत है। और ऐसे लोग अगर आएंगे, अच्छे लोग आएंगे जिनकी मेधा तेजी से काम करती है, तो वहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। बस वो जो है निधि है हमारे साहित्य का, हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का।
7: जी सर, अभी जो है आपने कहा कि आप संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं और संस्कृत के लिए बच्चों को प्रेरित भी करते हैं कि उनको किस तरह से आप सिखाते हैं। एक चीज जो हमने बचपन से सुनी है या अभी भी हम सुनते आ रहे हैं कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती है, भाषा इंसान को बेहतर बनाने के लिए होती है, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि संस्कृत किसी धर्म की है या नहीं? अगर है तो फिर ये किस तरह से है?
1: देखिए मैडम, कोई भाषा किसी धर्म की नहीं होती,
7: बिल्कुल
1: वो मानव मात्र के लिए होती है। पहले तो हमें करना होगा कि हम धर्म मानते किसे।
7: हाँ।
1: हम पंथ को धर्म मानने लगे, हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
7: बिल्कुल
1: सेकुलर राज्य है
7: जी।
1: लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। हम किस माध्यम से धर्म को पाएंगे उस माध्यम का वो विरोध करता है। और जो धर्म है वो तो सारे धर्मों के लिए एक ही है। सत्य बोलना धर्म है, किस धर्म में नहीं है। क्षमा करना धर्म है
7: जी,
1: किस धर्म में नहीं है। संयम रखना धर्म है। जैसे अभी 10 धर्म के लक्षण सुनाए हैं
7: जी,
1: मनुस्मृति में कहा गया, धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचम निन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कभी न कहीं नहीं लगाया गया चंदन लगाओगे, जनेऊ पहनोगे, मंदिर जाओगे तब आप धार्मिक कहलाओगे
7: जी।
1: और ऐसे ही किसी भी धर्म में जो मूल तत्व हैं इन्हीं 10 बातों के अराउंड में घूमते हैं।
7: बिल्कुल।
1: जैसे धृति धैर्य है, क्षमा तो क्षमा है ही, दम मीन्स संयम है, अस्तेय मीन्स चोरी न करना है, और शौच माने पवित्रता है, आप पवित्र रहें हृदय से, और धृति हो गया धीर बुद्धि विद्या सत्य, और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण है। धर्म की परिभाषा यही है, ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि साधर्म, जिससे आपका उत्थान हो रहा हो, अभ्युदय हो रहा हो और कल्याण की प्राप्ति हो रही हो, वही धर्म है। और वो इसी रास्ते से गुजरता है, 10 रास्ते से। तो बताइए किस धर्म में नहीं है या किस धर्म से बंधा हुआ है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमने धर्म की बड़ी संकुचित परिभाषा कर रखी है, इसलिए हम कहते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, वो तो पंथ है मैडम, वो धर्म नहीं है। धर्म तो सबका एक ही है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है, सबके उदय के लिए है, सबके विकास के लिए है, सबके कल्याण के लिए है।
7: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और जहाँ तक हमें लगता है कि बिल्कुल हमारा जो धर्म है वो मानव जाति के प्रति ही है और वो मानवता ही है। सो आपसे और भी ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो लेते हैं एक म्यूजिकल सा ब्रेक, मिलते हैं गाने के उस पार और ढेर सारी बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
8: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
8: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गौधली में। दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर पद्मनाथ पांडे, संस्कृत लेक्चरर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो सर, हमने आपसे बहुत सारी बातें की और वो सिलसिला हम जारी रखते हैं, और आपसे अब जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि संस्कृत जब बोलते हैं या संस्कृत का जब उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमारी जो आत्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या कहें कि जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सलूशन हमें मिल जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा तो है ही। उच्चारण विधि से मस्तिष्क शांत होता है, और उच्चारण के लिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे हर वर्णों का उच्चारण लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं। जैसे अब का बोलते हैं, खा बोलते हैं, तो कंठ के विकार नष्ट होते हैं और कंठ से वाणी निकलती है। जैसे आप ता था, दा था ऐसे बोलते हैं तो दांत से जीवा का स्पर्श होता है और ये बलता है। ऐसे चा छा जा झा जब बोलते हैं तो ये तालु से स्पर्श होता है और भाषा निकलती है, वाणी निकलती है। इसी प्रकार से जब टाठा डाढ़ा बोलते हैं तो मूर्धा से निकलती है, और पाफा बाभा जब बोलते हैं तो ओठ से निकलती है। आपको मैं एक बताऊं, एक वासुदत्ता है
1: जी,
2: किताब है वासुदत्ता, सुबंध की किताब है, एक उपन्यास है संस्कृत का,
1: अच्छा,
2: और एक गद्य रचना है।
1: ओ,
2: तो ये 10 राजकुमारों की कहानी है। उसमें एक राजकुमार को चोट लगती है, जमीन में लड़खड़ा जाता है, उसका ओठ कट जाता है। तो उस पात्र ने फिर कभी ओष्ठ वर्णीय अल्फाबेट का प्रयोग नहीं किया, अर्थात अच्छा। उन्हें पाफा बाभा का उच्चारण
1: किया
2: ही नहीं। इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि कवि को पता है जिसका ओठ नहीं होगा उस वर्ण को बोल ही नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी विविधता है। आप कहते हैं कि ये पहले एक कहानी आती है कि एक राजा थे, तो वो काट, एक आदमी जा रहा था जो लकड़ी लेकर लकड़हारा रहा होगा, रास्ते में जा रहा था, तो एक राजा ने देखा तो कहा, वो बोझ से लदा दबा जा रहा है, तो उसने कहा, भो काष्ठवाहक, हिंदी में बता रहा हूँ, भो काष्ठवाहक भारम बाधति, भारम बाधति, तो उसने कहा कि भारम ना बाधति, यथा बाधति बाधते, जो है बाधति शब्द को नहीं बोलना चाहिए था, बाधते बोलना चाहिए था।
1: अच्छा,
2: क्या बोलना चाहिए था? राजा को बाधते कहना चाहिए था और उन्होंने बाधति कह दिया। तो ये परस्मै पद का प्रयोग कर दिया जबकि आत्मने पद का प्रयोग करना था। तो उसने कहा, हे राजा, मुझे वो दुख नहीं देता कि काट मुझे लदा हुआ है, दुख ये दे रहा है कि आपने बाधते को बाधति कह दिया है।
1: वाह,
2: इतने प्रामाणिकता है इस भाषा में। अगर गहराई में आप जाएंगे ना तो इसमें अब अंग्रेजी में देखिए, ब्रदर इन ला कह देते हैं, वही साला भी है, वही जीजा भी है। अब ये कैसे अंतर आएगा आप बताइए? एक कौन सी रिचनेस है भाषा की, हम अंग्रेजी के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सारे काम इसी में हो रहे हैं, सही है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता उतनी नहीं है जितनी संस्कृत में है। और अगर हमारे विद्वान इसमें लगे अगर टैलेंट इधर जाए, अभी देखिए अमेरिका में भी संस्कृत की प्रति रुझाव हुआ है, गीता वगैरह पढ़ाई जाती है, अपने IITs में भी एक कोर्स के रूप में रखा गया
1: जी।
2: हो सकता है, देखिए जो बीच में सरकारें थी उनको हिंदू मैथोलॉजी के साथ कुछ लेना देना नहीं था, ऐसा मुझे लगता है, या कम रहा होगा
1: जी।
2: लेकिन जो अद्यतन सरकार चल रही है उस दिशा में सोच जरूर रही है,
1: तो
2: हो सकता है आने वाले समय में इसका भी विकास हो, क्योंकि कोई भी सभ्यता हो अपने आधार से कट कर वो विकास नहीं कर पाती। आप देखिए जापान है ना, तो जापान में अंग्रेजी नहीं चलती,
1: उनकी अपनी भाषा जापानी
2: भाषा चलती है।
1: बिल्कुल।
2: चाइना में इंग्लिश नहीं चलती,
1: चाइनीज
2: चलती है
1: जी।
2: ऐसे आप जर्मनी में जाइए अपनी भाषा चलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो गुलाम थे वही भाषा, गुलामी की भाषा आज भी चल रही है, और हम लगता है कि टाई लगाकर बड़े विधाता हो गए। आप इस सोचिए जो अच्छा लड़का कहीं का भी पढ़ा हो और आप एक कॉन्वेंट का ले लीजिए, वो मैं प्रायः पूछता हूँ जब कोई लड़का आता है, जैसे हमारा भी बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, फातिमा में पढ़ रहा है, पूछता हूँ कि वो नहीं जाता है इसको आप कैसे कहेंगे, तो उसमें 80% लड़के इस सेंटेंस का उत्तर नहीं दे पाते, कह नहीं पाते कि मैं नहीं जाता, उसको वो डस नॉट डिड नॉट डू नॉट का प्रयोग उनको बताए नहीं गया, ग्रामर से एकदम कटे हुए हैं, जबकि आप अगर अच्छा यूपी बोर्ड का है तो सारा ग्रामर समझता है
1: जी।
2: तो आप जो भाषा की जो जान है ना, ग्रामर है,
1: बिल्कुल
2: ग्रामर को समझना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए
1: जी। अब एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, जैसे कि अभी आपने बताया, तो उससे ये सवाल निकल कर आता है कि आजकल हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारी संस्कृत, हमारी मातृभाषा या हमारी हिंदी जो हमारी भाषा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, तो एज अ संस्कृत लेक्चरर आप किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा को किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे ये हम जानना चाहेंगे।
2: देखिए मैं तो, मुझे तो बहुत छोटा सा एरिया मिला है, काम मिला है जो मैंने सर्विस किया है, तो वहाँ पर मैं फैलाने के लिए कोशिश करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये कैसे विद्यार्थ करी है। आप अगर सर्विस नहीं पाते तो भी इसमें आपके जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। दूसरी ओर अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं इसका मतलब आपने साइंस नहीं पढ़ रखा है, अपने यहाँ की जो विधा है ना, साइंस स्ट्रीम अलग है, उससे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की एरिया में जाएंगे उसमें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है।
1: अच्छा।
2: संस्कृत को आर्ट स्ट्रीम में है।
1: बिल्कुल।
2: तो जब आर्ट स्ट्रीम में जब आप आते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पद या तो इंग्लिश में निकलता है या तो हिंदी में निकलता है, मैं उनको बताता हूँ, और अंग्रेजी में साइंस का भी कंपटीशन रहता है, आर्ट्स का भी कंपटीशन रहता है। हिंदी टीचर के लिए इंटर में संस्कृत पढ़ना होना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ये आपको शायद ना पता हो या पता हो
1: जी।
2: तो जो इंटर में संस्कृत पढ़ा होगा, क्योंकि इंटर में संस्कृत पढ़ानी पड़ती है हिंदी में, आपने हाई स्कूल में भी संस्कृत पढ़ा होगा हिंदी में, इंटर में भी पढ़ा होगा, तो जो इंटर में संस्कृत पढ़ा है वही फॉर्म डाल सकता है।
1: अच्छा।
2: तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तब उनको ये बताते अपने आज बहुतायत को मैं संस्कृत देता हूँ, मैं 11-12 का एक क्लास टीचर रहता हूँ, तो लड़कों को समझाता हूँ, उनके माता पिता को समझाता हूँ, लोग यही कहते हैं पंडितों की भाषा है हमसे क्या लेना है।
1: हाँ, एक्चुअली
2: उनको मैं समझाता हूँ कि नहीं, ये आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं अगर, तो दो चार तो ऐसे रहते हैं जो संधि से संबंधित है, समाज से संबंधित है, कारक है, शब्द शुद्धियाँ हैं, वो सब संस्कृत से ही सही हो सकती है, तत्सम है, तद्भव है, तो उनको बताते हैं ये, और ज्यादा तो ये प्रभाव करता है कि आप हिंदी टीचर बन सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो हमारे यहाँ तो संख्या कमोबेश ठीक रहती है। और मैं प्रयास में रहता हूँ कि लोग अगर ज्योतिष सीखे ना, अपने पाठ्यक्रम में भी कुछ गड़बड़ी रहती है,
1: बेशक
2: पाठ्यक्रम ऐसा रखना चाहिए जो बिना नौकरी के भी जीवन यापन चलाए, एक सार्थकता की ओर ले जाए
1: जी।
2: तो अगर ज्योतिष को रखा जाए ना, तो बड़े से बड़े लोग भी ज्योतिष पे विश्वास करते हैं
1: जी।
2: हो सकता है कहते मिले कि ये ऐसे ही है, लेकिन विश्वास सब करते हैं। हमें पास तो कुंडली मिलाने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं और बताते हैं, जिसको आप मान नहीं सकते कि आपके बगल में ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो मेरे रिलेटिव भी हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स लोग भी आते हैं और इस पर वार्ता होती है। और इसमें आप अगर ज्योतिष जान लेना तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी होने वाली है, कब तक रह सकती है, कब इसमें गंभीरता आएगी, कब इसमें कम हो सकता है। तो ये भाषा अद्भुत है भाई, इसमें गंभीरता बहुत है, लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचते हैं ना वो शायद उतनी मेधा संपन्न नहीं होते, इसलिए उतनी बारीकी से चीज़ों को सामने नहीं ला पाते।
1: जी, अब हम जो है बढ़ते हैं इस ज्योतिष शास्त्र की तरफ यानी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हम सबको फैंटेसाइज करती है। अगर कोई हमसे सामने वाला कह दे कि मुझे हाथ देखना आता है तो हम तुरंत अपना हाथ लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई हमारी रेखाएं पढ़कर बताइए कि हमारे तकदीर में क्या क्या लिखा है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया आपको, आपने कब जाना कि आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं या ज्योतिष शास्त्र में आप आगे बढ़ सकते हैं।
2: देखिए मैडम, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
1: जी,
2: और मेरा ऋग्वेद पे ही रिसर्च है
1: जी,
2: और वेद का जो ज्योतिष है ना वो अंग है। वेद को पढ़ने के 6 अंग माने गए
1: जी,
2: उसमें एक है शिक्षा, और शिक्षा को हम वेद का कान मानते हैं, नाक मानते हैं, घ्राण मानते हैं, जो है सूंघने का काम करता है, अर्थात कैसे वर्णों का उच्चारण होगा, कैसे लिखे जाएंगे, इस शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा कल्प है जिसको हम हाथ कहते हैं, जो यज्ञ प्रक्रिया से संबंधित होता है, कैसे यज्ञ वेदियाँ वगैरह बनेंगी इससे संबंधित होता है। तीसरा है व्याकरण, व्याकरण को मुख कहते हैं, व्याकरण सही होगा तभी सही उच्चारण निकलेगा, तो वेद के लिए हमें व्याकरण पढ़ना होता है। फिर छंद है, छंद को हम पाद कहते हैं, पैर कहते हैं, बिना छंदोबद्ध लयबद्ध हुए हम चल नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
2: छंद का मतलब है, अब तो देखो कविता युग की कविता आ गई, मानो का रचा हुआ सूरज, मानो को भाव बनाकर सो गया, कोई कविता नहीं लेकिन ऐसे चल रही है, लेकिन पहले देखिए दोहा होता, सोरठा होता, तो ऐसे संस्कृत में भी छंद होते, तो जिससे कि विषय वस्तु को हम लयबद्ध करते और उसको सामने प्रस्तुत करते हो, तो पाद कहलाता है, चरण कहलाता है, जिससे विद्या चलती है, बढ़ती हो पाद है। और छठा अंग है ज्योतिष, जो चक्षु कहलाता है, जो देखता है कब क्या घटने वाला है।
1: अच्छा,
2: और घटना क्या है, जो आपने कर रखा है पूर्व या पहले कर रखा है, वही भाग्य के रूप में या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। और ये डिसाइड होता है कि जब आप जन्म लिए तो 12 राशियां में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहाँ कहाँ स्थित थे, और फिर उनका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर रहता है
1: जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि हम, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता या हमें लगता है हमारा काम बिगड़ रहा है, तो हम कहते हैं हमारी किस्मत ही बेकार है, हमारी कुंडली ही नहीं अच्छी है, तो हम किस तरह से ये जाने कि हमारी कुंडली अच्छी है या नहीं है, आपके विचार उस पर क्या है?
2: देखिए मैडम, सब नक्षत्रों का तो खेल है, लोग कहते पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हो गए।
1: हाँ,
2: ये बात आती है जब दुख आता है तभी ये सब बात आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारी जो कुंडली है ना, पूरे जो ब्रह्मांड है वो 12 घरों में बंधा हुआ है, आप एक पेपर में उतारे तो 12 घर हम बनाते हैं उसके लिए।
1: अच्छा,
2: और उसमें पहला जो घर होता है तन का घर होता है, जिससे हम शरीर देखते हैं आदमी का, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, सांवला होगा, सफेद गोरा होगा, ये सब पता चलता है, आंखें छोटी होंगी, माथ कैसा होगा, सारी चीजें पहले घर से पता चलती है।
1: अच्छा,
2: अब इसमें अगर जो इस घर का मालिक है, जैसे इसमें 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है ना, अंक देखते हैं, तो ये जो 12 राशियां हैं, पहले आप देखिए, 1 नंबर से हम कहते हैं ये मेष राशि
1: जी,
2: 2 नंबर है तो वृष राशि,
1: बिल्कुल,
2: 3 लिखा है तो मिथुन राशि, चौथा है, 4 लिखा है तो कर्क है, 5वां है सिंह है, 6 है कन्या है, 7 है तुला है, 8 है वृश्चिक है, 9 है धनु है, 10 है तो मकर है, 11 है कुंभ है, 12 है तो मीन है। अब इसी में सब जो 7 ग्रह हैं, राहु को हम छाया ग्रह कहते हैं, उनको राशियों का स्वामित्व तो नहीं मिला है, जिसमें 2 ऐसे हैं जिनको एक एक राशि मिली हुई है, चंद्रमा को कर्क और सूर्य को सिंह राशि। ये लग्न में होगी, अगर मान लो सिंह राशि है तो आदमी सूरज जैसा प्रतापी होगा, और अगर चंद्र है तो चंद्रमा जैसा होगा। फिर जो 2 राशियां हैं, एक मेष राशि है, एक वृश्चिक राशि है, ये मंगल की राशि है, इसके मालिक मंगल होते हैं।
1: अच्छा,
2: तो जो इस राशि में अगर शरीर का पड़ता है तो इनके जैसा आदमी बनेगा, इनके जो कारकत्व है, इनकी जो स्वामित्व है, उसके अनुसार आदमी का निर्माण होगा।
1: अच्छा,
2: ये अगर मान लो 3 और 6 लिखा है तो बुध जैसा होगा, 2 और 7 लिखा है तो शुक्र जैसा होगा, 9 या 12 लिखा है तो गुरु जैसा होगा, 10 या 11 लिखा है तो शनि जैसा होगा
1: जी।
2: तो इसको हम देखकर बता सकते हैं। दूसरे घर से हम धन को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं। अब इसको ऐसे बढ़ाओ, घर का सबका अपना अपना है, विस्तार से हो जाएगा। आपने कहा कैसे मानते हैं, कैसे अच्छा है कैसे खराब है
1: जी।
2: तो एक सूत्र है कि जो ग्रह अपने घर को देखता है या घर में रहता है वो घर अच्छा होता है, या कोई शुभ ग्रह उसको देखता है या रहता है तो अच्छा होता है
1: जी।
2: मौलिक रूप से 2 ग्रह शुभ है, शुक्र और बृहस्पति।
1: अच्छा,
2: कंडीशनल 2 और शुभ है, एक बुध और एक चंद्रमा।
1: अच्छा,
2: बुध कंडीशन, ये अगर ये पाप ग्रह के साथ है तो पापी हो जाता है, अगर अकेले या शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ हो जाता है।
1: अच्छा,
2: लेकिन इसकी जो चाल है ना, ये सूर्य के आसपास रहती है, तो 80% कुंडलियों में ये सूर्य के साथ ही रहता है, तो प्रायः पापी ही रहता है। 10-12% कुंडली

0: सुन पड़ जाना। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
3: कुक स्टूडियो सीजन 14।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो गोंडा मैसेज मसाला में। और दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ी हंसी, ढेर सारी मस्ती और आपके अपने शहर गोंडा और आपके अपने इंडिया की खास बातों का। और भूलिएगा नहीं, सबकी बातें तो कर लेंगे, लेकिन अब तो वक्त है शाम का ना, और शाम के वक्त होती है दिल की बातें, सुकून की बातें, जज्बात की बातें और ढेर सारी गॉसिप्स और ढेर सारा प्यार। सो मैं हूँ आपकी अपनी साथी, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आज के आपके गोंडा मैसेज मसाला की होस्ट। सो क्या आप सभी तैयार हैं आपके शाम के सफर को और भी ज्यादा खास और शानदार बनाने के लिए। सो दोस्तों, आज के शो में हमारे पास एंटरटेनमेंट का फुल फुल फुल वाला डोज और मजेदार मैसेजेस, मजेदार गॉसिप्स और कुछ ऐसी खबरें जो सीधे आपके दिल से जुड़ेंगी। तो चलिए अपने फोन को उठाइए और अपने 89.6 FM के चैट बॉक्स पर आ जाइए और अपनी मौजूदगी को हम तक पहुंचा दीजिए। सो आपकी मौजूदगी ही आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए खुशियों की पिटारा होती है, खुशियों का पिटारा होता है। सो नाउ कम इन योर चैट बॉक्स एंड नाउ से हेलो आज सिंपल। सो इवनिंग का वक्त हो तो चुका है, आप लोग कुछ लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिस से निकल के एकदम दिन भर की थकान को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ घर की मंजिल देख रहे होंगे, अपनों का साथ देख रहे होंगे, परिवार को देख रहे होंगे और कुछ लोग तो परिवार के पास पहुंच भी चुके होंगे और अपने परिवार के साथ में ये हमारा गोंडा मैसेज मसाला शो इंजॉय कर रहे होंगे। सो आप सभी क्या क्या कर रहे हो इस वक्त मुझे बताना। जैसे कि मेरा तो इस वक्त आप सभी से मिलने का मन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से आ जाऊं और आप सबका वेलकम कर लूं। और मैं तो आप सभी के साथ में हूं, लेकिन आप सभी क्या कर रहे हैं, मैं फुल ऑन आप सभी के साथ में हूं, 100% and 200% आप सभी के साथ में हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे के बाद में, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में फिर से मिलेंगे आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला शो में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो तैयार रहिएगा और मस्ती तो फुल ऑन होने वाली है। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। सो वंस अगेन वेलकम इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो कैसा लग रहा है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आज गोंडा मैसेज मसाला की शाम में, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आहा, स्वागत है आपका अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, सविता शास्त्री जी गोंडा से, रूपाली एंड दीपाली गोंडा से, महेंद्र दीपेन राजस्थान से और सुरेश कुमार जी चौक से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, वेलकम इन योर शो। सो मैंने अभी जाते जाते म्यूजिकल ब्रेक पर जाते जाते क्वेश्चन किया था कि आप सब क्या कर रहे हो, कि कोई ड्राइव कर रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई खाना बनाने की तैयारी कर रहा होगा, कोई चाय नाश्ता कर रहा होगा, कोई परिवार के पास जाने का इंतजार कर रहा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब आया है हमारे पास में, महेंद्र दीपेन का राजस्थान से कहना है कि नमस्कार, आपने पूछा क्या कर रहे हो तो मैं तो अभी गोलगप्पे खा रहा हूं और घर जाने वाला हूं। ओहो, सो इन्होंने घर जाने वाला हूं के बाद में एक इमोजी लगाई है, उस इमोजी में तीन दिल हैं और बहुत प्यारा सा शकल है। आए हाय, सो इसका मतलब परिवार के पास जाने का इंतजार सबको रहता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो शिल्पी बनर्जी जी, आपका स्वागत है आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला में। सो दोस्तों, आज गोंडा मैसेज मसाला की इस माइक पर मैं हूँ, आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, आपकी आज की स्पेशल मींस सब्स्टिट्यूट होस्ट। और सच कहूं तो जब मुझे पता चला कि मुझे आज आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की शाम को सिर्फ मसाला ही नहीं, सुपर सुपर सुपर डुपर हिट स्पाइसी भी बनाया जाए। क्या आप सभी तैयार हैं इस गोंडा मैसेज मसाला की शाम को सुपर स्पाइसी बनाने के लिए। सो दोस्तों, आज हम करेंगे गोंडा का अनसुना किस्सा राउंड। सो क्या आप सभी तैयार हैं गोंडा के अनसुना किस्सा राउंड के लिए? अगर हाँ, तो मुझे फटाक फटाक फटाक से चैट बॉक्स में बताइएगा। और कितने लोग गोंडा से हैं वो भी हैंड्स अप कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने मेंशन कर रखा है कि वो कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं या फिर वो गोरखपुर से हैं या फिर वो गोंडा से हैं या फिर वो बाराबंकी से हैं या फिर वो लखनऊ से हैं या फिर वो बहराइच से हैं, वो जहाँ से भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, या फिर वो मुंबई से हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सब्दुल सावन जी मुंबई से आपका स्वागत है। सो क्या आप सभी तैयार हैं हमारे आज के गोंडा स्पेशल राउंड के लिए? हाँ बोलो ना, अरे फटाक से मैसेज करो, इतना देर, इतना मतलब इतना सब्र नहीं है। भले ही मैं कहावत कहती रहती हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है, भले ही सब्र का फल मीठा होता है, वैसे मीठा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं बिना सब्र करे तीखा और कड़वा फल भी खा सकती हूँ, है ना। बार बार मीठा खाना अच्छा थोड़ी है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सब्र करे भी मीठा फल मिल ही जाता है, क्योंकि भगवान के घर देर है दोस्तों, अंधेर थोड़ी है। सो क्या आप सभी तैयार है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तमन्ना अर्जू। अगर नहीं तैयार है तब भी मैं राउंड पेश करती हूँ। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों खुजली हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी इस बात को सोच के, मैंने सोचा जब तक इस बात को मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी तब तक मेरे दिमाग में ऐसे खुजली होती रहेगी, और अगर इतनी खुजली होती रहेगी तो बाय गॉड फिर तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, फिर मेरे बाल रह ही नहीं जाएंगे, मैं तो टकली हो जाऊंगी, है ना। तो मुझे पता है कि आप सब गोंडा की गलियों और वहाँ के हमारे गोंडा के मिजाज को बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ दोस्त मेरे ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे और अभी बोलने जा रहे होंगे, हम तो गोंडा से है ही नहीं, आप तो गोंडा की बातें कर रहे हैं लेकिन हम तो गोंडा की गलियों से रूबरू है ही नहीं। आप गोंडा की गलियों से रूबरू हैं चाहे नहीं है, लेकिन आप गोंडा के लोगों से तो रूबरू हैं। अगर आप गोंडा के लोगों से रूबरू हैं चाहे नहीं है, लेकिन आप अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल से तो रूबरू हैं बखूबी, क्योंकि मैं तो हूं ना खुली किताब। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक हटकर क्वेश्चन, जो शायद आप लोग नहीं सोच रहे होंगे लेकिन मेरे दिमाग में बहुत खुजली हो रही थी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आज आपको गोंडा शहर को एक मसाले का नाम देना हो, समझ में आया, अगर आज आप सभी को गोंडा शहर को एक मसाले का नाम देना हो तो वो कौन सा मसाला होगा और क्यों, ये मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के फटाफट से बताइए। अपने दिमाग को दौड़ाइए, अपने दिमाग की रफ्तार को डबल एंड ट्रिपल करिए जैसे मैंने अपनी जुबान की रफ्तार को करके रखा है, और चैट बॉक्स में फटाफट से अपनी उंगलियों की रफ्तार से जवाब दीजिएगा। और मैं मसाले में ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो क्या हमारा गोंडा तीखा लाल मिर्च है जैसे एकदम
एकदम कड़वा तीखा लाल मिर्च होता है, देखने में बहुत खूबसूरत सा लाल लेकिन अंदर से उतना ही कड़वा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, रीजन भी पूछा है ना मैंने, तो क्योंकि यहाँ के लोग बहुत दबंग हैं, या फिर खट्टा मीठा आमचूर जैसा, क्योंकि यहाँ की यादें एकदम खट्टे मीठे आमचूर की तरह हैं, या फिर गरम मसाला, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिक्स और धमाकेदार है। सो आप सभी आपका मैसेज इसी वक्त टाइप करना शुरू कर दीजिए और चैट बॉक्स में शेयर करिएगा, और फिर उसके बाद में जिसका मैसेज सबसे अच्छा होगा, जो दिल को छू जाएगा, जो वाला मसाला मेरे दिल को छू जाएगा, चाहे वो तीखा लाल मिर्च हो, चाहे खट्टा मीठा आमचूर हो, चाहे गरम मसाला हो, चाहे धनिया पाउडर हो, चाहे फिर इसके बाद में कश्मीरी लाल मिर्च हो, फिर इसके बाद में चाहे काली मिर्च हो, चाहे लौंग हो, चाहे इलायची हो, जितने भी मसाले दुनिया में हैं आप उनमें से कोई भी बता सकते हैं, और इसके साथ में रीजन भी लिख सकते हैं, जिसका रीजन, जिसका मसाले का नाम, जिसका शहर का नाम सबसे खूबसूरत लगेगा मुझे, मैं उसको एक सरप्राइज डेडिकेशन जरूर दूंगी। तो देरी किस बात की है, आप लोग फटाफट से अपना मैसेज यहाँ चैट बॉक्स में शेयर करिए, और चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम सभी फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी नहीं नहीं नहीं गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

होना मैसेज मसाला वीडियो आ जाए, सिंपल हो इज नॉट सो सिंपल। हाँ, सो पब्लिक बहुत ही ज्यादा रंगीन हो चुकी है, खुशनुमा हो चुकी है और खुशियों से भर चुकी है। सुकून तो कहीं ना कहीं से आ ही गया है। और थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतने एंगेजमेंट के लिए, ऑल ऑफ यू, लव यू लव यू लव यू सो मच। सो दोस्तों, मैंने अभी आप सबसे पूछा था कि गोंडा को अगर किसी मसाले का नाम देना होगा तो आप सभी क्या देंगे। सो वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, क्या शानदार जवाब आ रहे हैं हमारे लिसनर्स की तरफ से। अभी मैं आपको सबको मैसेजेस पढ़ के सुनाती हूँ। सविता शास्त्री जी का कहना है कि लौंग, गोंडा को अगर नाम देना हो मसाले का तो लौंग, जो स्वास्थ्यवर्धक भी है और सुगंधित भी है। फिर उसके बाद में तमन्ना हरजू का कहना है कि मेरे हिसाब से तो नमक की तरह है गोंडा, क्योंकि हर चीज फिट बैठता है। अच्छा जी, गोंडा, हाँ हाँ गोंडा। और तमन्ना आरजू है मलिहाबाद लखनऊ से। सबलो सावंत का कहना है कि मेरे हिसाब से शाही इलायची, जो खाने में भी स्वाद हो और सुगंधित भी होती है। और महेंद्र दीपेन का राजस्थान से कहना है कि मेरे हिसाब से मैगी मसाला होना चाहिए, क्योंकि बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो वैसे गोंडा किसको बनाता है, गोंडा में क्या बनने में टाइम नहीं लगता है? आखिर आपने मैगी मसाला को गोंडा, मतलब मैगी मसाला वाला नाम गोंडा को क्यों देने को सोचा? मैगी मसाला तो जल्दी में बन जाता है, लेकिन इसका गोंडा से क्या कनेक्शन, ये वाला लोचा मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अनिल शास्त्री जी का कहना है गोरखपुर से कि इलायची, जो कि माउथ फ्रेशनर भी है। सो मेरे लिसनर्स ने बहुत ढेर सारे जवाब दिए हैं। और एक का तो कहना है कि दशहरी आम, खाने में भी और खुशबू भी मजेदार। हाँ, सब बहुत सारे लिसनर्स ने मेरे जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। आप लोग का ये रिएक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं जो अभी चुपके चुपके कोने में बैठे सोच ही रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी चैट बॉक्स में उनका लिखने का मन नहीं हो रहा। तो भाई किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, फिर क्यों सोच रहे हो? मैं जहां रहूं ना, जहां जिस सिंपल नॉट सो सिंपल हो, वहां दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस दिल से काम लेने की जरूरत होती है, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दिमाग को रेस्ट दो ना, सिर्फ सोते समय ही रेस्ट देना जरूरी नहीं है, दिमाग को वैसे भी रेस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए थोड़े

बहुत काम हमें दिल से ले लेने चाहिए। सो अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे मैसेज करना चाहिए तो आपको मैसेज कर देना चाहिए। सो चलिए चलते हैं। अभी मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग का मैसेज आएगा और जिसका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको मैं एक सरप्राइज डेडिकेशन दूंगी, है ना, मैंने कहा था। लेकिन मुझे तो सबके मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं तो मैं तो सबको सरप्राइज डेडिकेशन दूंगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये रेडियो सिर्फ गानों का नाम नहीं है, ये उन एहसासों का नाम है जो हम अक्सर कह नहीं पाते हैं। सो आज का ये डेडिकेशन उन सभी के लिए है जो दिन भर के काम से, दिन भर की भाग दौड़ से अपने खास लोगों को समय नहीं दे पाते हैं। भाग दौड़ में इतने उलझे होते हैं, इस दुनिया में इतने खोए होते हैं कि खास लोगों को थैंक यू और लव यू कहना भूल जाते हैं। सो आज का ये गाना मैं इन सभी दोस्तों को समर्पित करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ, जो आप सभी को खुश रखे और आप सभी के चेहरे पर इस शाम के टाइम में इस गुंडा मैसेज मसाला की महफिल में थोड़ा सा रोशन कर दे, थोड़ी सी मुस्कान ला दे, थोड़ी सी खुशियां बिखेर दे। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो आप किसी खास को गोंडा मैसेज मसाला के जरिए कहना चाहते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, परिवार वाले हों या कोई ऐसा जिसे आप बस एक हेलो कहना चाहते हैं, तो अभी अपना मैसेज भेजिए और मैं आज रात में उन सभी मैसेजेस को, उन सभी संदेशों को गोंडा की हवाओं में घोल दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये शाम अभी बाकी, हर धम्मा का अभी शुरू हुआ है। I mean, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो चमन। हमारे महफिल के चमन, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। और ये गाना है आप सभी के थकान के लिए, आप सभी की भाग दौड़ के लिए। इस गाने से ही कुछ सीख लो ना। एक चीज तो मैं कहना भूल ही गई कि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन का गोंडा मैसेज मसाला, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

0: मैसेज मसाला विद योर सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। दिल को आजाद करने का, दिल को खुश रखने का कितना ज्यादा मंत्र मैंने दे दिया, कितने ज्यादा मैंने गाने सुना दिए। अब तो दिल को खुश कर लो ना। और दिल को खुश करके मेरे बहुत सारे फ्रिक्वेंसी वाले लिसनर्स ने मेरे पास कॉल भी किया था। सो मैं अब उनसे कहना चाहूंगी कि उस टाइम तो मैं म्यूजिकल ब्रेक पे थी, मैं आपके दिल की सुन सकती थी, लेकिन मेरे लिसनर्स नहीं सुन सकते थे ना। और ढेर सारे जो हमारे पास में दोस्त थे जो सिर्फ दिल की सुनते हैं दिमाग की बाद में। और इस महफिल में तो खास तौर पे आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनते हैं। सो मेरे पास में बहुत सारे लिसनर्स हैं, तो उन सबको मैं सुनाना चाहूंगी आपकी बातें, आपकी जज्बातें और आपके शब्दों को। सो फटाफट से आप लोग अब कॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, हमारे पास में कॉल आ चुकी है। सो क्यों ना हम कॉल को कनेक्ट करते हैं। कॉल डिसकनेक्ट भी हो चुका है शायद, नहीं डिसकनेक्ट नहीं हुआ है, डिसकनेक्ट नहीं हुआ है। हमारे पास में कॉल आई है और गोंडा से कॉल नहीं आई है, कहीं दूर से कॉल आई है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
1: हेलो,
0: आपका क्या नाम है?
1: जी मैं त्रिपुरा से अविनाश तरी बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा।
0: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहे हैं अविनाश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से?
1: जी जी बहुत बढ़िया है। और ज्ञानस्थली 89.6 एफएम में मैं पहुंच चुका हूं त्रिपुरा से, देखिए। और आज मैं एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूं।
0: आप सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज में? ओ माय गॉड, सच्ची?
1: बिल्कुल।
0: कौन सा देशभक्ति वाला गाना सुनाना चाहेंगे? पहले आप ये बताइए कि आप क्या देशभक्त, आप कुछ आप करते क्या हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं इस चीज को।
1: अच्छा ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। मेरा जो है लोगों की घरों की सुरक्षा करने का दायित्व है, मतलब कि मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ और ग्रिल वगैरह बनाते हैं।
0: ओह वाओ ग्रेट, तो अब सुना दीजिए आप अपना गाना।
1: जी जी ठीक है, तो सुना देते हैं
0: जी।
1: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती वास्ते गगन। इसने ही सिखाए हमको जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपनी देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जी
0: ओहो बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: बिल्कुल
0: जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: जी जी बिल्कुल, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए अभी आने वाला वक्त जो है अभी चल रहा है और बारिश का मौसम आ रहा है, तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि देखिए अब हम कभी रात में अगर बाहर निकलते हैं तो चप्पल और टॉर्च मतलब लाइटर वगैरह कुछ हम लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए अभी बारिश के मौसम में बल्कि जो बेशक जो जानवर होते हैं या फिर सांप वगैरह होते हैं बिच्छू वगैरह, तो हम सबको अगर दिखाई नहीं पड़ता तो क्या होता है, अगर चप्पल पहने होंगे तो हो सकता है हम लोग पैर में वो जख्मी ना कर पाए, और अगर टॉर्च वगैरह होगा तो वो जैसे ही प्रकाश हम लोग डालेंगे तो हो सकता है कि उस प्रकाश के देखते ही वो लोग भाग जाए या फिर हमें वो दिखाई पड़ जाए तो हम सावधान हो सके, इसलिए हम सभी को बाहर निकलते समय इस सब को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का।
0: वाह अविनाश जी, आप तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, आप तो सबकी सोच के चलते हैं। अगर मैसेज भी देने की बात हुई तो आपने सही कितनी अच्छी बात कही है कि बारिश शुरू हो चुका है और हमें ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अविनाश तेली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अविनाश तेली थे त्रिपुरा से। अब चलिए एंजॉय करते हैं क्या एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेकिन उसके पहले हमारे पास में आ चुका है एक कॉल और, देखते हैं इनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, नमस्कार, आपका नाम?
1: अरमान।
0: अरमान फ्रॉम पटेल नगर गोंडा, नो
1: जी।
0: तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो गोंडा से ही हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि गोंडा का अगर आप नाम बदलना चाहें, बदलने का मौका मिले आपको, तो आप अगर गोंडा का नाम बदलेंगे तो आप क्या कौन से मसाले का नाम रखेंगे?
1: गोंडा का नाम बदल के कोई और नाम रखना सही है, क्योंकि गोंडा सब कुछ लोग समझने में थोड़ा वो रखते हैं,
0: क्या
1: कंफ्यूजन होता है, मतलब समझ नहीं पाते जल्दी लोग।
0: अच्छा, मैं तो बोलती हूँ तो तुरंत समझ जाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं
1: ऐसा भी नहीं है, जिस लोग गोंडा का मजाक उड़ा लेते हैं ना, ये बात है।
0: ऐसा कैसे कौन बोलता है, उसको मेरे पास लेके आओ जरा। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगी कौन सा मैं नाम बदल ही सकती हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि अगर कोई मसाले का नाम रखना हो, किसी मसाले का, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, जितने भी मसाला होते हैं इस टाइम पे, तो मुझे मसाले का नाम ही नहीं याद आ रहा है, उनमें से अगर नाम रखना हो तो कौन सा नाम रखेंगे और क्यों? अच्छा, तो अगर आपको बदलना हो, जैसे आपका कहना है कि गोंडा का नाम सुन के बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा नाम होना चाहिए जिसका मजाक नहीं उड़ाएंगे लोग?
1: अब तो सोचना पड़ेगा,
0: तो थोड़ा सा सोचो, दिमाग को जोर दो, मैं तीन गिनती तक का काउंटिंग करूंगी, तब तक सोच लो, है ना? सोचो अगर आपके दिमाग में, अगर देखिए मेरे दिमाग में ये आया कि गोंडा का नाम ऐसे मसाला रखना चाहिए, तो मैंने भी तो सोचा होगा हाय हाय ये मसाला एकदम मैच करता है, तो आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ गोंडा के नाम का सब ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, ये नाम होता तो कितना बढ़िया होता, कितना फिट बैठता अपने गोंडा पे, एकदम जचता, है ना? तो क्या सोचते हैं?
1: गोंडा का नाम हमें तो मोटू पतलू में जो कार्टून आता है वो फुरफुरी नगर के नाम से होना चाहिए।
0: ओहो, फुरफुरी नगर, और आप क्या हैं फुरफुरी नगर के? कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है मोटू पतलू में?
1: डॉक्टर झटका।
0: चिंगम सर,
1: डॉक्टर झटका जो?
0: ओहो, डॉक्टर झटका, मैच भी कर रहे हो आप उनकी पर्सनालिटी से थोड़े थोड़े, अरे वाह। सो हमने बात की है अरमान से, जो कि है अरमान पटेल नगर गोंडा से।
1: आपको थोड़ा एक सॉन्ग सुनाना चाहते
0: हैं? हाँ बिल्कुल सुनाइए, जल्दी सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक से दूर होके सुनाइए, आपकी आवाज में बहुत शोर हो रहा है।
1: चमन के फूलों की मुस्कान, चमन के फूलों की मुस्कान, यहाँ की हरियाली खलियान कैसे भू

0: हमारे देश की है पहचान, हमारे देश की है पहचान। जहाँ पर गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल जाऊँ। वतन के जर्रे जर्रे से अकीदत हो तो ऐसी हो, वतन के जर्रे जर्रे से अकीदत हो तो ऐसी हो। तिरंगे से लिपट जाऊं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मोहब्बत की है जो पहचान, वो ताज महल क्या आलीशान। मोहब्बत की है जो पहचान, वो ताज महल आलीशान। हमारे लाल किले की आन, हमारे लाल किले की आन। तिरंगा मेरे वतन की शान, मैं कैसे भूल जाऊं।
1: तिरंगा मेरे वतन की जान, मैं कैसे भूल जाऊं। आपने तो बहुत बढ़िया देशभक्ति वाला गाना है आज। सबके सब देशभक्ति वाले गाने सुना रहे हैं क्या? मतलब कुछ ऐसे सरप्राइजिंग सा लग रहा है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। चलिए चलते हैं, रुक करते हैं अब अपनी फरमाइशी के चटपटे, फरमाइशी क्यों दोस्तों, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, मैं सच में भूल जाती हूँ कि मैं गोंडा मैसेज मसाला शो कर रही हूँ। मतलब देख रहे हैं आप मुझे। कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं मैं ये ना भूल जाऊँ कि मेरा नाम सिंपल है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कहीं मैं ये ना भूल जाऊँ कि मैं किस शहर से हूँ, है ना, अगर मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ। फिलहाल अपनी भुलक्कड़पन को रखती हूँ मैं साइड में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नीना, स्वागत है आपका। और इसी के साथ में रईस जी गोंडा से आपका भी स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिलहाल चलते हैं, अब रुक करते हैं हमारे आज के गुंडा मैसेज मसाला के नेक्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी होगा बहुत ही अतरंगी, बहुत ही यूनिक, जो मेरी मुझे रात में सोने नहीं देता था। जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था वो क्वेश्चन तो मेरे सर में खुजली करता था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना मेरे पास में, अगला क्वेश्चन, ये रात में मुझे सोने नहीं देता है। झूठ बोल रही हूँ दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों दोस्तों दोस्तों, गोंडा से लेकर दिल्ली की भागदौड़ तक और मुंबई की बारिश से लेकर पहाड़ों की शांति तक, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो एवरीवन। सो आप सभी अब अगर गोंडा मैसेज मसाला में आ चुके हैं और आप सभी ने आज के दिन को अपने अपने तरीके से बिल्कुल एंजॉय किया होगा, बिल्कुल जिया होगा, लेकिन अब वक्त है उस रिलैक्स वाले पॉइंट का, उस सुकून वाले पॉइंट का, उस सुकून वाले समय का, उस शांति वाले समय का, जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता है। सो अगर उस समय में है और उस महफिल में भी हैं, तो क्यों ना आज हम ये शहर, ये राज्य और ये मोहल्ले की बातें छोड़कर इन सरहदों को मिटाकर एक कॉमन कनेक्शन ढूंढते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं उस कॉमन कनेक्शन को ढूंढने के लिए आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनिल वर्मा जी सैदापुर से, स्टे ट्यून्ड। और मान लीजिए आप सभी, अब मानना तो पड़ेगा, अब अगर आ गए हैं, जैसे मैथ्स में हर एक चीज हमको मानना ही पड़ता है, क्यों मानना पड़ता है मुझे नहीं पता। एक्स का मान ये होगा, वाई का मान ये होगा, वाई ये होगा, वाई पर होगा। मुझे तो ये है कि अगर ये जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं, तो क्यों है, मुझे सब जगह क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अगर मैं दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं, अगर कोई दुखी है तो क्यों दुखी है, अगर स्ट्रेंजर दुखी है तो क्यों दुखी है, मुझे वहां भी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो मैं कैसे मान लूं कि मैथ्स में एक्स का मान ये हो जाएगा, वाई का मान ये हो जाएगा। आप लोग पता नहीं कैसे मान लेते हो, लेकिन आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, मेरे गले के नीचे ये बात नहीं उतरी है दोस्तों। सो फिलहाल मेरे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। सो अभी मैं कहती हूं कि मान लीजिए कि आप अपने शहर के, चाहे जहां से सुन रहे हैं आप, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, फरीदाबाद, बाराबंकी, मलिहाबाद, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, आप वहां की सड़कों पर निकले हैं, आप जा रहे हैं, अचानक से जाम लग जाए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने शहर के सड़कों पर जा रहे हैं और वहां अचानक से जाम लग जाए और आपकी गाड़ी के बगल में कोई अपना दोस्त दिख जाए, तो आप उस जाम का फायदा उठाकर अपने उस प्रिय दोस्त से, जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, उससे क्या बात करना चाहेंगे? आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन ए, पुरानी कोई याद ताजा करेंगे। ऑप्शन बी, भाई चाय पीने चल कहीं चाय पीते हैं, कोई नई नई बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। या फिर अगर आपके पास में कोई चाय पीने वाली परफेक्ट जगह होती है, उसका आपने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, तो आप वहां जाएंगे कि चल वहां की चाय पीते हैं, बहुत बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन, या फिर आप उस जाम का ही मजाक बनाने लगेंगे। तो आप इन तीनों में से कौन से और वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जल्दी से बताइए, ए बी या सी, लिखकर भेजिए। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि गोंडा की कौन सी सड़क पर आप सबसे ज्यादा जाम झेलते हैं, या फिर आपको अपने शहर के कौन सी सड़क पर, आप गोंडा से हैं, कहीं से भी हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक, आपको ट्रैफिक इशू होता है, आप सोचते हैं कि उस जगह ना जाना हो ठीक है, लेकिन उस जगह जाकर ये जाम टॉलरेट करना, ये ट्रैफिक टॉलरेट करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। सो आप जल्दी से जल्दी आप मुझे ए बी सी चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिलहाल चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। म्यूजिकल ब्रेक के बाद में फिर से वापस आएंगे आपके अपने गुणा मैसेज मसाला शो में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है, पुरानी यादें ताजा करेंगे उसी जाम में, या फिर ऑप्शन बी है, आप चाय पीने जाएंगे, या फिर ऑप्शन सी है कि आप उसी ट्रैफिक का मजाक बनाने लगेंगे। जल्दी से लिख के बताइएगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि अगर आपको आपके शहर में, आप किसी भी शहर में हैं, उस शहर में अगर ट्रैफिक जैम हो गया है, आप रास्ते में जा रहे थे और आपको बगल में उसी ट्रैफिक जैम में आपको आपका एक पुराना दोस्त मिल जाए, तो आप उसके साथ में क्या करेंगे? मतलब तीन ऑप्शंस दिए थे मैंने आपको। एक ऑप्शन था कि आप उसी जाम में उस दोस्त से बातें करने लगेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करने लगेंगे, और फिर दूसरा था कि आप चाय पीने जाएंगे, और तीसरा ऑप्शन था कि आप उस ट्रैफिक का मजाक बनाने लगेंगे। सो उसी के साथ में हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने जवाब दिया है। किसी का कहना है ऑप्शन ए कि हम उसी ट्रैफिक में रुक के यादें ताज़ा करेंगे, और महेंद्र का कहना है ऑप्शन बी क्योंकि चाय पीते पीते ही यादें ताज़ा कर लेंगे। और आपने एकदम सही कहा महेंद्र जी, तीनों ऑप्शन में सबसे परफेक्ट ऑप्शन बी ही था, चाय पीना, क्योंकि अगर आप चाय पीने जाते तो आपको इतना समय मिल जाता कि आप उस ट्रैफिक के बारे में भी बात कर लेते, उस ट्रैफिक का भी मजाक बना लेते, आप अपने पुराने और दोस्तों का भी मजाक बना लेते, और आप अपनी पुरानी यादें क्या, नई यादें क्या, सब कुछ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं अगर आप किसी चाय ब्रेक पर गए हुए हैं, टी ब्रेक पे गए हुए हैं। सो दोस्तों चलिए चलिए चलिए, आप लोग का ये शानदार जवाब देख के मुझे बहुत मजा आया, और आप लोग को इतना ज्यादा एक्टिव देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। सो अब वक्त हो चला है आपकी इस गुंडा मैसेज मसाला की महफिल को यहीं पे स्टॉप करने का, और आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल को स्टार्ट करने का। सो क्या आप सभी तैयार हैं? आई नो आप सभी तैयार हैं, और आपके फरमाइशी गीतों को भी मैंने देख लिया है, बहुत सारे फरमाइशी गीत आ चुके हैं ऑलरेडी, और मैं ही अपने ट्रैक पे हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हूँ, आई नो, लेकिन जब ये भी अपने को देखना है, वो भी अपने को देखना है, तो सब कुछ अपने आप अपने हिसाब से देखने में कितना मजा आता है ना दोस्तों। सो चलिए अब वक्त हो चला है आप लोगों से आपके इस गुंडा मैसेज मसाला की महफिल से अलविदा लेने का। लेकिन दोस्तों एक आरजे के तौर पर आज मुझे बस आपसे बातें करना ही काफी नहीं लगा, मुझे लगा कि आप लोगों की पसंद, आपकी पसंद के गाने और आपके एहसास, इन सब को एक खास जगह मिलनी चाहिए। सो क्यों ना अगर आप चाहें तो ऐसी ही खट्टी मीठी बातों को, ऐसी ही कड़वी अतरंगी बातों को, यूनिक कनेक्शंस को हम फरमाइशी में अपने प्ले कर सकते हैं। फिलहाल अभी अपने इस गोंडा मैसेज मसाला की महफिल से मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सभी अपने पसंदीदा गीतों को अब टटोल सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा गाना ला के चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और हम सभी इंजॉय करेंगे आप सभी के पसंदीदा गीतों को। सो मिलते हैं इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद में। इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद में हम चलेंगे अपने फरमाइशी महफिल में, तो बोरिया बिस्तर बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि गोंडा मैसेज मसाला की महफिल से उठने का वक्त हो चुका है, फरमाइशी की महफिल में जाने का वक्त आ चुका है। आप लोग को मेरे साथ में गोंडा मैसेज मसाला का सफ़र कैसा लगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मैं कहती भले हूँ कि मुझे तारीफ़ पसंद नहीं है, मुझे तारीफ़ बहुत पसंद है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। फिर कभी अगर कुदरत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे इस गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में अपने दिल की बातें करने के लिए, जहां बातें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ समय ही समय होता है, बहुत समय होता है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो पर मायशी में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल, जरूर बताइएगा बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आज की रात है कुछ खास। आज न सिर्फ हवाओं में म्यूजिक है बल्कि आई थिंक सो कि हम लोग के दिल की धड़कनों में भी म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी साथ में मिक्स हो रही है, साथ में मिक्स एंड मैच भी हो रही है। सो आज की शाम को शुरू करने से पहले एक ऐसी बात जो रूप को छू जाए। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का कहना है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि वो औकात में रहे। बिल्कुल इसी अंदाज के साथ में हम ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे, क्योंकि आज की ये रात है उन लोगों के लिए जो अपनी पसंद को ही अपनी पहचान मानते हैं, अपना स्वाभिमान मानते हैं और अपना आन मानते हैं। सो गोंडा से लेकर दुनिया के हर उस कोने तक जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका आपके अपने शो पर मायशी में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा, एकदम से महफिल से मिक्स एंड मैच होने वाला गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, अनिल वर्मा सैदापुर से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, उदालक शर्मा मनकापुर से, नवीन राजपूत जी एमपी से, मुस्तफा साउदी से, जुगल किशोर वर्मा मीन्स जग्गू दादा जी एमपी से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, तमन्ना आरजू एन रूपाली दीपाली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, जिशान गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से एंड नीना वेलकम इन योर शो एंड नागेश्वर धाकर आई एम वेटिंग फॉर यू स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, क्योंकि अब तो वक्त हो ही चला है, वक्त हुए तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन फिर भी स्टिल आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल का अब वक्त हुआ है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश और पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों प्रमुख कुमार जी की लुधियाना से। प्रमुख कुमार जी इतने डिवोशनल हैं और इतना ज्यादा वो इस महफिल से अटैच्ड हैं, इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि वो चाहते ही नहीं कि इस महफिल में कोई नेगेटिविटी आए, इसीलिए पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले फरमाइश करते हैं और सबसे पहली फरमाइश में उनका गाना होता है डिवोशनल। सो आज के दिन सोमवार की शुरुआत करेंगे, सोमवार के फरमाइशी की महफिल की शुरुआत करेंगे हम गणेश आरती से। ओह माय गॉड, सो अनुराधा जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ प्रमुख कुमार की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को, नगमों को, गानों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

की पार्वती पिता महादेवा और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हमने एंजॉय किया है ये डिवोशनल सॉन्ग प्रमुख कुमार की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम मानो या ना मानो, पर प्यार इंसान की जरूरत है। हमने इंजॉय किया है ये वाला नगमा हमारे अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से। और इस गाने को सुनने के बाद में हमारे एक लिसनर हैं, उनका कहना है कि प्यार से ज्यादा खाना इंसान की जरूरत है, लेकिन आपको सिर्फ पेट भरने के लिए खाना मिलता रहे और आपको प्यार कभी जिंदगी में मिले ना, प्यार जैसे प्यार का एहसास क्या होता है पता ही ना हो, तो क्या आपके लिए खाना ही इनफ होगा? इट्स कुमार, मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। जी हाँ दोस्तों, इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, और टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली पालतू। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट, तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर नगमा हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सुपर डुपर डुपर हिट, तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट नगमा, हमारे हाई एनर्जी हाई बीट इट्स कुमार की फरमाइश जो की है एमपी रीवा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नहीं तैयार होंगे तो हम कैसे तैयार होंगे? आप तैयार हैं तभी तो हम हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहित वर्मा, आपका स्वागत है आपके अपने शो में। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और हमारे मोहम्मद मुशीब को, हमारे दिल पे काशिक मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खनखन करती है। सो एंजॉय करते हैं अभिजीत जी की और अलका याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर हिट नगमा क्रोध मूवी का, क्रोध पिक्चर का गाना दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हमारे एक लिसनर का कहना है अनिल वर्मा जी का सैदापुर से कि दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है साहेब। बिल्कुल सही कहा। जिसने पेट नहीं देखा वो दिल कहाँ से देख लेगा। पॉइंट। स्टे ट्यून्ड।

से फरमाइश हमारे पास में आई भी थी मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने का? बढ़ेंगे बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे बिल्कुल चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि ये तो फरमाइशों की महफिल है और फरमाइशों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, है ना दोस्तों। सो हमें भी ऐसे ही चलते रहना है जैसे ये जिंदगी है, जिंदगी का नाम है चलते रहना चलते रहना। और हम चलते रहते हैं भले ही गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेकिन चलते तो हैं ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना मेरे महबूब तुझे सलाम। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हाँ दोस्तों, मेरे महबूब तुझे सलाम। हमने एंजॉय किया है नगमा मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में हमारे महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सो एंजॉय करते हैं ये 70s का सुपर डुपर हिट नगमा AI वर्जन में सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना, बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभा हमसे, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, आदमी खिलौना है मूवी का, हमारे नवीन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उस्मान खान।

निगाह हमसे हो जाए ना कोई गुनाह हमसे, दिल दिल दिल हमने इंजॉय किया है। आदमी खिलौना है का ये गाना नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर जो कि है MPC। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफ़ा जी की सऊदी से। मुस्तफ़ा को सऊदी से सुनना है गाना भीगी भीगी रातों में, इसे इंजॉय करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा बरसात की प्लेलिस्ट वाला नगमा हमारे मुस्तफ़ा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई भी थी मुस्तफ़ा जी की सऊदी से, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है मोहब्बत है क्या चीज़। सो इंजॉय करते हैं प्रेम रोग पिक्चर का ये वाला गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत है क्या चीज़ हमें भी बताओ। हमने एंजॉय किया है ये नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में दोस्तों, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। मिलते हैं सीधे 9 बजे। पेट पूजा जिन लोगों ने नहीं की है, फटाफट से इतनी देर में पेट पूजा करके आना, फिर हम लोग ढेर सारा एंटरटेनमेंट फिर से करेंगे, ढेर सारी खुशियाँ फिर से बिखेरेंगे और ढेर सारा सुकून फिर से कलेक्ट करेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना दिल तोड़ने वालों की महफिल में। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में शायद ये दर्द भरा वाला नगमा, ओल्ड इज गोल्ड नगमा, हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मालिका संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
5: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
6: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
5: Other operating income is not included.
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
9: गुड इवनिंग।

आपका नंबर आज से तेरा हो गया, आपका भी हो गया। एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल करती है आपके अपनी आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल आपके अपने शो परमाइशी में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिंपल से बस और बस आपके नाम से। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या महफिल में आने में देरी लगा दी मैंने, या फिर आप सभी भी एकत्रित नहीं हुए हैं? अपनी मौजूदगी मुझे मतलब दिखा दीजिएगा, बयां कर दीजिएगा चैट बॉक्स में इन्वॉल्व होके। एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सविता दुबे जी आपका स्वागत है, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की, गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना सावन आया बादल छाए। तो साजन का घर मूवी का ये गाना कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में हम इंजॉय करेंगे। ये हाउ रोमांटिक नगमा है सुरेंद्र यादव जी की तरफ से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को इंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को इंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों

सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले। हमने एंजॉय किया है ये नगमा सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो की है गौरा चौकी से। सो क्या आप सभी तैयार है हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ चलने के लिए? अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राही की, नवाबों के शहर लखनऊ से। नवाबों के शहर लखनऊ से राही को सुनना है गाना देखें अपनी किस्मत में काटे हैं के फूल। सो एंजॉय करते हैं आई मिलन की रात का ये सुपर रोमांटिक नगमा राही की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है रूपाली एंड दीपाली की गोंडा से, और रूपाली एंड दीपाली को सुनना है गाना गंगा के किनारे बैठ के। इंजॉय करेंगे हम रूपाली दीपाली की फरमाइश, उसके बाद में हम इंजॉय करेंगे मुमताज़ अंसारी जी की फरमाइश को, और उनको सुनना है गाना इतना मैं चाहूँ तुझे। अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, इन तीनों की फरमाइशों को एंजॉय करेंगे, और इसी के साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल फिर उसी समय पर आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड। ऑलवेज लव योरसेल्फ, बाय बाय।

0: आग नफरत की हमारे शहर में लग न जाए, आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी हाँ, इस शाम को बेहतर बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं, कुछ आपसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी शायर को लाते हैं आपके बीच, किसी ऐसे दानिश्वर व्यक्ति को लाते हैं जिसकी लेखनी ने गजलों की दुनिया में, गीतों की दुनिया में कमाल किया हो। जी हाँ, आज किसके बारे में बात करने वाले हैं ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं भाई हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं। जी हाँ, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, ये गज़ल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। तो जी हाँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो जी हाँ, चैट बॉक्स में ज़रा गुड इवनिंग लिखिए। जी हाँ, शाम की शुरुआत बेहतर हो सके, हमारे साथ तमन्ना आरजू जी उपस्थित हैं, उनको दिखाई पड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा जी चौधरी से हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या, आदाब आप सभी को, और प्रमुख कुमार जी ने कहा आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप आ चुके हैं, और जी चमन है तो ये कोई भाई, चमन भी आ गई है, क्या बात है भाई, और प्रमुख कुमार जी हैं, और फिर भाई महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से हैं। जी आइए, अब आपको ले चलते हैं, एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं, और गज़ल के बाद आते हैं ये बताने कि आज किस कलमकार के बारे में आपसे करने वाले हैं बातचीत। फिलहाल सुनिए ये प्यारी सी गज़ल, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। और ये इंतजार साहब होता है उन लोगों को जो जानते हैं कि हाँ, ये जो मोहब्बत है ये संजीदगी बहुत है, इसमें इसमें बारीकियां बहुत हैं, इसमें उलझन बहुत है। और आज जिस शायर को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। अपने आप में एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत। उर्दू अदब की दुनिया ने उनका नाम बड़े अदबो एहतराम के साथ लिया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो गजलें थी वो घर के बाहर की बात करती थी, चौखट के बाहर की बात होती थी। घर के महबूबा की बात हो रही है, चांद की बात हो रही है, ख्वाबों की बातें हैं, ख्यालों की बातें हैं, इश्क है, मोहब्बत है। लेकिन जो हमारे परिवार की समस्याएं हैं, जिनसे हम रोज दो चार होते रहते हैं, उन पर शायर की निगाह कम गई। हमारी आम जिंदगी जो प्रभावित होती है, तो इसका बीड़ा उठाया। सबसे पहले तो चौखट के अंदर जिस शायर ने कदम रखा, उनका नाम मुनव्वर राना, जिन्होंने माँ पर गजलें लिखी, जिन्होंने बहनों पर गजलें लिखी, जिन्होंने ये कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। तो जिन्होंने बुजुर्गियों की अहमियत बताई, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो चौखट के अंदर की बात करने वाले शख्स जिन्होंने चौखट के अंदर की बात की, उनका नाम मुनव्वर राना। और जिन्होंने जिंदगी के हर फलसफे को छुआ, हर मौजूआत को छुआ, शायद ही कोई ऐसा पहलू बचा हो, चाहे वो घर की बात हो, परिवार की बात हो, घर के मुखिया की बात हो, सियासत की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, देश की बात हो, या अकेलेपन की बात हो, तन्हाई की बात हो। मैं देखता हूं कि उनकी गजलें इन सबको छूती हुई निकलती हैं। और उनका नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी होता है, जिन पर न जाने कितने बच्चे आज की डेट में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वही सोचे बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का, वही सोचे बहुत छोटी, वही दावा बड़ाई का, हम ही मौका दिए जाते हैं अपनी जग हसाई का। वो अपनी गुफ्तगू, गुफ्तगू मतलब बातचीत, वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता। ऐसे करेक्टर आपको अपने आसपास मिल सकते हैं। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहां मेरी बड़ाई का। यानी अगर कहीं मेरी बात चल रही है और उसको लगता है कि मेरी बड़ाई हो जाएगी, तो वो बातचीत को बदल देते हैं। हो सकता है ऐसे लोग आपसे भी मिले हों। वो अपनी गुफ्तगू में ऐसा रुख आने नहीं देता, कोई पहलू निकलता हो जहां मेरी बड़ाई का, अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी। अब देखिए सियासत पर आ गए। अदालत कैसे बिक जाती है दुनिया जान सकती थी, दिया जाता हमें भी मौका एक सफाई का।
अगर हमें अपनी बात कहने दी होती आपने तो शायद मैं ये बता पाता कि जो ये अदालत में हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ है। और आवश्यक नहीं है कि जो बड़ा है वो जो निर्णय कर दे वो अंतिम निर्णय हो सकता है कभी कभी छोटे बहुत अच्छा निर्णय करते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक लोक कथा हमको याद आ गई जब बात निर्णय पर आई। तीन ठग थे और तीनों ठग ठगी करके अपने घर जा रहे थे। रात हो गई थी, जंगल था, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, मिल जाए तो हमारी जो दौलत है ये सब छिन जाए। तो रास्ते में उनको एक घर दिखाई पड़ा, झोपड़ी। तो उन्होंने खटखटाया, आवाज दी, तो घर के बाहर एक बुढ़िया माँ निकली। तो निकली जब वो, तो उन्होंने कहा कि माँ हम लोग जो है जा रहे हैं और ये पोटली है धन की, इसको अपने पास रख लीजिए, जब हम तीनों आएंगे तो ये पोटली दीजिएगा। तो बुढ़िया माँ ने कहा ठीक है बेटा, रख लेती हूँ, कहीं शाम का समय है, रात का वक्त है और कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, कुछ दुर्घटना, कोई छीन ले। बेचारी सीधी सादी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा रख दो। अब वो तीन लोग जब आगे बढ़े, तीनों ठग, तो उधर से एक व्यक्ति जो है वो दही बेच करके अपने घर लौट रहा था। उन तीनों को भूख भी लगी थी, क्या खाएं क्या खाएं। तो दही वाले से पूछा कि दही है, तो उसने कहा है। कहा लो भाई पिलाओ, तो उसने कहा भाई बर्तन नहीं है हमारे पास। तो तीन ठग में से दो ठग वहीं रह गए और एक ठग चला गया बुढ़िया माँ के पास, और बजाय बर्तन मांगने के उसने कहा कि वो जो पोटली हम लोग रख कर गए हैं अभी पैसे वाली, वो दे दीजिए। दूर वो दोनों ठग खड़े थे। तो जब बुढ़िया ने मैंने इशारे से पूछा कि दे दें, तो उन्होंने हाँ इशारे से कह दिया दे दीजिए। अब उनके सोचने का मतलब था गिलास मांग रहे होंगे, कोई पात्र तो मांग रहे होंगे। उसने पोटली उठाई और चलता अपना भाग गया। अब वो दोनों ठग बुढ़िया के पास पहुंचे, कहे कि आपने उसको पोटली क्यों दी? ने कहा भाई आपने कहा, कहीं हमने ये कहा था कि पोटली तभी दीजिएगा जब हम आ जाएं, तीनों आए, आपने अकेले को पोटली दी, आपको हमारा हर्जाना भरना पड़ेगा। मामला इतना बढ़ा कि राजा की अदालत में पहुंच गया। तो एक तरफ वो दोनों ठग, एक तो फरार हो गया, चंपत हो गया। तो दोनों ने कहा कि महाराजा साहब, ऐसा हमने इनसे कहा था कि हम तीनों आएंगे तो पोटली दीजिएगा, इन्होंने एक को दे दी। तो राजा ने पूछा बुढ़िया अम्मा से कि क्या अम्मा ये बात सही है? तो उसने कहा हाँ सही है। उन्होंने कहा अरे आपने ऐसा कहा है और आप मंजूर कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं, तो आपको अपनी जमीन बेचकर इनको पैसा देना पड़ेगा, राजा का निर्णय। बुढ़िया बेचारी बड़ी उदास, क्या हो गया क्या हो गया, क्या सोचा था, भलाई का जमाना नहीं रहा, बैठी रो रही थी। तो राजा अपने समय में जासूस हमेशा छोड़ते थे कि राज्य का कारभार कैसा चल रहा है, मेरे बारे में लोग क्या विचार रखते हैं। ये हर एक अच्छे राजा की निशानी है कि वो अपने गुप्तचर छोड़े रहे, ताकि उनको सटीक जानकारी, जनता का जो ओपिनियन है वो मिलता रहे। ये एक अच्छे नेता की निशानी है, एक अच्छे राजा की निशानी है। तो बुढ़िया माँ कहीं बैठी रो रही थी, तो एक बच्चे ने पूछा कि बुढ़िया माँ क्या हुआ? जो हुआ था सब बताया। उस लड़के ने उस बूढ़ी माँ की बात सुनी और कहा राजा को न्याय करने की तमीज नहीं है। इत्तिफाक से उनका एक गुप्तचर उधर से गुजर रहा था और यह बात उसने सुन ली और राजा को बताया
वो एक लड़का है जो कह रहा है कि आपको न्याय करना नहीं आता। रे ने कहा कि अच्छा ठीक है, बुलाओ उस लड़के को। लड़का आया तो राजा ने कहा कि तुम्हें लगता है कि हमने जो निर्णय किया वो गलत है? बच्चे ने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप निर्णय नहीं कर पाए महाराज, क्षमा कीजिएगा। तो महाराज ने पूछा क्या तुम निर्णय करोगे? उसने कहा जी मैं कर सकता हूँ। तो कहा ठीक है, आओ गद्दी पर बैठो, निर्णय करो। बच्चे को गद्दी पर बिठाल दिया गया। दो ठग आए तो भाई बात हुई तो उसने कहा भाई बढ़िया, अम्मा बताओ क्या हुआ था? ठगों से पूछा तो उन्होंने कहा हम लोग लौट रहे थे, पैसा था, जंगल में कोई छीन न ले, डाकू न मिल जाए, तो इसकी वजह से हमने इनको दिया और कहा था कि जब तीनों आएंगे तब दीजिएगा, इन्होंने एक को दे दिया तो जुर्माना दें। तो लड़के ने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि क्या ये बात सही कह रहे हैं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा हाँ ये बात सही कह रहे हैं बेटा, इन्होंने कहा था कि जब हम तीनों आएंगे तभी देना, हमने दे तो दिया। तो बच्चे ने फिर उन दोनों से पूछा कि आपने ये कहा था ना कि जब आप तीनों आएंगे तभी देना? तो कहा हाँ हमने तो कहा ही था। तो लड़के ने उत्तर दिया एक काम कीजिए, तीसरे को ले आइए और अपना पैसा ले जाइए, क्योंकि आपने ही कहा है कि हम तीनों आएंगे तभी देना, अभी आप दो हो, तीसरे को पकड़ लाओ, पैसा ले जाओ। सबके मुंह से वाह निकल गई, भाई अगर तीसरे ठग को आप पकड़ लेते हो तो पैसा तो उसी के पास है, सीधा सा निर्णय हो गया। एक सज्जन बुढ़िया बूढ़ी मां अपनी जमीन को बेचने के लिए मजबूर थी और व्यवस्था उसकी हटी क्योंकि निर्णय सही हुआ। तो निर्णय का सही होना अत्यंत आवश्यक होता है, जरूरी होता है, और आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो बड़े ही लोग हैं वो निर्णय अच्छा करें, कभी कभी बच्चे भी निर्णय अच्छा कर सकते हैं। कभी उनको एक मौका देकर देखिए, परिस्थितियां देकर देखिए अपने बच्चों को, शायद उनमें वो आपकी रुचि जागृत हो। जी हाँ, हमारे साथ ये तो बात न्याय पर चली तो हमको एक छोटी सी लोक कथा याद आ गई तो आपको सुनाई। हमारे साथ भाई चमन जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, और सुपूजा जी हैं, हेलो सर जी, आपको दोस्त सुनती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल बेदर्दी जी हैं, क्या बात है भाई, गुड इवनिंग मनु सर। और राही नवाबों का शहर लखनऊ, जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। और जी तमन्ना आरजू जी भी हमारे साथ हैं, क्या बात है। श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको प्रणाम। और क्या बात है भाई, हमारे दादा उपस्थित हैं, अनिल शास्त्री जी, चरण स्पर्श दादा आपको भी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, बातें बहुत सारी हो गई, अब चलते हैं आपको एक प्यारी सी गज़ल की ओर, और इसके बाद फिर लौटेंगे इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जब जिंदगी ऐसे किसी मोड़ पर लाकर के खड़ी कर दे कि क्या करें और क्या न करें, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि निर्णय न करें, वेट एंड वॉच करें, देखें और इंतजार करें, शायद बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, क्रोध में लिया गया निर्णय और सुख में किया गया वादा, ये इंसान को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा सकता है। जी हाँ, महेंद्र दीपेन जी राजस्थान से हैं। मरुथरा की पवन माटी से एक प्यार भरा पैगाम आया है। रुड़गांव के महेंद्र जी का रेडियो को सलाम आया है। ज्ञानस्थली गोंडा के मंच पर सजी है सुरों की महफिल। आरजे मनुसर की मखमली आवाज़ का जादू हर दिल पे छाया है। बहारे गज़ल प्रोग्राम की ये रौनक बयां करती है वो कहानी, जिसने दूर बैठे श्रोताओं को भी इस महफिल का हिस्सा बनाया है। अरे महेंद्र जी, हम लोग आप ही से सीखते हैं, आप हम लोग के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। हम इतने बड़े नहीं हैं, आपकी महानता है कि आप हमें श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि आप महान हैं। जी हाँ, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से हैं। गुड इवनिंग प्यारे न्यारे आदरणीय महामनुष्य जी। जी शुभ संध्या आपको भी प्यारे न्यारे आदरणीय प्रमुख जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। धर्मेंद्र मोहन जी, देखिए भाई, कल आपकी गज़ल नहीं बजी थी, आज मैंने बजा दी है कि वो मेरी मोहब्बत का अफसाना मुझे याद देती है। जी और इसके पश्चात भाई राही नवाबों का शहर बस करो सब। प्रमुख महामनुष्य जी, बहुत दिन हो गया। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा नशा है मोहब्बत का। जी हाँ, तमन्ना आजू जी भी हमारे साथ हैं, और वो गज़ल आपने पहली बार हम ही से सुनी थी, ये बात सही है अशकों के। लेकिन अरे कायनात जी आ चुकी हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। महेंद्र जी लिखते हैं, प्रमुख भैया धर्मेंद्र मोहन तमन्ना आजू और राही का साथ सबके खास है। ज्ञानस्थली के इस चैट बॉक्स में छुपा हम सबका एक अटूट विश्वास है, दूरी चाहे कितनी भी हो पर ये रूहानी रिश्ता सीधे दिल को छू जाता है। आप जैसे सच्चे यारों की महफिल में होना ही रब का सबसे हसीन एहसास है। जी हाँ, देखिए इसलिए कहता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या शानदार लिखते हैं आप। वाह भाई महेंद्र जी, आप तो आशु कवि हैं, मतलब तत्काल लिखने वाले। थीम की भी आवश्यकता नहीं भाई, आपके इस योग्यता को, विनम्रता को प्रणाम है। बहुत दिनों के बाद हमारी माता जी श्याम नाम की पगली जुड़ी हमारे साथ। श्रीमती सुमित्रा गोयल जी, शरण स्पर्श करते हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। और जी, मनुष्य की सिर्फ बस याद रह जाती है। जी बिल्कुल, याद ही तो रह जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और इसके पहले वसीम बरेली की तरफ चलते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। कुछ रिश्ते बड़े पाकीज़ा होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, और मेरा मानना है रिश्ते वे पवित्र होते हैं जिनमें कपट नहीं होता, वो किसी के साथ भी हो। मन की बात अगर आपने कह ली किसी सामने वाले से, इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं। इस दुनिया की आधी समस्याएं इसी बात पर टिकी हैं कि हम अपने मन की बात ही नहीं कह पाते सामने वाले से। और अगर हम ये कहना सीख जाएं तो आप यकीन मानिए कई सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अगर नल से निकला हुआ पानी कोई आपको दे तो 10 रुपये लीटर भी दे तो क्या आप लेंगे? नहीं, 2 रुपये लीटर नहीं, क्योंकि आपके पास भी नल है, पानी है, क्यों लेंगे आप? हाँ बाहर है, बोतल लेनी पड़ी बिस्लरी की, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन वही पानी जब दूध के साथ मिल जाता है तो क्या होता है? जल पय सरिस बिकाय, देखहुं प्रीत की रीत भल। मोहब्बत क्या है? पानी दूध में मिल गया और ऐसा मिल गया कि अब वो पानी रह ही नहीं गया। जिस पानी को हम 1 रुपये प्रति लीटर भी न खरीदते, अब उसे 50 रुपये प्रति लीटर में खरीद रहे हैं। पानी का महत्व तो बढ़ गया, लेकिन उसे मिलना पड़ा, अपने आप को समर्पित करना पड़ा दूध में।

जल पय सदिश बिकाय, यानी दूध के रेट पर पानी बिक जाता है। देखूं प्रीत की रीत भली, ये देखिए प्रेम का चमत्कार है। लेकिन बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुन। लेकिन अगर उसी दूध और पानी में नींबू की कुछ बूंदे पड़ जाए तो क्या होता है? तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, क्योंकि कपट आ गया। अब दूध दूध हो गया, पानी पानी हो गया। पनीर ऐसे ही तो बनाते हैं हम, ऐसे ही बनाई जाती होगी जहाँ तक मेरा अंदाज है। अगर दूध को फाड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध अलग पानी अलग, क्या करना है? कुछ खट्टी बूंदे डाल देनी है और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। रिश्तों में यही चीज अच्छी होती है। आपके मन में है, अगर आपने वो कह दिया तो आपका मन हल्का और सामने वाला आपको आपकी बात पर समझा सकता है। लेकिन अगर उसे पता ही ना हो, अगर कपट हो कि हम क्यों कहें, तो मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ भाई, कि जो अपने हृदय की बात हृदय में नहीं रखते, जिसको अपना मानते हैं उससे अपनी बात कहते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। और ऐसे लोग मेरे लिए बहुत आदरणीय और खास बन जाते हैं। अब आइए चलते हैं वसीम बरेली की तरफ, कि मेरी आंखों को ये सब कौन बताने देगा, मेरी आंखों को ये सब कौन बताने देगा, अरे ख्वाब जिसके हैं वही नींद ना आने देगा। जिसका ख्वाब देख रहे हैं वही नींद नहीं आने देगा। उसने यू बांध लिया खुद को नए रिश्तों में, उसको उसने यू बांध लिया खुद को नए रिश्तों में, जैसे मुझ पर कोई इल्जाम ना आने देगा। वो हमारी जिंदगी में था, लेकिन कोई हमारी महबूबा हो माशूका हो अलग चली जाए, शादी अलग हो गई, तो इस तरह से नए रिश्तों में बांध लिया कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। उसने यू बांध लिया खुद को नए रिश्तों में, जैसे मुझ पर कोई इल्जाम ना आने देगा। अरे सब सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं, सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं, कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलाने देगा। भीगती झील, कमल बाग, महक सन्नाटा। भीगती झील, कमल बाग, महक सन्नाटा, ये मेरा गांव मुझे शहर न जाने देगा। यहाँ पर गांव प्रतीक है इंसान के बचपने का और शहर प्रतीक है कपट का। तो अगर आपके हृदय में पवित्रता है तो निसंदेह आप गांव नहीं छोड़ पाएंगे, आप निर्मलता नहीं छोड़ पाएंगे। जी हाँ, वसीम बरेली जी की इस गजल के बाद आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, प्रवल मिश्रा जी बहुत बहुत शुभ संध्या आपको, प्रणाम भी जी, कायनाथ जी आपका भी अभिनंदन। और जी हाँ, हमारे साथ तो प्रवल मिश्रा जी देर में जुड़ पाए, और आइए, घड़ी की सुइयां आप बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गाने 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी अधूरे खत। कॉलेज का पहला दिन और दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी। कॉलेज के लाल पत्थरों वाली इमारत के सामने आर्यन अपनी पुरानी साइकिल खड़ी कर रहा था। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कविताओं की एक डायरी और प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह था। वो भीड़ से बचने वाला लड़का था जिसे शोर नहीं खामोशी पसंद थी। तभी एक तेज दौड़ती हुई लड़की उससे टकराई। आर्यन का झोला नीचे गिर गया और उसकी डायरी के पन्ने इधर उधर बिखर गए। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, वो लड़की अव्या जल्दी जल्दी पन्ने समेटने लगी। आर्यन ने बिना कुछ कहे पन्ने उठाने शुरू किए। तभी अव्या की नजर एक अधूरे शेर पर पड़ी। शहर की इस भीड़ में खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी ही खामोशी से बातें कर रहा हूँ। अव्या रुकी, उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, खामोशी से बातें, थोड़ा बोरिंग नहीं है? कभी थिएटर के शोर में आओ, खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से मिल जाओगे। आर्यन को डायरी थमाई और ड्रामा रूम की तरफ भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उस लड़की की बातों में एक अजीब सी खनक थी जो दिल्ली की उस दोपहर को भी खुशनुमा बना रही थी। अगले कुछ महीनों में इत्तेफाक बढ़ने लगे। आर्यन अक्सर लाइब्रेरी के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठकर लिखता और अव्या वहीं पास के चबूतरे पर अपने नाटकों की रिहर्सल करती। एक दिन कॉलेज कैंटीन में भारी भीड़ थी, मेजें भरी हुई थीं। अव्या अपनी चाय का ग्लास लेकर आर्यन की टेबल पर आकर बैठ गई। आर्यन, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठते हो? क्या तुम्हें लोगों से डर लगता है या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा? अव्या ने समोसे का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछा। शायद दोनों ही नहीं अव्या, मुझे बस अपनी दुनिया में रहना पसंद है, शब्दों के साथ। आर्यन ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए धीमे से कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं पर वो उदास हैं, उनमें अधूरापन है, जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो पर रुक जाते हो। अव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उस दिन पहली बार आर्यन को लगा कि कोई उसे पढ़ रहा है। उसकी दोस्ती यहीं से परवान चढ़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना अव्या और आर्यन कॉलेज में मिले। दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। जहां आर्यन को शांत रहना पसंद था, वहीं अव्या बेहद चंचल थी। पर दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। अब आगे अव्या ने आर्यन को थिएटर के पीछे के काम में मदद करने के लिए मना लिया। पर्दे के पीछे से स्क्रिप्ट सुधारना, संवादों में जान डालना। धीरे धीरे आर्यन, जो कभी भीड़ से डरता था, अव्या की चंचलता के साय में खिलने लगा। कॉलेज का तीसरा साल चल रहा था। अव्या ने एक बहुत ही भावुक नाटक पेश किया था, जिसकी स्क्रिप्ट आर्यन ने ही लिखी थी। नाटक खत्म होने के बाद जब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था, अव्या की आंखें भीड़ में आर्यन को ढूंढ रही थीं। वो उसे बैकस्टेज मिला। अव्या खुशी से उछलती हुई आई और उसे गले लगा लिया। आर्यन, हमने कर दिखाया, तुम्हारी लिखी बातें लोगों को रुला रही थीं। आर्यन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उस एहसास ने उसे झकझोर दिया था। उसने अव्या को दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अव्या, ये शब्द मेरे नहीं थे, ये वो सब था जो मैं तुमसे कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। इस नाटक की नायिका तुम नहीं हो, मेरा प्यार है। अव्या खामोश हो गई। कॉलेज के उस शोर शराबे के बीच उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा असहज नहीं था, बल्कि उसमें एक स्वीकारोक्ति थी। खुशियां लंबे समय तक नहीं टिकतीं। अव्या के पास लंदन जाने का मौका आया। कॉलेज के आखिरी दिन वो दोनों रोड पर टहल रहे थे। आर्यन, मैं नहीं चाहती कि हमारी कहानी उन पुरानी फिल्मों जैसी हो जहां करियर के लिए प्यार कुर्बान कर दिया जाता है। अव्या की आवाज भारी थी। अव्या, तुम उड़ने के लिए बनी हो, मैं तुम्हें इस छोटे से पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। जाओ, अपना आसमान ढूंढो। अगर हमारी किस्मत में साथ होना लिखा है, तो ये शहर, ये सड़कें हमें फिर से मिला देंगी। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। जिस दिन अव्या की फ्लाइट थी, आर्यन उसे छोड़ने एयरपोर्ट नहीं गया। उसे पता था कि अगर उसने अव्या को देख लिया, तो वो उसे जाने नहीं दे पाएगा। उसने घर पर ही बैठकर अपनी डायरी का वो पन्ना फाड़ दिया जिस पर उसने हैप्पी एंडिंग सोची थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना अव्या और आर्यन की मुलाकात कॉलेज में हुई। दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहां अव्या एकदम चंचल थी, वहीं आर्यन एकदम शांत। पर समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। पर वक्त ठहरता कहाँ है। कॉलेज पूरा होने के बाद अव्या को लंदन जाने का मौका मिला और आर्यन ने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। अब आगे, अव्या के लंदन जाने के बाद आर्यन ने कभी भी उससे कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक आध बार उधर से अव्या ने प्रयास किया भी तो आर्यन ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आर्यन को यह डर था कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या अंजाम हो, क्योंकि फिलहाल उन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी और कभी कभी ये सामाजिक दूरियां रिश्तों में बड़े दर्द दे जाती हैं। आर्यन वैसी किसी भी परिस्थिति में ना खुद को डालना चाहता था और ना ही अव्या को। उसने सब कुछ समय और भगवान के हाथों में सौंप दिया था और बस अपनी ही लय में अपना जीवन जी रहा था। बनारस की वो शाम कुछ अलग थी। गंगा के घाटों पर जलते दियों की रोशनी लहरों पर थिरक रही थी। आर्यन घाट की सीढ़ियों पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वो एक लेखक था जिसकी कहानियों में अक्सर अधूरापन होता था। तभी उसके पास आकर कोई रुका। क्या लिख रहे हो? फिर से कोई अधूरी दास्तान? एक खनकती हुई आवाज आर्यन के कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा। वो अव्या थी, उसकी पुरानी दोस्त, उसकी पहली प्रेरणा और शायद वो प्यार जिसे वो कभी शब्द नहीं दे पाया। 5 साल बाद अव्या को अपने सामने देखकर आर्यन के हाथ से कलम छूट गई। अव्या, तुम यहाँ? आर्यन ने हैरानी से पूछा। 5 साल बाद जब अव्या ने 80 घाट पर आर्यन का हाथ थामा तो उसे लगा कि वो कॉलेज के उन गलियारों से निकलकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई है। पता है आर्यन, लंदन में जब भी मैं स्टेज पर खड़ी होती थी तो मुझे लगता था कि तुम कहीं विंग्स में खड़े मेरी स्क्रिप्ट ठीक कर रहे हो। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। और मैं यहाँ हर रोज एक नई कहानी लिखता था इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन तुम उसे पढ़ने आओगी। मेरी हर कहानी का हर एक शब्द तुम्हारी ही यादों की ताबीर है। 5 साल बीत गए अव्या, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल ने कभी भी तुमसे मिलने की आस नहीं छोड़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना आर्यन और अव्या कॉलेज में मिले और एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन कॉलेज के बाद अव्या लंदन चली गई, लेकिन वो 5 साल बाद फिर लौट कर आई और आर्यन से मिली। आर्यन के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद आश्चर्य था। अब आगे आर्यन ने उससे पूछा, अव्या तुम यहां कैसे आई? अव्या बोली, सुना था बनारस की गलियों में खोए हुए लोग मिल जाते हैं, तो सोचा मैं भी अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ लूं। उसकी मुस्कान में वही पुराना जादू था, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान थी। वो दोनों घाट से दूर एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। हवा में ठंडी नमी थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 5 साल आर्यन, एक फोन तक नहीं? अव्या की आवाज में हल्की शिकायत थी। शायद मैं डर गया था अव्या, जब तुम लंदन जा रही थी मुझे लगा कि हमारे रास्ते अब कभी नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हें भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन मेरी हर कहानी का किरदार तुम्हारी ही परछाई बन जाता था, आर्यन ने धीरे से कहा। अव्या ने गंगा की लहरों को देखते हुए बोला, वहां सब कुछ था आर्यन, सफलता, पैसा, शोर, लेकिन सुकून नहीं था। हर रात जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे इसी घाट की शांति और तुम्हारी वो अधूरी कहानियां याद आती थीं। मैंने वहां बहुत कुछ हासिल किया पर खुद को कहीं खो दिया। आर्यन ने अपनी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। अव्या ने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें कविताएं थीं, छोटे छोटे किस्से थे और हर पन्ने पर अव्या का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, प्यार वो नहीं जो साथ रहने का वादा करे, प्यार वो है जो दूर होकर भी हर सांस में महसूस हो। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अव्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे लगा कि प्यार जाहिर कर देने से शायद वो दोस्ती भी खत्म हो जाए जो मेरे पास थी। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उस रात बनारस के घाट एक गवाह बने। दो दिल जो सालों से एक दूसरे से भाग रहे थे आखिर मिल ही गए। अव्या ने तय किया कि अब वो वापस नहीं जाएगी। उसने आर्यन की उन अधूरी कहानियों को पूरा करने का फैसला किया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना आर्यन और अव्या मिले, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने और समय ने उन्हें अलग कर दिया। 5 साल बाद सब कुछ छोड़ के अव्या आर्यन के पास वापस आ गई। आर्यन को तो जैसे उसकी जिंदगी मिल गई। अब आगे समय बीतता गया। आर्यन की किताब घाटों का इश्क प्रकाशित हुई और उसे बहुत लोकप्रियता मिली। लोगों को उनकी कहानियों का अधूरापन पसंद आता था, लेकिन इस बार किताब का अंत पूरा था। अव्या और आर्यन ने बनारस में ही एक छोटा सा घर लिया। सुबह की आरती और शाम की सैर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक शाम जब वो फिर से उसी घाट पर बैठे थे, आर्यन ने पूछा, अव्या क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम 5 साल पहले मिल गए होते, हमारे तुम्हारे बीच ये दूरी का दौर ना आता तो चीजें अलग होती? अव्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, शायद, लेकिन तब हमारे पास वो परिपक्वता नहीं होती जो आज है। कभी कभी बिछड़ना जरूरी होता है ताकि हम मिलने की कीमत समझ सकें। उनकी कहानी अब किसी डायरी के पन्नों तक सीमित नहीं थी। वो बनारस की हवाओं में, गंगा की लहरों में और हर प्रेमी जोड़े की दुआओं में बस गई थी। आर्यन ने अब लिखना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसकी कहानियों में दर्द की जगह उम्मीद थी, खुशियां थी, सुखद अंत थे। अब उसकी कहानियां अधूरी नहीं होती थीं। प्यार वाकई वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार वो है जो चुपचाप बिना किसी शोर के दो रूहों को जोड़ जाए। जैसे गंगा और यमुना का मिलन होता है, वैसे ही आर्यन और अव्या की जिंदगी एक हो गई थी। भौगोलिक दूरी रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि वो सच्चे प्यार को और अधिक गहरा और मजबूत बनाने का एक बेहतरीन माध्यम साबित होती है। किसी ने सच ही कहा था कि प्रेम को अपनी गहराई का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक वियोग का क्षण न आ जाए। जब दो दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं, तब उनका रिश्ता सतही आकर्षण से ऊपर उठकर एक गहरे भावनात्मक और आत्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने की जो उत्सुकता होती है, वो मिलन के उन क्षणों को अनमोल बना देती है। साथ बिताया एक एक पल बहुत कीमती हो जाता है और दूर रहने के बावजूद एक दूसरे के प्रति वफादार रहना रिश्ते की नींव को चट्टान जैसा मजबूत बना देता है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अधूरे खत। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक।

और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ यू आर लिसनिंग रेडियो गानाखेड़ी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी फेवरेट आरजे अनोखी, जो लेकर आई है आपका पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत। आज के अंक में हम जिस गायिका की बात करने वाले हैं, उनके गायन का मोटिवेशन 8 साल की उम्र में म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतना रहा। तभी से वे बड़ी होकर एक मशहूर गायिका बनने का सपना देखने लगी थी। 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया इन्हें, और आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले इन्हीं की आवाज में, जी हाँ, हमारी नायिका की आवाज में ये सॉन्ग।

तो दोस्तों, आवाज से तो आप सभी जान ही गए होंगे कि आज हम किस सिंगर की कहानी पर बात करने वाले हैं। आज के अंक की नायिका कविता कृष्णमूर्ति जी की, जो इंडियन सिनेमा की एक महत्वपूर्ण प्लेबैक

कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 1958 में 25 जनवरी को नई दिल्ली में हुआ था। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति की संगीत की शिक्षा उन्हें घर में ही

कविता जब महज 8 साल की थी तभी से ये बड़ी होकर एक फेमस सिंगर बनने के सपने देखने लगी थी और बड़े होकर इन्होंने इस सपने को सच भी किया और कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले इन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 एफएम पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिस्तरे गीत मेरे यानी आरजे अनोखी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं लेडी के यानी कविता कृष्णमूर्ति की, जिनको 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। और बिना किसी हैरानी के ये बात भी आप सभी जान लें कि कविता को 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर से सम्मानित किया गया। और वो 4 सॉन्ग्स कौन कौन से थे ये आप सोच रहे होंगे, है ना? तो क्यों ना इन सॉन्ग्स को सुन लें और बाकी की कहानी इन अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स के बाद।

अभी आपने सुना प्यार हुआ चुपके से, जो कि 1942 अ लव स्टोरी मूवी से है, जिसका संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन ने किया और गीतकार थे जावेद अख्तर। मेरा पिया घर आया ओ राम जी 1966 याराना मूवी से, संगीत निर्देशन अनु मलिक, गीतकार माया गोविंद जी का। आज मैं ऊपर आसमान नीचे 1997 में आई खामोशी फिल्म से, जिसके संगीत निर्देशन जतिन ललित और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। और फोर्थ अवार्ड विनिंग 2003 में आई देवदास फिल्म के डोला रे डोला सॉन्ग, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार और लिरिसिस्ट नुसरत बद्र थे। हम बात कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कारों की, जिसमें मैंने आपको बताया भारत के महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक पद्मश्री और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन्हें मिला। साथ ही कविता के लिए एकोलेट्स में स्टार्स मिलेनिया 2000 अवार्ड्स में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड, राष्ट्रीय हिट फिल्म देवदास के डोला रे डोला के लिए जी सिनेमा अवार्ड 2003 शामिल है। और कविता कृष्णमूर्ति को बॉलीवुड अवार्ड 2 बार मिले हैं। आगे इनके किस्से के बारे में और भी बातें करनी है आपसे, लेकिन उससे पहले एक और सॉन्ग इन्हीं की आवाज में।

इनके पिता टी एस कृष्णमूर्ति एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम किया करते थे और बहुत ही कम उम्र में अपनी आंटी प्रमिता भट्टाचार्य के कहने पर इन्होंने संगीत की विद्या प्रारंभ की। शुरुआत में सुरमा बासु ने इन्हें रविंद्र संगीत सिखाया और फिर भारतीय संगीत की तालीम ली इन्होंने बलराम पुरी जी से।

अरे आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

साठ के दशक में मध्य तक कई इंटर मिनिस्ट्री क्लासिकल कंपटीशन में कई पदक जीत चुकी थी। इनके कॉलेज की पढ़ाई हुई सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में। फिर इन्हें मौका मिला एक बांग्ला फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज में गाना गाने का। साल था सन 1971 और उस गाने में लता मंगेशकर जी भी थी।

संगीतकार गायक हेमंत कुमार ने इनके हुनर को पहचाना। हालांकि कम उम्र से ही कविता जी इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए काम करना चाहती थी। श्रोताओं, आपको बता दूं कि कविता जी उस वक्त मात्र 14 वर्ष की थी जब उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया और सोचा कि क्यों ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर काम करूं।

इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो कविता ने बीए ऑनर इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। दरअसल बात यूं रही कि अपने कॉलेज फेस्टिवल मल्हौर में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तब इनकी मुलाकात हुई थी रानू मुखर्जी से, जो महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की बेटी हैं।

0: सी है।
1: इस तरह कविता की मुलाकात हेमंत कुमार से कराई रानू ने, जो अपने लाइव शोज में कविता से अक्सर गाने गवाने लगे। फिर महान प्लेबैक सिंगर मन्ना डे की नजर जब इन पर पड़ी तो कविता से एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स गवाने लगे। फ्रेंड्स, अब आप सभी को बता दूं कि ये मुलाकात का दौर यूं ही चलते चलते इनके करियर को आगे ले गया। इनकी मुलाकात हुई जया चक्रवर्ती से, जिनकी बेटी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। वहां से इनकी जान पहचान कराई गई लक्ष्मीकांत प्यारी लाल जी की जोड़ी से। लक्ष्मीकांत जी कविता जी की आवाज से बड़े ही मुतासिर हुए, लेकिन लेकिन लेकिन के बाद का किस्सा इस सॉन्ग के उस पार।

लेकिन का किस्सा ये है कि इन्हें इतनी हस्तियों से मुलाकात के बाद भी प्लेबैक का मौका नहीं मिला था। इनका इस्तेमाल बतौर डबिंग आर्टिस्ट किया जा रहा था।

उनानोंदु काला दागा। ये फिल्म गिरीश कर्नाड ने डायरेक्ट किया था। इस गाने को लिखा था ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर ने और म्यूजिक दिया था भास्कर ने।

कन्नड़ सॉन्ग के बाद 1980 में इन्होंने गाया काहे को ब्याही फिल्म मांग भरो सजना के लिए। फिर ये गाना फाइनल कट से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्हें गाने का मौका मिला तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। इस सॉन्ग के बाद कविता कृष्णमूर्ति ने पलट कर नहीं देखा। प्यार झुकता नहीं का ये सॉन्ग इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और दोस्तों फिर करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से और हवा हवाई जैसे सॉन्ग ने इन्हें एक

पंचम दा की आखिरी मूवी 1942 अ लव स्टोरी के लिए भी इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। इनकी खासी स्पर्धा थी अलका याग्निक से, पर मुख्तलिफ मौसिकीकारों के साथ काम करके इन्होंने वो जगह बनाई जो हिलाए नहीं हिल सकती। आइए एक और शानदार सॉन्ग का लुफ्त उठाते हैं कविता जी की आवाज़ में।

तो सुरों की मल्लिका और अपने जमाने में एक अलग पहचान बनाने वाली कविता जी के बारे में आज हमने जाना। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी आपके पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत में अपनी आरजे अनोखी के साथ। तब तक रखें अपने अपनों का ख्याल। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और हाँ, बताएं कि ये सॉन्ग सिर्फ आपके लिए।